और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फुर्ती की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है। इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा
उनकी

इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित होकर के हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ,
पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती इस पर लगाते हुए, एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर करके वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 2 मिनट से हम करेंगे। जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा, हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ध्यान और भस्त्रिका, यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के, रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करने में
करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समाहित कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो तो आप जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने आज बात

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीरदास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहरतारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग

अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं, तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं, उसका ज्ञान देखना चाहिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी ने ज्ञान प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेके। तो आचरण के बारे में कबीरदास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीरदास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तोहे, यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनके जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महान कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के भीतर पाई गईं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला, कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को, यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद, जो कि लिखित है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में। सबद, ये गेय पद है, जो कि ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है। साखी यानी साक्षी पद, जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर, ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पी सिखाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़या गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरी भोरी का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लगाओ।
1: इनो इनो इनो जल्दी ले लो इनो, इनो इनो इनो जल्दी ले लो इनो, फिर ना होगा पेट का बुखार, खार खार में दिल दार।
2: माता।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या बात है, हाय। वेलकम करते हैं आपका आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद हैं आपके साथ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। और चलिए, वक्त हो गया है आपको एक बार वापस से मॉर्निंग की विशेज भेजने वाली, वो भी काफ़ी हॉट हॉट। जी हाँ, सो गर्मी की शुरुआत आजकल सुबह से ही हो रही है और ऐसा लगता है कि बस जैसे ही मॉर्निंग होती है वैसे ही टॉर्च ऑन हो जाती है और उसके बाद शुरू हो जाता है गर्मी पड़ने का सिलसिला। सो ये सिलसिला तो फ़िलहाल यूं ही चलने वाला है, अभी तो नहीं थमेगा। और नौतपा में तो फिर नौ तरफ से हम तपने वाले हैं, उसके लिए आप भी बी रेडी। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है आपको ले चलने का आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताने का कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कहना चाहता है, आज के थॉट्स के क्या मायने हैं। वैसे आज है दिन शुक्रवार का, यानी वो दिन जब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज दिन को काफ़ी लकी मानते हुए कई सारी मूवीज़ भी आज के ही दिन रिलीज़ करती है। सो आज ही के ख़ास दिन भाई देखते हैं कि आज का थॉट क्या होने वाला है, आज का थॉट जो है वो किस तरह आपको लगने वाला है और आज के थॉट को लेकर के आपके अपने क्या विचार होने वाले हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। तो फिलहाल चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और देखते हैं कि भाई आज का शुक्रवार यानी कि फ्राइडे स्पेशल थॉट क्या लेकर आया है। लेकिन उससे पहले आरजे अदनान आए हैं तो आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

0: हाँ जी, तो भाई नैन से नैनो को अगर मिला लिया है तो हमने भी मिला लिया है अपना ट्रैक, और वो ट्रैक मिलता है सीधे आपसे। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gona, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

चलिए भाई, आप लोगों का एक बार वापस से वेलकम करते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे नजर आ रहे, क्या बात है आपकी स्माइल है, कौन ना फिदा हो जाए भाई। तो मैसेजेस आ गए हैं, आपके प्यारे प्यारे विशेज आ गई हैं, और साथ ही साथ आज का जो थॉट सुना उस पर आपके रिएक्शंस भी आ गए हैं। सो पहले तो हम वेलकम करते हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का। और साथ ही साथ कुछ श्रोतागण, चूँकि चैट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है जब आप एप्लीकेशन से सुनते हैं, और वो चैट बॉक्स सीधे गोंडा एफएम के आरजेस तक लाइव आपके मैसेजेस पहुंचा देते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिलता है। RADIO स्पेस GYANASTHALI ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 एफएम, इतना टाइप करने के बाद आपको काले और लाल रंग के आइकन में एप्लीकेशन नज़र आ जाता है, जिसको आप इंस्टॉल करते हैं और उसी से आप अनइंटरप्टेडली सुनते भी हैं 89.6 एफएम, और साथ ही साथ आप चैट भी कर पाते हैं लाइव अपने आरजेस से गोंडा एफएम पर। सो उसी चैट बॉक्स पर क्या कुछ लिखा है, क्या मैसेजेस आए हैं, आइए चलते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो आशु मिश्र जी का आ रहा है, लखनऊ से। लिखा है आपने, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड प्रीति जी का मैसेज है बहराइच से, सर जी गुड मॉर्निंग, गर्मी वाली, बहुत गर्मी भरी काफ़ी गर्मी है, सही बात है। एंड सविता जी कह रही हैं, सुप्रभात सर, आप रोज़ जिम जाते हैं जी, रोज़ कैसे जिम जा पाएंगे जब हफ्ते में दो दिन लखनऊ ही हो जाते हैं वैसे हाँ, ख्यालों में तो चले ही जाते हैं, खैर। जमुना प्रसाद प्रजापति जी हैं, आपका स्वागत करते हैं जमुना प्रसाद जी, आपने भी लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। पूर्णिमा भी मौजूद हैं, और आपने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। अनुभव है, अनुभव द्विवेदी कुशीनगर से, आपका स्वागत करते हैं अनुभव, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी,

आ गए गर्मी के साथ साथ, बिजली भी बहुत ज़्यादा कटना चालू हो गई, आपके यहाँ क्या हाल है? अजी आप नहीं बख्शे गए तो हम कैसे बख्शे जाएंगे, हमारे यहाँ भी वही हाल है, बस चरखा चल रहा है, पंखा हाथ वाला, उस वजह से क्या बोलते हैं, यहाँ तो बिलना भी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कुशीनगर में? अनुभव जी बताइए ज़रा, हाथ से पंखा जो चला जाता उसको, एंड बाकी लोग भी बता सकते हैं बहराइच में, लखनऊ में, अलग अलग जगह क्या क्या बोला जा सकता है या बोला जाता है रीजनल लैंग्वेज में, वहाँ की लोकल भाषा में। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलते हैं, और दीपांशी का है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं मस्त, एकदम गजब। और इसके अलावा सन्नो सिंह मौजूद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और पूर्णिमा भी लिखती हैं, सर जाने की तैयारी भी चल रही है और आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, क्या बात है। सो एक साथ जब दो काम हो जाए तो ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में इससे ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्टेड होगा यार, एक साथ दो दो काम, वो भी इतना फ्लैक्सीबली चल रहा है। सो चलिए बहुत अच्छी बात, वैसे ये दूसरा काम नहीं है, एक तो काम है आपका जो आप कर रहे हैं निकलने का, दूसरा जो है वो काम नहीं है, काम की जान है, यानी कि गोंडा FM। सो इसके बाद जो है, अच्छा प्रीति जी ने बताया है सेना बोलते हैं अवधी भाषा में, अच्छा, और इधर बेना बोलते हैं, बेना, सेना नहीं, बेना, सेना तो आर्मी होगी ना, अच्छा हो सकता है भाई पंखों की सेना को बोलते होंगे। सो इसके अलावा जो है आज के थॉट ऑफ द डे पे भी रिएक्शन आए हैं, क्या लिखा है आप लोगों ने, आइए बताते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन आया है वो प्रीति जी का आया है, बहराइच से लवली थॉट, ये थॉट समझ से परे, ओहो देखा। एंड सविता जी ने कहा है कि सर मैं ज़्यादा गहराई से डूब जाती हूँ, आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या गोताखोर की ज़रूरत तो नहीं ना सविता जी आपको, ज़्यादा गहराई? बहुत अच्छी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं थॉट की। एंड पूर्णिमा लिखती हैं कि सर आज आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, उसके बाद जम्मू से आने के बाद ही सुन पाएंगे, क्या बात है भैया, तो इनका एक्साइटमेंट का लेवल अलग होगा, जम्मू जा रही हैं भाई, बड़ी ही खूबसूरत पहाड़ियां हैं, बड़ा ही खूबसूरत जगह है, ऑब्वियस सी बात है, और जब आप घूमने जाते हैं तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी होती ना, तो आप ये खुशी कहाँ जाहिर करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और बैग पैक कर लीजिएगा, खाने पीने का सामान ले लीजिएगा, पानी दो तीन टैंकर, मतलब जितना भी हो सके, तीन चार हमें लगता है आपको रख ही लेना चाहिए, वाटर कूलर, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी बहुत पीना पड़ेगा आपको, यस। और नगर पालिका से आप बात भी कर सकते हैं, हालांकि ठीक है वो ज़्यादा हो जाएगा। खैर तो इसके बाद जो है आज शाम की ट्रेन है, ओह वाओ क्या बात है, हैप्पी जर्नी, चलिए बहुत अच्छे से जाइएगा, एंजॉय करिएगा, एंड प्लीज सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखिएगा, और हाँ खुल करके एंजॉय करके ही आइएगा, वरना नो एंट्री, ओके। इसके बाद जो है आशु जी ने कहा वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट पसंद आया। पूर्णिमा ने लिखा है थॉट बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच कि आपको भी अच्छा लगा है। एंड इसके बाद चलते हैं, क्या क्या लिखा है आपने, ओके सविता जी कह रही हैं पहले एक दिन जाते थे अब दो दिन, जी हाँ कभी कभी तो दो दिन हमारा भी हो जाता है, अब हम भाई हम जम्मू तो नहीं जा सकते किसी की तरह, तो हम लखनऊ ही घूम लेते हैं, खैर कोई बात नहीं, जैसे आप यहाँ गर्मी झेल रहे होते हैं वहाँ हम खुशी खुशी झेल रहे होते हैं, इतना ही फर्क होता है। एंड इसके बाद प्रमुख कुमार मौजूद हैं, श्रावस्ती से लिखा है गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग। सो चलिए भाई आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। मोहब्बत की बात थी तो इश्क को तो बीच में नहीं बल्कि राइट साइड में तो आना ही था, राइट साइड में जो है एज अ सॉन्ग आ रहा है इश्क, किस तरह से वेलकम करते हैं आप ये ज़रा मैं देखना चाहूँगा। बहरहाल ये गाना बड़ा खूबसूरत है क्योंकि तालों में ताल, नैनीताल तो आपने सुना था लेकिन तालों में ताल मूवी ताल भाई लाजवाब थी, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, क्या जबरदस्त स्टार कास्ट थी।

0: भाई द रॉक को कौन नहीं जानता, स्पेशली वो जो WWE के दीवाने रहे हैं। फिलहाल रॉक को तो आपने देखा है कई सारे प्रतिद्वंदियों को उठा उठा के पटकना, लेकिन क्या कभी आपने रॉक को सच में बहुत करीब से जाने की कोशिश की है, कभी इनके थॉट प्रोसेस को जाने की कोशिश? शायद नहीं। वैसे हम बता दें तो शायद आप हैरान भी हो जाएं कि रॉक जो है फिलहाल 54 साल के हो चुके हैं। जी हाँ, द रॉक 54 साल के ऊपर है, लेकिन इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं वो बड़ी ही लाजवाब है। अब सोच रहे हैं आपकी बातें कही क्या है, चलिए हम बताते हैं कि द रॉक ने आखिर लाइफ को लेकर कौन सी बातें कही हैं जो आपको सुनने को बाद आपको मजबूर कर देंगी एक बार सोचने के लिए।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite Aajya Khan.

द रॉक कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर जो है वो हॉस्पिटल का होता है, इसलिए अपने जो हमारे जनरल बिस्तर हैं इस पर ज़रूर लेटिए और अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार रहिए कि अगर आप घर के बिस्तर पर लेटते हैं तो शुक्रगुजार हैं, क्योंकि दुनिया का जो महंगा बिस्तर होता है वो हॉस्पिटल का होता है, वी नो वेरी वेल एक्चुअली। एंड रॉक कहते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं या रोते हैं या सपने देखते हैं तो हम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, कभी सवाल पूछा आपने? क्योंकि ज़िंदगी की सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती बल्कि उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। इसलिए रॉक कहते हैं कि तुम्हारी मौत भी आम दिन आएगी जब तुम्हारे कई प्लान्स अधूरे होंगे और तुम्हारे बिना ये दुनिया चलती रहेगी, इसलिए ज़िंदगी को पूरी तरह से जियो। रॉक कहते हैं कि जब आप मरते हैं तो आपको इसका पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरों को ही तकलीफ होती है। जब आप बेवकूफ़ होते हैं तब भी ठीक ऐसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भाई दूसरों को लगता है कि आप बेवकूफ़ हो बट आपको पता ही नहीं चलता है। एंड ये चीज़ें देखने में दोबारा फैशन में लौट आती है। कहते हैं कि मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब नैतिकता, सम्मान और बुद्धिमत्ता फिर से एक चलन बन जाएगी, यानी लोगों के बीच में ये काफ़ी आम हो जाएगा। सो ये बड़ी ही प्यारी बात है जो रॉक ने अपने स्टेटमेंट्स में कही है, एंड ऑब्वियस सी बात है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे लगा कि भाई रिलेवेंट है काफ़ी ज़्यादा और आप तक भी ऐसी बातें पहुँचा ही दिया जाए, क्योंकि मुझे जो कुछ पसंद है वो अपनी पसंदीदा चीज़ें मैं आपसे शेयर कर ही लेता हूँ। फिलहाल आपको द रॉक के थॉट के बारे में आज जान करके कैसा लगा? वो बंदा जो रेसलिंग में मास्टर है और अपनी प्रतिद्वंदियों को छोड़ता नहीं था, फिलहाल उसने लाइफ को जो पकड़ने का मंत्र आपको आज दे दिया है, उसको सुनने के बाद आपका क्या थॉट है बता सकते हैं चैट बॉक्स पर आकर। फिलहाल 9:32 हो रहे हैं, आपके 89.6 FM के स्टूडियो में आरजुन नान लाइव है और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

वैसे जब वीकेंड होता है तो याद क्या आता है? याद आता है भाई बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना जो मस्ती धमाल पे ही बिलीव करे भाई। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बुक्स को पढ़ने पे बिलीव करते हैं। तो क्यों ना हम आपको कुछ ऐसी हिंदी बुक्स रिकमेंड करें, जब आप उसको पढ़ें तो आप सोचें वाह क्या बात है, ज़िंदगी जो कभी बोझ सी लगने लगी थी वो एक बार फिर से इन किताबों के पन्ने पलट कर देखने से आपको कुछ नई नज़र आने वाली है। सो आखिर कौन सी ऐसी बुक्स हैं और कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ऑफकोर्स हिंदी रीडर्स के लिए हम बताने वाले हैं। मुझे लगता है ये रिकमेंडेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला। अगर आप भी शौकीन हैं या कभी बहुत पीछे छूट गया था किताबों को पढ़ना, तो मुझे लगता है आज वो दिन है ऐसी किताबों को जान करके लिया जाए और वापस से पढ़ा जाए।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और जब ज़िंदगी लगे बोझिल सी है तो कुछ किताबों की तरफ अगर आप रुख करते हैं तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो हम रिकमेंड करना चाहेंगे कि आपके पास जब भी वक्त मिले आप इन्हें ले करके ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो हम बुक नेम और ऑथर नेम साथ ही उसका प्लॉट भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है. सो बेसिकली ज़िंदगी के बारे में ही है. पहली बुक है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी वायरल है. इवन कल हमने बहुत बड़ी बुक शॉप के अंदर देखा था दिव्य प्रकाश दुबे जी की टेंशन मत ले यार. ये है, ये हर बुरा या ख़राब एक्सपीरियंस आगे या तो आपका वक्त बचाता है या फिर आपके काम आता है, कहीं ना कहीं ये इस बुक में निकल के आता है. दूसरा है डार्क हॉर्स. सो ये जो है ये नीलोत्पल मृणाल जी की लिखी हुई बुक है डार्क हॉर्स. और हम सब के अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, ज़रूरत है उसे दौड़ाए रखने की, जी विशा की. इसके अलावा है विटामिन ज़िंदगी. सो विटामिन ज़िंदगी को लिखने वाले हैं ललित कुमार जी. और इस कहीं बुक में आपको समझ में आता है कि जो हमारे अगेंस्ट सिचुएशंस हैं उससे संघर्ष करना होता है, इस बात पर गर्व करना कि आप जो है विपरीत धारा में भी तैरना जानते हैं. सो समाज का सहारा सिर्फ तब लीजिए जब आप अपने निजी सीमा तक को स्वयं खपा दें, उसके बाद. एंड ज़िंदगी ज़ीरो माइल, ये है संजय शेफर जी की लिखी हुई बुक, जिसमें सुख की हर कामना में एक दर्द छिपा है. या तुम्हें ये तय करने और अपने ज़िंदगी में तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे अपने सुख को अलग करना है ये सिखाता है. इसके अलावा कभी गांव कभी कॉलेज, अगम जैन लिखने लिखा है ये बुक. और कहते हैं कि आदमी चुनता बहुत सोच समझ कर है, लेकिन चुनेगा उन्हीं में से जो उसके सामने होगा. इस बात को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा कभी गांव कभी कॉलेज, जो कि अगम जैन जी की लिखी हुई किताब है. इसके बाद है लहर तारा. चूँकि हम अपनी नज़र में अच्छे या बुरा होते हैं, हमारी लाइफ में कमज़ोर पल ऐसे आते हैं जब हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे शैतानी दिमाग की समझ होती उपज होती है. मन समझाता रहता है कि कुछ ऐसा काम होने जा रहा है जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार रोमांच के चलते हम इतना ज़्यादा उसको कर डालते हैं कि बाद में पछतावा ही रह जाता है. और ये आपको समझ में आएगा लहर तारा पढ़ने में. इसको लिखने वाले जो हैं वो विमल चंद्र पांडे हैं. इसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हॉल्ट. सो वक्त धीरे धीरे अपने आवेग में सब कुछ समेट लेता है, सुख दुख, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो या निराशा हो, सब कुछ ये समझ में आएगा आपको सुनील कुमार झा जी की लिखी हुई राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हॉल्ट. सो ये कुछ ऐसी बुक्स थी जो कि हमने आपको रिकमेंड किया, जिसमें हमने सबसे पहला बताया था दिव्य प्रकाश दुबे की टेंशन मत ले यार, दूसरी डार्क हॉर्स, तीसरी विटामिन ज़िंदगी, चौथी ज़िंदगी ज़ीरो माइल, पांचवी कभी गांव कभी विलेज, और छठी लहर तारा, और सातवीं राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हॉल्ट. सो ये किताबें अपने आप में बहुत अलग हैं. कहीं ना कहीं लाइफ में हम बहुत कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जब बुक्स पढ़ते हैं और उस स्टोरी के प्लॉट में हम वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं तो हमको नए आयाम मिल जाते हैं. हर बार कुछ सीखना नहीं होता है, कई बार जो कुछ हो चुका है उसको जानने के लिए भी आप कुछ और पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके साथ क्या हुआ था, राइट? तो ऐसा ही है बुक रीडिंग का काम. फ़िलहाल अच्छी बात है अगर आप रीडिंग करते हैं, ये तो बहुत प्यारी बात है. चूँकि आज फ्राइडे भी है और मुझे लगता है वीकेंड का जब टाइम आता है तो बुक रीडर्स के लिए उनको टाइम मिलना लाजिम हो जाता है और वो काफ़ी खुश होते हैं. तो चलिए अच्छी बात है, इस बार अगर आप बुक ले रहे हैं तो ज़रूर आप काफ़ी इत्मीनान से बैठ करके पढ़ने वाले हैं.

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

हाँ जी ठीक है तो भाई, आपको हम बता दें फिलहाल सोमवर्ग से जो अपडेट आ रही है वो बर्फ़ की जमी हुई आ रही है। सो अगर आप भी उस साइड जाते हैं तो बहुत बेहतरीन मौसम पाने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर निकल के जाते हैं तो मज़ा आता है, और जैसे ही न जाने क्यों मई जून आता है ऐसा लगता है जैसे घूमने का टाइम आ गया। सो पहले भाई नानी के घर या कहीं निकलना सबका होता ही था, लेकिन अब जब से लाइफ ने नचाना शुरू किया है इधर से उधर, तब से लगता है कि भाई मई या जून में तो हम थोड़ा सा अपने मन का भी नाच ले, मतलब जहाँ जाना है वहाँ चले जाएँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल इस बार का कोई प्लान आप बना रहे हैं क्या? अगर बना रहे हैं तो किधर बना रहे हैं, किधर जाने का आप सोच रहे हैं, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो इस मंथ के हिसाब से बेस्ट हो सकती हैं। सो फिलहाल आप कहाँ जाने का सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो बताइए। चलिए फिलहाल आतिफ असलम की आवाज़ में ये ज़बरदस्त सॉन्ग एंजॉय करते हैं। आपके मॉर्निंग वाले शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान मौजूद हैं, आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और इस वक्त 10:08 हो रहे हैं।

अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: जिंदा रहने के लिए जरूरी सिर्फ कोई शख्स ही नहीं होता, बल्कि कई बार आपकी उम्मीद और इरादा भी होता है। तो चलिए ऐसी एक इरादे के बारे में बताते हैं जो दुनिया की नज़र में तो ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन तब शुरू हुआ और उसके बाद उस इरादे ने अपने मकाम को भी पा लिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं 61 साल की उम्र में दो पोतों की दादी ने पास की है 10th की परीक्षा, यानी हाई स्कूल पास किया है। कौन है ये दादी और जिन्होंने कर दिखाया है ये कारनामा 61 साल की एज में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि भाई 61 साल की उम्र में जब ज़्यादातर लोग अपने सपनों को अधूरा और किस्मत मान लेते हैं, तब पंजाब की ही नरेंद्र कौर ने साबित कर दिया कि सीखने की कोई एज नहीं होती है। राइट, ये किस्सा है जलंधर के नकोदर के सरहाली गांव में रहने वाली नरेंद्र कौर जी का, जिन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी PSEB से 10th की परीक्षा जो है वो 650 में से 500 नंबर्स ला करके हासिल की, यानी तकरीबन 77%। भाई इतना तो मेरा भी नहीं था। सो रिपोर्ट्स की अगर माने तो शादी के बाद करीब 45 साल पहले उनकी पढ़ाई छूट गई थी। उस वक्त लड़कियों को पढ़ाई का जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने इस सपने को कभी ख़त्म नहीं होने दिया और दो पोतों की दादी नरेंद्र कौर ने ओपन स्कूलिंग के ज़रिए दोबारा पढ़ाई शुरू की। परिवार की मदद और मेहनत की दम पर उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। उनका अगला जो लक्ष्य है वो 12वीं पास करना और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना भी है। सो उनकी कहानी सिर्फ अच्छे नंबर्स तक मौजूद नहीं है, बल्कि ये उस हिम्मत की कहानी है जो सालों बाद भी अपने सपने को ज़िंदा रखती है और हम न जाने क्यों कुछ दिन या महीनों या चंद सालों में भूल जाते हैं। भाई जब नरेंद्र कौर जी 45 साल पुराना सपना जी करके उसे ज़िंदा भी कर सकती और अचीव भी, तो हम और आप क्यों नहीं। यही सब बातें तो होती है जो हमारे आसपास के लोग अपनी ज़िंदगी में कर दिखाते हैं और फिर हमको अपनी ज़िंदगी में उन बातों की याद आती है जिन बातों को हमने किसी न किसी वजहों से छोड़ दिया था। तो वक्त है नरेंद्र कौर जी की तरह उन सपनों को वापस से जीने का जो सालों पहले हमारे साथ हमारे पीछे छूट गया, उन सपनों को देखने का और ज़िंदा करने का। फिलहाल नरेंद्र कौर जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चलिए सच्ची सच्ची बता दिए चैट बॉक्स पर आकर के कि भाई 61 साल की एज में उन्होंने 10th पास किया है और दो पोतों की वो दादी भी बन चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल हौसला जो है वो एकदम यंग है।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।

हाँ जी, तो फिलहाल हमने नरेंद्र कौर जी के बारे में बताया था, जिसके बारे में हमने कहा कि भाई आप अपने रिएक्शंस दीजिए, और आपके रिएक्शंस फिलहाल आ गए हैं चैट बॉक्स पर। और धर्मेंद्र मोहन जी ने आवास विकास गोंडा से लिखा है कि नरेंद्र कौर जी पंजाब की शान जी, साढ़े पंजाब की शान जी। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस रिएक्शन के लिए। आशु मिश्र जी लिखती हैं, सर जी पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी जागो तभी सवेरा, क्या बात है। एंड प्रीति जी लिखती हैं, नरेंद्र जी का जज्बा अति सराहनीय और प्रेरणादायक है सभी के लिए, है ना, दैट्स वेरी गुड। एंड दीपक हथियागढ़ गुंडा से लिखते हैं, नरेंद्र कौर जी के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही लोगों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए तथा अपनी ख्वाहिशों और सपनों को पूरा करना चाहिए, क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही है। एंड फिलहाल आपने एक बड़ा ही ज़्यादा ट्रेंडी नेम सुना है, कॉकरोच जनता पार्टी। ऑफकोर्स भाई, अब जब सभी जगह वायरल हो गया है तो क्यों ना हम बताएं इसके बारे में। सो फिलहाल ये कौन सी ऐसी जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो रातों रात वायरल होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आखिर इसके पीछे की वजहें क्या है जो आप बार बार रील्स में देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। सो आखिर कौन सी है ये कॉकरोच जनता पार्टी, क्या सच में कॉकरोचेस की है या इसके पीछे है कुछ और रीज़न, ये सब कुछ बताते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा ट्रेंडी कर रहा है ये नाम, और ऑब्वियस सी बात है आपने कई सारी रील्स देख ली होंगी, मीडिया में भी सुना होगा, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास तौर पर। भाई एक ऐसा पेज जिसने ऑफकोर्स दो दिग्गज पार्टियों को, जो पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया की, उनको पीछे छोड़ करके इतने तेज़ी से रातों रात फॉलोअर्स बढ़े, आखिर क्या है और कौन है कॉकरोच जनता पार्टी?
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं और कॉकरोच को लेकर के दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी खासी चर्चा में है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने सैटरडे को अपनी टिप्पणियों पर सफाई जारी करते हुए कहा कि ये एक मीडिया वर्ग के उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद एक सटायर सोशल मीडिया कैंपेन पर खासा चर्चा है और इस चर्चा के केंद्र में है कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। सो इंटरनेट पर इसके नाम से एक वेबसाइट बन चुकी है और इंस्टाग्राम पर इसके 40 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वेबसाइट पर इसकी सदस्यता के लिए खुद को रजिस्टर्ड भी कर लिया है। सो आखिर क्या है CJP और कैसे हुई शुरुआत इसकी? सो कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर इसके संस्थापक और संयोजक की जानकारी दी गई है और उनका नाम जो है वो है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बताया कि इस तरह का सोशल मीडिया कैंपेन उन्होंने किस वजह से शुरू किया। इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन का आइडिया कहाँ से आया? इस सवाल पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि मैं ट्विटर यानी एक्स पर CJE यानी भारत के CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश का बयान देख रहा था जहां पर वो सिस्टम की आलोचना करने और राय देने के लिए देश के युवाओं की जो तुलना है वो कॉकरोच और परजीवियों से कर रहे थे। सो मैंने इसे बेहद हास्यास्पद समझा क्योंकि CJI का देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है, वो संविधान जो हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। अब एक ऐसा शख्स जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हो वो कैसे युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर सकते हैं? इससे मुझे गुस्से और निराशा ने भर दिया और ट्विटर पर मैंने इसकी अपनी राय दी। मैंने पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? मुझे जेंजी और 25 साल तक के युवाओं के कमाल के जवाब मिले और उन्होंने कहा कि हम साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इसने मुझे आइडिया दिया। हमने ऑनलाइन एक पैरोडी पार्टी बनाई जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। अगर आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। इस पार्टी में शामिल होने के लिए मैंने पात्रता तय की है, जैसे आपको आलसी होना होगा, जैसे CJI ने कहा कि आपको बेरोज़गार होना होगा और आप लगातार ऑनलाइन रहने वाले हों, जैसा कि CJI ने कहा है। उन्होंने CJI जिन भी शब्दों का इस्तेमाल युवाओं को बेइज्जत करने के लिए किया, हमने इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए पात्रता रखी है। कुछ ही घंटों में इसने चमत्कार कर दिया और हर कोई इस पर रिएक्शन देने लगा और ख़ुद को रजिस्टर्ड करने लगा। इसके बाद हमें लगा कि ये बड़ा होने वाला है और सिर्फ मजाक नहीं रह गया है क्योंकि लोग निराश हो चुके हैं। और हमने एक वेबसाइट बनाई, पार्टी की घोषणा पत्र बनाया, इंस्टाग्राम पर हमारे 2 मिलियन फॉलोअर्स अब 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर रजिस्टर भी किया है। सो भारतीय राजनीति में ये काफ़ी वक्त के बाद बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व है। सो ऐसी कामयाबी की वजह क्या है? कई चर्चित लोगों ने अभिजीत दीपके की इस मुहिम का समर्थन भी किया है। इस पर अभिजीत कहते हैं कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा कि वो इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसका समर्थन किया है। इसके अलावा कई लोगों ने हमारा समर्थन किया है और आज ये चर्चा का विषय है, साथ ही दिन ब दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के लोगों से जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि ये एक डिजिटल मीडिया में एक खलल की तरह है। सोशल मीडिया पर 40 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होने के पीछे की कहानी नज़र आती है। इस सवाल पर अभिजीत कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहूँगा कि ये सब हासिल किया है, ये सब लोग आपस में साथ आए हैं। हम ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ साथ लेकर आए हैं। आज जब कोई डिजिटल एजेंसी या कोई राजनीतिक दल ऐसा कुछ करता है तो उसकी इतनी तेज़ी से कामयाबी नहीं मिलती। फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी को ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। युवा के अंदर कई सालों से जो निराशा और गुस्सा पल रहा है वो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की वजह है। सरकार की नाकामियों की वजह से युवा बेरोज़गार है और उन्होंने एक मंच मिला है जहां वो अपनी निराशा और गुस्से को निकाल सकते हैं।
ऐसा कहना था अभिजीत दीपके का। सो आपको बता दें कि अभिजीत दीपके कौन है। किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन के लिए एक नेता होना बहुत ज़रूरी है। अभिजीत दीपके आखिर कौन है? सो इस सवाल पर वो कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। ग्रेजुएशन के लिए मैंने पुणे गया। इसके बाद कुछ सालों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला, जहाँ मैं उनका कम्युनिकेशन टीम में था। मैं उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करने की वजह से उनसे आकर्षित था। ये कुछ नया था जो पहली बार भारतीय राजनीति में हो रहा था। जैसा कि आज काकरोच जनता पार्टी नहीं है, ऐसा ही मुझे लगा कुछ नया बदलाव लाने जा रहा है। मैंने कुछ समय के लिए उनके साथ काम किया और फिर मुझे लगा पढ़ने की ज़रूरत है और मैं घर पर मास्टर्स की तैयारी करने लगा। मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं 2 साल यहाँ पर हूँ और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। काकरोच जनता पार्टी के घोषणा पत्र काफ़ी ध्यान खींचने वाला है। इस पर अभिजीत कहते हैं कि मुझे लगता है घोषणा पत्र इस समय भारत के लोकतंत्र और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो जज जिन्हें निष्पक्ष रहना होता है, जिनका सरकार से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से लाभ ले रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना होता है। अगर न्यायपालिका भी सरकार की राह पर चलेगी तो फिर क्या रह जाएगा? फिर लोकतंत्र को कौन बचाएगा? दूसरी बात, महिला के प्रतिनिधित्व को लेकर बताया कि मैं बचपन से सुनता आया हूं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ। अगर महिलाओं को आरक्षण देना हो तो 50% आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहना है अभिजीत का। तो भारत का जेन ज़ी कैसा है? नेपाल और श्रीलंका में जेन ज़ी आंदोलन देखे गए। नेपाल में तो आंदोलन के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका नेपाल के जेन ज़ी की तुलना भारत के जेन ज़ी से करने पर अभिजीत क्या सोचते हैं? इस सवाल पर अभिजीत बताते हैं कि जेन ज़ी की तुलना श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के जेन ज़ी से करना एक बड़ा अपमान होगा, क्योंकि वो भारतीय जेन ज़ी हैं, हिंसा में नहीं भड़क रहे हैं। अभिजीत कहते हैं कि भारतीय जेन ज़ी व्यंग के जरिए अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर वो यमुना साफ कर रहे हैं, कूड़ा हटा रहे हैं। वो इसके ज़रिए सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो सड़क पर जाकर हिंसा नहीं भड़का रहे। अगर कल को वो सड़क पर जाते भी हैं तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ये करेंगे। ये जेन ज़ी आज़ादी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। हमें सवाल ये करना चाहिए कि हम पर अशिक्षित लोग शासन क्यों कर रहे हैं? काकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान बनकर रह जाएगा? इस पर अभिजीत कहते हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, कल और युवा संगठन में आगे आएंगे। ये कहते हैं कि युवा मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुका है। अगले कुछ साल में अपने आप देखेंगे कि युवा बदलाव की मांग करेगा, क्योंकि पिछले 10 से 12 साल में युवा ने सिर्फ धर्म के नाम पर उपदेश के अलावा और कुछ भी नहीं सुना। युवा इस राजनीति व्यवस्था को बदलना चाहता है, जहाँ पर हम तकनीकी रूप से एडवांस्ड हों, जहां रोज़गार मिले, आगे बढ़ते हुए दुनिया के बेस्ट देशों में तुलना करें। हम कब तक नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से तुलना करते रहेंगे? भारतीय जेन ज़ी ये चाहता है कि वो खुद के साथ कॉकरोच की तरह व्यवहार नहीं चाहता है। इसके बाद अभिजीत, क्या अमेरिका से लौटकर भारत वापस आएंगे? इस सवाल पर अभिजीत कहते हैं कि ज़रूर भारत लौटेंगे। इन्होंने कहा, मैंने पिछले सप्ताह ही ग्रेजुएशन पूरा किया है और अब मैं वापस लौटकर इसे आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोग साथ आ रहे हैं और वो अच्छे से बदलाव चाहते हैं। हमारी स्थापना के 4th दिन ही रजिस्टर्ड सदस्य 2 लाख पहुंच चुकी है और ये संकेत है कि जेन ज़ी चाहता है कि उसका अपना पॉलिटिकल फ्रंट हो। सो ये पूरी बातचीत जो थी वो अभिजीत के साथ में हुई थी, जिनकी ये पार्टी है काकरोच जनता पार्टी, जिसने रातों रात इतने ज़्यादा व्यूज़ पा लिए कि बहुत दो बड़ी नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के फॉलोअर्स भी बहुत पीछे छूट गए। और इस काकरोच जनता पार्टी में जिस तरह से अभी जेन ज़ी रुझान दिखा रहे हैं, वो पूरे में ट्रेंडी बना हुआ है और हर तरफ जो चर्चा है वो काकरोच जनता पार्टी की है। सो ये थी पूरी बात जो कि हमने आपको बताई। इसके अलावा आपके मैसेजेस भी आ चुके हैं, काफ़ी लोग बाद में भी जुड़े हैं। चलिए आपके मैसेजेस को पढ़ के हम बताते हैं कि कौन कौन आया है और क्या कुछ लिखा है। सो उसके बाद जो मैसेज आया कायनात का है, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं अदनान से, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, कहाँ थे, 2 दिन बाद मिले। जी हम लखनऊ में थे और ज़रूरी कुछ काम से थे, और वापस आने के बाद बिल्कुल वैसे ही मिल रहा है जैसे हम गए थे। आपसे वादा करके कि आएंगे ज़रूर।
एंड इसके बाद नगेश्वर का मैसेज है, गुड मॉर्निंग आरजू अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। उस्मान खान लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद चलते हैं, आप लोगों ने चूंकि नरेंद्र कौर जी के बारे में भी बताया, थैंक यू सो मच। एंड कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुन करके हमारे कुछ लिसनर्स चौक भी गए हैं। और राइट, सविता दुबे जी ने कहा, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई सर, थैंक यू सो मच। खैनात ने भी कहा, और धर्मेंद्र जी कहते हैं कि हर नागरिक का स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग किसी भी वक्त कर सकता है। सो ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा है कि भाई हर नागरिक का स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि वो किसी भी वक्त कर सकता है। सो भाई इस बारे में क्या राय है, जो कि आपने अभी एक जेंजी पार्टी के बारे में सुना जिसका नाम ही है कॉकरोच जनता पार्टी, और जिस तरह से CGI का बयान आया उसके बाद ये पार्टी वजूद में आई, इस पर जेंजीज के रिएक्शंस आए, और आज देखते ही देखते ये जो है ट्रेंड पूरे में ट्रेंडिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसको बनाने वाले अभिजीत का हमने आपको सारा साक्षात्कार यानी उनसे हुई बातचीत के बारे में बताया, कि किस तरह से उन्होंने अब मीडिया को बताया है इन सारे सवालों का जवाब, और आप तक वो सवाल के जवाब हमने पहुंचा दिए। फिलहाल आज हमने बहुत सारी बातें की फ्राइडे स्पेशल में, एंड आई होप कि ये आज का स्पेशल डे यानी फ्राइडे ने आपके डे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया होगा। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो फिलहाल वक्त क्या है आपसे विदा लेने का, वापस से आएंगे ऑफकोर्स आज के शो में बाहर गज़ल में, और फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा

0: अरे तुम लोग क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ ना, आज हल्दी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा अचलपुर गांव ही पीले रंग में डूब गया हो।
1: अभी से सिलबट्टे पर हल्दी पीसी जा रही है, और कितनी शुद्ध हल्दी है। इसको लगाने के बाद

0: बाद लड़की का रंग इतना निखर कर आएगा कि फिर किसी भी पार्लर में भी नहीं जाना पड़ेगा।
1: अरे जानती हो, हल्दी सिर्फ रस्म नहीं है, आयुर्वेदा कहता है यह एंटीसेप्टिक है और नजर से भी बचाता है और मन को तो हल्का करता ही है।
2: बिल्कुल, हल्दी लगाई ही इसलिए जाती है कि थकान उतर जाए और चेहरे पर चमक आ जाए। थकान तो हम लोग की भी उतर गई और लोगों ने तो हम लोगों को पीला ही कर दिया है। बड़ा मजा आ रहा है।
1: देखो ना, दुल्हन भी कितनी प्यारी लग रही है, कभी शर्मा रही है, कभी गुस्सा भी कर रही है, और कितनी हल्दी लगाओगे, कभी हंसकर रिक्वेस्ट भी कर रही है। अरे भाई, अब बस भी करो।
3: तो चलो किरण, हम लोग भी चलते हैं, गीत गा के समा को बांध देते हैं।

0: अरे समता दी, बारात आ गई।
1: तो चलो चलो देखते हैं।
0: अरे देखिए दूल्हा कितना सुंदर लग रहा है।
2: हाँ, अरे देखो ढोलकी और गाने की आवाज ऐसी आ रही है जैसे धरती खुद ही थिरक रही हो। ओहो, बच्चे भी दौड़ दौड़ कर चिल्ला रहे हैं कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, और सारी सखियाँ मंगल गान गा रही हैं।
1: और देखो ना, दूल्हा भी कितना सजा धजा लग रहा है, जैसे मानो किसी फिल्म का हीरो लग रहा हो, और कितना खुश भी है। बाराती भी बैंड बाजे पर कितना नाच रहे। शहर का असर अब गांव में भी दिखने लगा है।
2: घर की औरतें आरती की थाली लेकर दूल्हे का स्वागत कर रही हैं। कुछ तो मजाक भी चल रहा है, और दुल्हन की माँ ने दूल्हे की नाक खींची है।
3: द्वार चार खत्म हो गया है, अब दूल्हा स्टेज पे आकर बैठ गया है। देखो बेसब्री से दुल्हन का इंतजार कर रहा है, जयमाला लिए बार बार अपना पसीना पोंछ रहा है।
4: शहर के कुछ रस्मों रिवाज अब गांव में भी पहुंच गए हैं। वो देखिए, दुल्हन शर्माती हुई आंखों में हजारों सपने लिए दूल्हे की तरफ चली आ रही है।
2: अरे कितना मजाक चल रहा है, लड़की को सबने ऊपर उठा लिया है ताकि जयमाल न डाल सके, पर आखिरकार दूल्हा झुक ही गया और जयमाल की रस्म पूरी हुई। अरे सब तालियां बजा रहे हैं और मंत्र उच्चारण भी कर रहे हैं।

0: जयमाल हो गया, खाना भी हो गया, अब बारी है फेरे की। मंडप सजा है, दिए की लो भी स्थिर है और हवा में अगरबत्ती और विश्वास की कितनी खुशबू आ रही है। देखने में तो सात फेरे सात चक्कर लगते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि सात फेरों में पति पत्नी का सात जन्मों का रिश्ता बन जाता है।
1: हर फेरे से जुड़ा होता है एक वादा, जो कि पूरे जीवन पति पत्नी साथ मिलकर पूरा करते हैं। ये फेरे एक दूसरे के साथ ईमानदारी, प्यार, विश्वास और सम्मान से जीवन यापन करने का वादा करते हैं।
2: ये फेरे अग्नि के चारों ओर लिए जाते हैं और ये माना जाता है कि अग्नि देवता इसके साक्षी हैं।
3: कन्यादान हो गया है, अब हर कोई अपने आंसू पोछ रहा है और दिल से वर वधु को आशीर्वाद भी दे रहा है।
1: अरे जया, ये तो खुशी के आंसू हैं। ईश्वर इनकी जोड़ी को बनाए रखे।
2: अरे अरे, अब समय आ गया है विदाई का। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटी अपने घर की हो जाए, पर जब टाइम आता है तो उनके आंसू रुकते नहीं हैं।
1: अरे सुनो सुनो, पर माड़ो हिलाई की रस्म तो हुई ही नहीं।
3: वो क्या होता है किरण दी?
2: समधे पक्ष के पांच लोगों को बुलाया जाता है मंडप हिलाने के लिए, और ये माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि सब काम अच्छे से संपन्न हो गया, अब सब हंसी खुशी अपने घर जाओ।

आज का प्रोग्राम अच्छे से संपन्न हो गया भाई, ये शादी हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आओ चलो अब वापस चलें और बहुत जल्दी हम फिर आप सभी से मिलेंगे गांव की गूंज की टीम एक नए एपिसोड के साथ।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, क्योंकि बज चुके हैं 12 और वक्त हो चुका है आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइव का। आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट जो आपको नॉस्टैल्जिक गानों की तरफ ले जाएगी और साथ ही साथ आप एंजॉय भी बहुत करेंगे। अब भाई एंजॉयमेंट तो बनता ही है क्योंकि भाई ज्ञानस्त्री लाइव आपने ट्यून कर रखा है और मैं यानी आपकी आरजे आयुषी हूँ और आज है दिन शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि भाई आज हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट की जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। जी हाँ, देखिए ज़िंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। काफ़ी लोग की पूरी ज़िंदगी लग जाती है लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि भाई आखिर ये ज़िंदगी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, आखिर ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती क्या है। तो भाई हम आ चुके हैं आपकी इस उलझन को आसान करने, यानी मैं आपकी होस्ट आयुषी इस सारी उलझनों को धीरे धीरे करके आपके दिमाग से क्लियर करती जाऊंगी कि भाई कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको जाननी चाहिए साइकोलॉजी से जुड़ी हुई। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे शो में। हमारे साथ बनी हुई है हमारे दो लिसनर जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही है, जिनका नाम है जिज्ञासा और साथ ही साथ कायनात जी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड आफ्टरनून और जिसने भी मुझे विश किया है उन सभी को गुड आफ्टरनून। चलते हैं हमारी आज की बात की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों आज मैं यानी आपकी दोस्त आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाली हूँ। आपको पता है कि इंसान याद क्या रखता है? जी हाँ, देखिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि आखिर हमें याद क्या रहता है, क्या वो याद है जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज भी जो लोग 18 से ऊपर होंगे या कॉलेज में होंगे, कॉलेज से बाहर होंगे, उन्हें अभी भी ढंग से छोटा बड़ा नहीं आता होगा, उन्हें ढंग से भी टेबल भी नहीं आती, वो उसमें भी बीच में कहीं ना अटकते होंगे कहीं ना कहीं पे। तो भाई ये चीज़ें हम भूल कैसे जाते हैं, और एक्चुअल में अगर हम इतना भुलक्कड़ हैं तो आखिर हम याद क्या रखते हैं? देखिए याद हम कभी शब्दों को नहीं रखते, याद हम कभी किसी बात को नहीं रखते, हम वो याद रखते हैं जो हमें महसूस होता है। क्या आपको पता है कि लोग आपकी बातें जल्दी भूल जाते हैं लेकिन आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं ये कभी भी नहीं भूलते। अगर किसी ने आपके मुश्किल समय को समझा है, आपका सहारा बना है, एक छोटी सी केयर दिखाई है, तो वो मेमोरी आपकी सालों तक दिमाग में बनी रहती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली चार्ज्ड मूवमेंट हमारे ब्रेन में ज़्यादा डीपली स्टोर होते हैं, इसीलिए कभी कभी एक छोटा सा प्यार भरा सेंटेंस भी 1000 मोटिवेशनल स्पीच का जो है उसको मात दे देता है। इसीलिए जब आप सोच चाहेंगे कि हाँ सामने वाला आपको याद रखे, आपको सालों बाद भी आप बिल्कुल आपसे बिल्कुल वैसे ही मिले, वही बॉन्ड रहे, तो कोशिश करें कि आप उससे सिर्फ बातों ही नहीं बल्कि आप उसे क्या महसूस करा रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं हम कि अधूरे काम दिमाग में क्यों घूमते रहते हैं। जी हाँ, अधूरे काम आखिर दिमाग में क्यों? आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका जो सिलेबस अधूरा है उसे आप ज़्यादा ही दिन तक याद रखते हैं कि अरे भाई वो तो अधूरा रह गया है, कहीं उसी से सवाल ना आ जाए, कहीं वो इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है, जो पूरा हो चुका है, वो आपके दिमाग से यूं छूमंतर होता है जैसे उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आखिर इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? देखिए कभी आपने नोटिस किया होगा कि कोई जब कोई काम अधूरा रह जाता है तो वो बार बार हमारे दिमाग में आता रहता है, जैसे कि असाइनमेंट, किसी का रिप्लाई ये है कि भाई कोई अधूरी बातचीत है, कोई रिप्लाई अधूरा रह गया हो, तो वो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है। इसके पीछे भी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फैक्ट है, उसे हम कहते हैं ज़िंगरनिक इफ़ेक्ट। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारा ब्रेन अनफिनिश्ड चीज़ों को ओपन टैब की तरह ट्रीट करता है। ओपन टैब जैसे कि आप जब भी कंप्यूटर चलाए, लैपटॉप चलाए, तो आपने कोई टैब ओपन करके आप छोड़ दिया है आपने, या फिर आप भूल गए, लेकिन आप भूल जाते हैं, आपका कंप्यूटर उसे हमेशा याद रखता है और नीचे आपको जो है वो टास्क बार में दिखता रहता है कि ये चीज़ ओपन है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता हमारा दिमाग उसे बार बार याद दिलाता रहता है। शायद इसीलिए कुछ लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, बार बार याद दिलाता रहता है। शायद इसीलिए कुछ लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोगों के जो अधूरे रिश्ते होते हैं ना उसको लेके लोग सालों तक अपनी ज़िंदगी यूं ही ज़ाया करते रहते हैं। हालांकि आपको ज़िंदगी उस अधूरी चीज़ में बितानी है, आगे बढ़ जाना है, क्या करना है वो आपको पर्सनल डिसीज़न हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी है इसके पीछे कि क्यों हम अधूरी चीज़ें याद रखते हैं। लेकिन याद रहे अधूरे के चक्कर में जो चीज़ पूरी हो रखी है ना उसे ना भूल जाइए, कि कहीं आप ये कहें कि भाई आरजे आयुषी ने कहा था कि अधूरी चीज़ ज़्यादा याद रहती है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपनी ज़िंदगी सुखद बनानी हो तो सभी चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिलहाल ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट। और फैक्ट्स और भी ज़्यादा हैं। जी हाँ, बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे फेक स्माइल भी कभी काम करती है। आपको पता है कैसे?
फेक स्माइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पे, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे पहचाने कि सामने वाला जो इंसान है वो एक्चुअल में खुश है कि नहीं। आपकी बातों पे अगर कोई खुश हो रहा है, हंस रहा है, तो वो एक्चुअल में हंस रहा है या फिर दिखावा कर रहा है, ये कैसे पता लगाए। जी हाँ, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ आज के शो यानी कि ज्ञानश्री लाइव में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस।

मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्त्री लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल प्लेलिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आपकी वापस लाती है। कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक हिट आप ज़रूर फील कर रहे होंगे भाई। ये वो सॉन्ग्स है जो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उस टाइम ऐसे बसे रहते थे, और आज भी जब हमें कभी स्टोरी पोस्ट करनी होती है तो हम कहीं ना कहीं पुराने गानों की तरफ जल्दी भागते हैं। तो भाई उस ज़माने के जो गाने होते थे उनका कहीं ना कहीं क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको याद दिला दिया जाए कुछ गानों की। जी हाँ, देखिए हम बात करेंगे गानों की भी, लेकिन चलते हैं पहले आज के मेन मुद्दे पे, यानी कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अभी मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि जो फेक स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरीके से काम भी करती है, उसका इम्पैक्ट भी, मतलब कह सकते हैं कि फेकनेस भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट करा के जाती है। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आप फेक स्माइल भी करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे मूव इम्प्रूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ थॉट से नहीं बल्कि बॉडी सिग्नल से भी इमोशन समझता है। मतलब कभी कभी एक्टिंग हैप्पी, अगर आप एक्ट कर रहे हैं, हैप्पी एक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में आपका दिमाग भी अच्छा फील करने लग जाएगा। इसीलिए जब आप बहुत दुखी हों और कॉन्शियसली आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो कुछ नहीं करना, बस फेकनेस दिखाने लग जाइए। यानी कि आप जो स्माइल, आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसको फेक करने लग जाइए। थोड़ी देर में आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप सचमुच का खुश फील करने लग जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम हमारे और साइकोलॉजिकल फैक्ट की तरफ। देखिए कभी आपने सोचा है कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं, मतलब कुछ लोग हर्ट होने के बाद भी किसी को छोड़ क्यों नहीं पाते? काफ़ी बार जो हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है वो हम नहीं छोड़ पाते हैं, हम उसी की याद में सालों साल बैठे रहते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंट प्यार से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल अफेक्शन पर जो है वो अडिक्ट रहता है, यानी कि उसकी जो एडिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी बहुत प्यार, कभी इग्नोर, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा केयर, लेकिन कभी कभी दुख। ये इमोशनल रोलर कोस्टर जो होता है ना दोस्तों, ये ब्रेन में एडिक्शन जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। इसीलिए जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं वो उसे छोड़ इसलिए नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक दिन छोड़ते हैं, दूसरे दिन उन्हें खुद उसी ही रिलेशनशिप की जो उन्हें इतना दुख दे रही है उसकी याद आने लगती है, और उन्हें भूलना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। एक बार आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप भूल सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप जो अधूरा रह गया है, इन सारी चीज़ों को आप कभी नहीं भूल पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप सब भी इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि देखिए अभी हमने बात की अधूरी चीज़ों को भी हम लोग याद रखते हैं, और जब जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप वही होती है जो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर आप वहाँ पर खुश नहीं हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे। और अधिकतर काफ़ी लोगों की ये समस्या भी होती है, वो यही सोचते हैं कि मैं खुश भी नहीं हूँ, मैं मुझे दुख भी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पाती हूँ। तो भाई ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन टॉक्सिक रिलेशनशिप का एडिक्शन जो है उसे हो जाता है। एडिक्शन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक शराबी को शराब का लत लग जाती है, वैसे ही आपके दिमाग को रोलर कोस्टर, जो इमोशनल रोलर कोस्टर होती है, उसकी आदत लग जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रात में लोग ज़्यादा ऑनेस्ट क्यों हो जाते हैं। ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि रात में कभी कभी मैंने ऐसे देखा है, जो आपके साथ भी होता होगा, आपके दोस्तों के साथ भी होता होगा, और आपने ये महसूस भी किया होगा कि रात होते होते पता नहीं हमारे दिमाग को क्या हो जाता है कि हमारा दिमाग ओवरथिंक करने लग जाता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सच बोलने लगता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो मैं आपको बताऊं कि जो रात में जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सच्चाई भरी होती हैं। वो किस लिए होते हैं उस पर हम बात करते हैं। देखिए लेट नाइट कॉन्वर्सेशन इतनी डीप क्यों होती हैं ये आपके जहन में भी कभी ना कभी आता होगा, क्योंकि रात जो हमारा जो रात आती है वो हमारे मेंटल फिल्टर उस वक्त हमारा जो मेंटल फिल्टर होता है वो वीक हो जाता है, हमारा ब्रेन थक जाता है और इमोशंस ज़्यादा बाहर आने लगते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें पीछे रह जाती हैं। इसीलिए रात 2 बजे कहीं कई बातें अक्सर दिल से सच्ची होती हैं। तो सच बोलने के लिए अगर किसी से सच सुनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे नशा कराएं, आप ज़रूरी ये भी है कि अगर इंसान नशा नहीं करता है तो आप उसे रात के 2 बजे फ़ोन कर दें, और 2 बजे जो बातें होती हैं या ये कोई पंडित जी की बताई हुई टाइम नहीं है, जो रात होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और तब वो बात करता है, वो अक्सर सच होती हैं और दिल से की गई होती हैं। है ना इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ आपको पता है कि अगर आपके सामने कोई झूठ मूठ का हंस रहा है, यानी फेक स्माइल कर रहा है, आप
आपको लग रहा है आप

दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप कैसे जाने कि वो इंसान एक्चुअल में खुश है या फिर नहीं। देखिए, जब भी हम हंसते हैं, जब हम दिल से खुश होते हैं, तो हमारे होठों के साथ साथ हमारी आंखें भी हंसती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ही बात कर रही है, आंखें कैसे हंस सकती हैं। देखिए, आंखें भी हंसती हैं। जब कोई इंसान हंसता है और दिल से खुश होता है, तो उसकी आंखें थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि छोटी होने लगती है। और जब आंखें छोटी होने लग जाती है, तो भी तभी हम कहते हैं कि भाई इनकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान हंस रहा है सिर्फ होठों से, लेकिन आंखों का जो शेप है वो नॉर्मल है, इट मीन्स वो इंसान फेक कर रहा है चीज़ें, वो इंसान हंस नहीं रहा है, खुश नहीं हो रहा है, बस वो नाटक कर रहा है। तो आइंदा कोई अगर आपके सामने ऐसा इंसान हो जो खुश होने की एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ फेकनेस दिखा रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई झूठ बोलना बंद करो या फिर फेक दिखाना बंद करो। और ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका दोस्त बहुत दुखी में हो, बहुत दुख में हो, बहुत दुखी फील कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपके सामने हंसने की नाटक कर रहा हो। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपका माइंड बिल्कुल हिला के रख देंगी। वो क्या चीज़ें हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको एंजॉय करना है ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम, जिसमें आवाज़ है के की और गाना है अजब सी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल।

0: जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल प्लेलिस्ट और साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी। अब देखिए, बात जब हम फैक्ट्स की कर रहे हैं तो भाई हम कैसे भूल जाएं लोगों को, यानी कि हमारे समाज को। देखिए, जो समाज होता है ना, जो ये समाज के 4 लोग होते हैं, ये हमें कुछ सेकेंड्स में ही जज कर लेते हैं। क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है? जी हाँ, देखिए साइकोलॉजी कहती है कि लोग कुछ ही सेकेंड्स में आपके बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हैं। आपका पोस्चर, आपकी आवाज, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, सब कुछ एक साइलेंट मैसेज देता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर की फीलिंग ही नहीं बल्कि एक साइलेंट लैंग्वेज होती है। तभी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भैया जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अहम चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो लोनलीनेस होता है ना, जो अकेलापन होता है, वो इंसान को बदल देता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं? नहीं जानते होंगे, आई एम सो श्योर, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अकेलापन सिर्फ एक फीलिंग ही नहीं होती बल्कि ये इंसान की पर्सनैलिटी बदल सकती है। लॉन्ग टर्म लोनलीनेस यानी कि लंबे समय तक अकेला रहना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है और ट्रस्ट इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए कभी कभी लोगों को एडवाइस नहीं बल्कि एक सच्चा साथ चाहिए होता है, क्योंकि अकेलापन इंसान को और भी ज़्यादा बिगाड़ देता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, आपका हमारा सबका प्रिय दोस्त जो है, उसके बारे में बात करते हैं। कौन है वो? जी हाँ, वो है हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, सभी की प्यारी ओवरथिंकिंग। भाई वही जो आप रात भर सोचते रहते हैं, एक कोई जड़ पकड़ लेंगे और उससे पूरा का पूरा पेड़ खड़ा कर देंगे रात भर में, और सुबह होते ही यही सोचेंगे कि भाई उस पेड़ के चक्कर में जिसमें हमने पूरी नींद ख़राब कर दी, वो इतना मतलब मायने रखता ही नहीं है जितना हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी एक रात जो है उसके पीछे ज़ाया कर दी। देखिए, ओवरथिंकिंग हमेशा प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती बल्कि अनसर्टेनिटी की वजह से होती है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, कहीं मैं फेल हो गया तो मैं समाज क्या कहेगा, और न जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में रात भर गूंजते रहते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है और उसी डर से वो ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। और लास्ट फ्राइडे हमने डिस्कस किया था कि भाई कैसे हमारी ओवरथिंकिंग सच निकलती है, कैसे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी। फिलहाल ये थी बात कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट की, लेकिन अभी भाई बातें ख़त्म नहीं होती, अभी बहुत सारी बातें हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना। जी हाँ, आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको जस्ट जाना है अपने घर के फ्रिज या फिर अपने घर के टंकी के पास। अब वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ जाके पहले तो अपने हाथों को सही से धुलना है, क्योंकि भाई आजकल हैजा बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हैजा सबसे ज़्यादा फैलता है गंदगी से। हैजा के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो सुनिएगा कल का शो यानी स्वास्थ्य संगिनी, जो कि हैजा स्पेशल, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर ये हैजा, जिसे हम कॉलरा भी जानते हैं, कॉलरा के नाम से भी जानते हैं, आखिर ये होती क्या है। तो भाई साफ रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ फ्रिज के पास जाएं और वहां से लें 1 बॉटल पानी। जी हाँ, पानी, और पानी को लगातार पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और हाइड्रेशन की कमी से इंसान की जान पे भी बन आ रही है। तो पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, अपना ध्यान रखें और अपने घर के बड़े जो होते हैं, यानी कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों का खास ख्याल रखे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की

लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट और साथ ही साथ कुछ चटपटे से साइकोलॉजिकल फैक्ट जो कि कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं लेकिन आपको उसके पीछे का असल कारण नहीं पता है। तो भाई कारणों के पीछे हमने बात की लेकिन अभी ये चीज़ें यहीं नहीं ख़त्म होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए आपको क्या लगता है कि कुछ लोग इतने जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं? आप भी करते होंगे, मैंने भी किया था और सभी करते हैं। काफ़ी बार हम क्या होता है कि हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं अक्सर वो इमोशनली बहुत प्योर होते हैं क्योंकि उनका दिल दुनिया की तरह दुनिया को अपनी ही तरह बिल्कुल ऑनेस्ट समझता है। लेकिन कई बार ऐसे ही लोग ज़्यादा हर्ट भी होते हैं क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इंसान ट्रस्ट जब देखता है कि सामने वाला इमोशनल बॉन्डिंग बना रहा है, जब भी आपको चाहिए कि आपको कोई ट्रस्ट करे या ट्रस्ट का बॉन्ड बने तो आप कुछ नहीं, बस आप उनकी इमोशनल चीज़ों को सामने लाना स्टार्ट कर दीजिए, यानी उनके साथ इमोशनली जो आपकी इमोशनल वाइब है उसको सेट करना चालू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बीच का ट्रस्ट तो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन याद रहे ये जो टिप है ना, इसको थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ देखिए वॉइस का जो असर होता है वो वर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या आपको पता है कि कई बार लोग आपके शब्द नहीं बल्कि आवाज़ की जो एहसास है उसे याद रखते हैं। एक ही सेंटेंस अगर प्यार से बोला जाए तो वो हीलिंग का काम करता है और वही सेंटेंस अगर गुस्से में बोला जाए तो किसी का दिल बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ भी सकता है। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि टोन क्रिएट्स इमोशन। तो भाई अपनी आवाज़ की जो रफ्तार है उसकी जो टोन है उसको सोच समझ के जो है इस्तेमाल करिए क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि आपकी इस टोन से ही आपको जज कर रहा हो। साथ ही साथ देखिए जो एक वर्ड है जो आप हम अधिकतर यूज़ करते हैं वो है मैं ठीक हूँ। ये हमेशा सच नहीं होता। कई बार लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई मुस्कुराते हुए लड़ते हैं। जब कोई इंसान बार बार कहे मैं ठीक हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान सच में ठीक हो। देखिए मैं ठीक हूँ ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है लेकिन जब कोई आपके सामने या आपके घर में आपका कोई दोस्त आपका कोई करीबी यही एक शब्द बार बार दोहराने लग जाए कि अरे मुझे क्या हुआ है मैं तो ठीक ही हूँ, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तो जब कोई इंसान कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को दबा देता है और बार बार उसके मुँह से यही निकलता है कि मैं ठीक हूँ तो आपको ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है। तो आइंदा अगर आपके घर में कोई ऐसा बोले तो भाई उसके पास बैठे, कुछ करना नहीं होता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने होते ना कुछ पैसे खर्च होते हैं, बस आपको उसके पास बैठना है और आप उससे बस ये पूछना है कि क्या बात है। अगर आप यही इतना पूछ लेंगे और उनके इमोशनल जो टोन है इमोशनल चीज़ें हैं उनको टच करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान का दिल पिघलेगा, उसकी सारी सच्चाई सामने आएगी और हो सकता है कि आपके इस छोटे से सवाल ने छोटी सी मदद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बनप रही एक बहुत ही बड़ी बीमारी को कम कर सकता है। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस इन सभी चीज़ों का जो जड़ होती है वो सप्रेस्ड इमोशन ही होते हैं। तो भाई अगर आप कुछ फील कर रहे हैं कुछ सोच रहे हैं तो ज़रूरी है उसको एक्सप्रेस करना। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को सप्रेस कर देता है तो कोशिश करें उससे बातचीत करने की और उसकी बातों को सुनने और समझने की क्योंकि बोल तो हर कोई लेता है लेकिन समझता कौन है और सुनता कौन है। तो आइंदा अपनों के लिए सुनने वाले आप बने। फिलहाल ये था हमारा आज का शो, आशा करती हूँ कि आपने कुछ समझा होगा सीखा होगा और इन्जॉय भी बहुत सारा किया होगा। देखिए गर्मियाँ अब चल रही हैं, गर्मियों में मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि भाई पानी ज़रूर पिए क्योंकि पानी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। चालू हो चुका है नौतपा और नौतपे में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इस गर्मी को हराना है और अपने आप को ठंडा रखना है देसी नुस्खों के साथ। देसी नुस्खे जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा भाई हमारा शो जो कि आता है मंडे टू सैटरडे ज्ञानस्त्री लाइव और साथ ही साथ दो हेल्थ स्पेशल शो जो कि स्वास्थ्य संगनी जो आता है बुधवार को और शनिवार को। फिलहाल कल है शनिवार।

आर और कल हम बात करेंगे कॉलरा की, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, उस पर हम बात करेंगे। तो भाई कल का इंतज़ार करिए, कल तक हम आएंगे और आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी के सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है, कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं और कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी यानी कि हमारी टीकन भाभी जी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुँचने की कहानी। टीकन भाभी, उससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे, और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा करें तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि गांव के लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इन सभी अफवाहों के बीच छिप गया है। आज हम उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलती हूँ आज मैं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस यह कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये एक HPV है या जो भी नाम है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन कर दिए हैं और कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएगी बेटियां, किसकी सुने। यह तो बहुत बड़ा निर्णय लेना है।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखो, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे मान लें कि क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता है। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और आखिर में क्या क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह भी सुनने को मिलता है कि पहले 3 डोज लगी थी, अब बोल रहे हैं, कोई कह रहा है यह जल्दबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य

0: की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा, निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर हमें तो यही डर लगा रहता है कि कहीं आगे चलकर शादी ब्याह में बिटिया को या बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है।
2: यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आज माँ है। ये वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाहों के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSL के यानी कि सेहत सही लाभ कई की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठी है, पर पीरियड्स के बारे में क्या? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और ये पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे ही समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है और सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: हाँ जी टीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: लेकिन एक बात और, अगर यह इतना अच्छा है तो खर्च कितना आएगा? सच कहूँ टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
0: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी भी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। और यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
1: मुफ्त? सच में मुफ्त है?
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर, और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल से पूछो, डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो, फॉरवर्ड भेजने वालों से क्या पूछना।
1: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने, कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, और फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर ही आकर गिरती है।
0: इसलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का भी फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब तो शोर है।
2: श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, या बताओ क्या माने क्या ना माने।
0: कभी कभी हल्का बुखार।

0: है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती हूँ।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं गलत फैसला न ले लूँ।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूर दृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों जानकारियों मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होता है। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, ना कि अफवाह। और सही जानकारी ही लाभकारी होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए।
1: टीकन भाभी, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। यह बात तो मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब बस बचना मुश्किल है।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK यानी कि सेहत सही लाभकारी का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं कि आखिर में सुनीता ने क्या फैसला लिया।
1: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना कहूँगी ना हाँ कहूँगी, लेकिन एक बात पक्की है, हाँ, फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
0: बस यही जीत है, सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
1: और अगर डॉक्टर वही कहें जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कह दूंगी कि फालतू के इधर उधर के तथ्यों को न देखो और न उन पर ध्यान दो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों को होती है, पर जब घर में किसी को कुछ होता है तो समझ में आता है कि बीमारी जात, धन और जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुँच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो भी पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी तो उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, वैज्ञानिक यानी विज्ञान और प्रमाण से गाइडेंस होने के बाद ही होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।

0: उसे साथ लेकर जाओ। दो लोग जाएंगे तो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोसी, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोलें।
2: अच्छा भाभी, अगर मेरी बेटी मुझसे पूछे कि अम्मा आप पहले डर क्यों गई थी, तो मैं क्या कहूँ उससे?
0: कहना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने भाभी, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुँच सकता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी का, आप दोनों का ही शुक्रिया। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातों को संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी बात, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी बात, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी बात, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठवीं बात, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से भी एक बात, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुँचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ में पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर सही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही है, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक के लिए याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है, तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की सही जानकारी लें। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं है, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM के साथ सीधा संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
3: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? गर्मी ने तो अपना रूप दिखाई दिया है और इस गर्मी के लिए सभी परेशान हैं। मतलब हम जीव तो परेशान हैं ही, पर साथ ही साथ में पेड़ पौधे सूख रहे हैं और हमारे जो जीव जंतु हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिएं, क्योंकि इस समय तो जब हम पानी पी रहे हैं तो वो पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में ऐसे एब्जॉर्ब हो जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर 3 से 4 गिलास पानी पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। तो भाई पानी आप लोग खूब पिए, क्योंकि पानी ही आपकी बॉडी को इस समय जिंदा रखे हुए हैं। तो पानी की कमी बिल्कुल ना करें, धूप में आने से पहले और जाने से पहले भी आप पानी का इस्तेमाल ज़रूर से करें। तो चैट बॉक्स में आ जाइए फटाफट। आ गई आपकी आर्य समता एंड मैं आपसे मिली थी कल मॉर्निंग में, उसके बाद मिल रही हूँ आज। तो आप सभी का हाल क्या है, कैसे हैं आप सभी? हम तो भाई ठीक हैं और मस्त हैं। तो चलिए इस प्यारे से शो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम कुछ नहीं, बहुत कुछ नया खास लेकर के आने वाले हैं। तो क्योंकि हमारी एक औपचारिकता होती है कि जब हम कुछ नया लेके आते हैं, यानी कि जो सही है, सच है, वही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड मैं प्यारी सी दोपहर हमेशा से बोलती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि दोपहर ही है और कड़ी वाली दोपहर है। तो इस दोपहर को आवाहन करते हुए आइए एक साथ दोनों एक ही साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे, शुभ दोपहरिया।
9: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हम फिर से आपसे बातें करने के लिए, आपको बहुत कुछ बताने के लिए। तो आज हमारा ब्यूटीफुल डे है, यानी कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्राइडे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे ब्यूटीफुल फ्राइडे में सबसे पहला वो क्या है, वो पहली कौन सी चीज़ है जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हमारे पास आने वाली है। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा स्टार्टिंग का जो सेगमेंट होता है वो होता है पोएट्री का, और आज है हमारा दिन रिश्तों की महक का। तो चलिए रिश्तों की महक से कुछ हम भी महकाते हैं और जानते हैं कि क्या है आज इस खुशबू में।
8: रिश्तों की महक सबकी ज़िंदगी में नहीं होती है फिलहाल तो, और कुछ रिश्ते होते भी हैं जो थोड़े से धोखेबाज होते हैं, थोड़े से नालायक होते हैं, बट समय रहते रहते उन्हें भी बुद्धि आने वाली है कि हाँ कोई रिश्ता ऐसा है जब हम सामने तो कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कुछ ऐसे भी होते हैं सामने तो बड़ा ही जी जी जी जी जी जी और पीठ पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो दिल से होते हैं, और दिल से मानने वाले रिश्ते उनके चेहरों पे आ जाते हैं। तो ये रिश्तों की पहचान थी, ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी। तो पता नहीं कौन किस में फिट होता है, वो तो आप लोग खुद जाने। आइए रिश्तों की एक प्यारी सी पोयम को लेते हैं, अभी सुनाते हैं आपको। रिश्ते होते मिट्टी के दिए की तरह, रिश्ते होते हैं मिट्टी के दिए की तरह, जो अंधेरे रास्तों में उजाला भर देते हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये हमें हर मुस्कुराहट की वजह देते हैं। कभी खट्टी तो कभी मीठी सी शरारत है, ये रिश्ते ही तो जीने की असली ताकत है। बिना कहे जो दिल का हाल समझ ले, वही रिश्ता सबसे खूबसूरत इबादत है। वक्त की धूप में ये छांव बनकर आते हैं, वक्त की धूप में ये छांव बनकर आते हैं, आंसुओं को रोककर मुस्कान बिखेरते हैं। दुनिया की इस भीड़ में कोई साथ न हो, दुनिया की इस भीड़ में कोई साथ न हो, अपने हर मोड़ पर साथ निभाते हैं। सोने जैसा कीमती इनका ये बंधन, इनसे ही महकता है जिंदगी का आंगन। इन्हें हमेशा प्यार से संभाल कर रखना, इन्हें हमेशा प्यार से संभाल कर रखना, क्योंकि रिश्ते ही होते हैं सबसे बड़ा धन, क्योंकि रिश्ते ही होते हैं सबसे बड़ा धन। तो भाई ये रिश्तों की महक के लिए ही कह सकते हैं इतनी प्यारी सी पोयम थी। चलिए अब हम लेते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
9: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक रिश्तों में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रिश्तों में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव को स्वीकार करने का मतलब होता है कि समय के साथ इंसान का व्यवहार और उनका व्यवहार बदलता है। रिश्तों में हमें ये बदलाव स्वीकारना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में बदलावों को धीरे धीरे स्वीकार करते हुए अपने रिश्ते को बेहतर बनाना ही एक सबसे एक बहुत ही अच्छे रिश्ते की पहचान होती है। लेकिन ज़रूरी है कि जब दो लोगों के बीच रिश्तों में बदलाव आने लगे तो वो उस बदलाव को समझदारी के साथ समझें। यहाँ बदलाव का मतलब ये है कि जैसे होता नहीं कि हमारा रिश्ता किसी के साथ होता है, या आप अपने पेरेंट्स के साथ ही ले लें, बट समय समय के साथ रिश्तों में कुछ बदलाव होने चाहिए। कुछ चीज़ें आप किसी के हिसाब से समझें, कोई एक अगला आपके हिसाब से समझें, क्योंकि रिश्ते भी होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं। दो लोगों का नेचर भी होता है जो समय के साथ एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बदलता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमने जैसे शुरू किया था हमारा रिश्ता वैसा ही रहे। समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं, और उन बदलावों को स्वीकार करना, एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक वो रिश्ता नहीं चल पाता, कोई भी रिश्ता हो। इसलिए एक दूसरे को समझना और जो बदला है उसे उस बदलाव के साथ एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने रिश्ते में हर बदलाव को, हर एक प्लेस को, हर एक खुशी को, हर एक गम को समझिए और अपने रिश्ते को बेहतर बनाइए। यही है हमारा आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कि रिश्ते बदलते हैं, रिश्तों में कई सारी चीज़ें बदलती हैं, कई बार इंसान का व्यवहार भी बदलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है रिश्तों में वो यही होती है कि हर रंग, जैसे हम कहते हैं ना कि सात रंग होते हैं इंद्रधनुष में, उसी तरीके से आपके रिश्तों में भी समय समय पर हर रंग होता है। और हर रंग को एक्सेप्ट करके उससे अपने रिश्ते को रंगीन बनाइए, क्योंकि जो समझदारी और एक बहुत कहते हैं ना कि जिनका सिंसियर नेचर होता है, तो जो अपने गंभीर व्यवहार और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं वही रिश्तों को आगे ले जा पाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ अच्छा लगा हो, और हमारी आज की पोएट्री में आगे भी बहुत कुछ है जो कि हम आपको बताएंगे और आपसे बातें करेंगे कि आज दिन है कुछ रिश्तों को महकाने का। तो रिश्तों को महकाएंगे भी और उनकी खुशबू कैसे बनी रहे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि टाइम हो रहा है एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग का। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
0: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
0: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
0: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में अंशिका। तो चलिए अपने प्रोग्राम की ओर चलते हैं और आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूं जो कि आप सभी को पता है कि जैसे हम हमेशा से आपको बताते हैं, सबसे पहली बात, ये डिसऑर्डर तो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो बात है कि हमारी मन स्थिति का प्रभाव। मैं फॉलो करती हूँ किसी एक स्पिरिचुअल लेडी है, उनको फॉलो करती हूँ, तो सेम ये बात अंशिका मैंने उनसे जानी है।
7: जी मैम।
6: क्या जानी है?
7: क्या है बात?
6: बात ये जानी है कि जब मैं, पता नहीं क्यों मुझे ये अंदर से फील होने लगता है कि अगले के मन में, अगले के मूड में, अगले के फेस में क्या चल रहा है।
7: ओके, ये तो अच्छी वाली बात है कि आपको फील हो जाता है।
6: और तुम्हारे मन फेस में मेरे लिए क्या चल रहा है मुझे ये भी पता चल जाता है।
7: ओके, ये तो अच्छी बात है।
6: और वो निगेटिव है।
7: हो सकता है समझने में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो।
6: ना, कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जिसके लिए भी कुछ समझ लेती हूँ ना, वो फिर गलत नहीं होता है।
7: ओके, हो सकता है मैम, रिश्ते ही हैं, रिश्तों में कुछ भी हो।
6: तुमसे रिश्ता थोड़ी नहीं है मेरा कोई, तुमसे मेरा क्या रिश्ता है?
7: और ठीक है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अगर आप ऐसा कह रही हैं।
6: एक सहेली कह लें, एक स्टूडेंट कह लें, या फिर हम साथ में काम करने वाले कह लें, तो वो रिश्ता थोड़ी हो जाता है। रिश्ता तो वो होता है जो ब्लड रिलेशन होता है।
7: ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट है कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि ऐसा जरूरी है कि आपका ब्लड रिलेशन ही रिश्ता होता है। हाँ, ये मान सकते हैं हम कि जो ब्लड रिलेशन से हमारे जुड़े होते हैं वो बहुत डीपली मतलब एक जुड़े होते हैं, बट हमारे साथ डेली उठने बैठने वाले, जैसे जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं, जो लोग एक प्रॉपर टाइम देते हैं, तो आप सुबह 10 बजे जाते हो, 8 बजे जाते हो, या जितने भी टाइम जाते हो, और आप लौटते हो शाम को 5 बजे, तो कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ का एक 7-8 घंटा अगर किसी को दे रहे हैं, हमारा कलीग है, उसके साथ हम बैठ रहे हैं, कोई भी है, एनीबॉडी, आप अपने बॉस के साथ होते हो, उसके साथ भी तो आप बैठते हो, तो कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, मतलब
6: उससे वो रिश्ता है,
7: एक प्रॉपर नहीं होगा, चलिए हम मान लेते हैं कि प्रॉपर रिश्ता नहीं है, बट कुछ तो बन जाता है। हम कहते नहीं है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, तो कुछ बॉन्ड हो जाता है कि दो लोग अगर एक साथ उठते बैठते हैं या एक साथ बातें करते हैं, तो हो सकते हैं उनके कुछ ख्यालात मिलते हों, कुछ एक हो है, ऑरा ऐसा हो कि हाँ दो लोगों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो वो भी एक रिश्ता होता है। हम यहाँ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, वो भी एक रिश्ता है। और रही बात रिश्तों में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की कि वो मेरे लिए नेगेटिव है या वो मेरे लिए पॉजिटिव है, तो ये रिश्ते हैं, इनमें ये जो कहते नहीं कि
6: अप एंड डाउन्स
7: वो होंगे। अगर आप किसी के साथ उठे बैठेंगे, किसी से बातें करेंगे, किसी से कुछ शेयर करेंगे, तो कभी अगर बहुत पॉजिटिव कोई होगा, हो सकता है कभी उसने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की हो, बहुत पॉजिटिव हो, तो कभी कुछ बातें नेगेटिव भी होंगी। ये रिश्ते होते हैं, इनमें बस इतना होता है कि कोई चीज़ बहुत सीरियसली लेकर के नहीं होनी चाहिए। ये बात
6: अच्छा, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, लेकिन उस पॉइंट पे अभी भी आप नहीं आई कि अगर मेरे मन में नेगेटिव है तो वो क्यों है।
7: उसके तो कई सारे कारण हो सकते हैं।
6: क्या
7: पहला कारण होता है, कई बार चीजों को हम जैसे देखते हैं वो वैसी होती नहीं। दूसरा कारण हो सकता है कि कुछ बातें, देखिए कई बार हम
6: जो दिलों से जुड़े होते हैं वो ही सच्चे रिश्ते होते हैं। एग्जैक्टली गीता जी, तो और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो ना, वो वफादार नहीं बन सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कितना अच्छा कर लो, आपके पीठ पीछे वो किसी और के साथ आपकी बुराई करते ही करते हैं, और उन्हें ना फिर लगता है कि वो उनके संस्कार हैं एक धोखे में रहने का, और फिर ऊटपटांग बोलने के लिए, तो वो फिर ना वो उनके संस्कार हैं। बट मुझे लगता है कि जो अच्छा कर रहा है वो उनके संस्कार हैं, पर जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वही रिश्ते होते हैं। अंशिका कहने का मतलब ये था, और ये इतना ज्यादा ज्ञान दे गई कि कुछ कहने नहीं।
7: क्या करूं मैम, कभी कभी हो जाता है।
6: हाँ, तो इतने ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल छोटे से ज्ञान देने की जरूरत थी कि जो दिल से रिश्ते होते हैं, एक लाइन में कि जो दिल से रिश्ते होते हैं वही रिश्ते होते हैं।
7: मैं क्या करूं, मुझे एक लाइन में बातें करना आता ही नहीं।
6: तो ये जो ज्ञान जो आपने दिया ना, वो भी समझ में कुछ लोगों को कम नहीं आता है।
7: ठीक है,
6: तो आइए, तो जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम जो है, जो नाम है बीपीडी का, आपको अंशिका नहीं मतलब पता होगा,
7: नहीं पता,
6: फुल फॉर्म बताऊंगा।
7: हाँ, फुल फॉर्म
6: बीपीडी का मतलब होता है बीपी नहीं,
7: बीपी नहीं
6: मतलब हाई बीपी, लो बीपी नहीं।
7: ओके,
6: पर इसको हम यूं भी ले सकते हैं कि रिश्तों में अगर खटास होती है, रिश्तों में अनबन होती है, तो बीपी ऊपर नीचे होता ही होता है सब।
7: हाँ, वो तो होता है,
6: बीपी बढ़ता है घटता है सबके साथ,
7: सबके साथ होता है
6: ना। जब मैं अंशिका को जब अच्छे से डांटती हूँ, तो इसका भी बीपी जो है ना, वो उसका जो रेटिंग होती है ना, वो भी अप डाउन होती रहती है,
7: हाई हो जाती है। मेरी तो बीपी हाई हो जाती है।
6: नहीं, हाई नहीं होती है, क्योंकि हाई मेरी रहती है।
7: नहीं,
6: तुम्हारी हाई हो जाती है तो एक फिर मैं ये बोलूंगी कि वो शायद डर के मारे हाई हो जाती होगी, या फिर जो भी बातें हैं। बट मुझे लगता है कि हमसे अगर कोई बड़ा है और अगर वो मुझे डांट रहा है, मतलब मैं अपने लिए बता रही हूँ, तो मेरा बीपी लो हो जाता है सुन के। हाई का मतलब होता है कि तुम भी मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो।
7: नहीं, कई बार हाई का मतलब ये होता है कि सामने वाले को सुन करके, मतलब कुछ बातें जब हम सुनते हैं ना, जैसे कोई डांटता है जब गुस्से में आपको या ऐसे भी, तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा सुन के एक बार के लिए वो थोड़ा, जैसे मेरा नेचर दूसरा है तो मुझे बातें थोड़ी डीप लग जाती है, लेकिन फिर मैं उसको हील करना भी जानती हूँ। जी मैम, आप कुछ बता रही थी।
6: फिर तुमने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, जो जहाँ से हम लोग ट्रैक पे हैं वो तुम बिखर जाए। खाना वाना खा के नहीं आई हो क्या?
7: नहीं, मैं खा के आई हूँ।
6: पानी वानी पिया है प्रॉपर?
7: प्रॉपर।
6: तो थोड़ा सा
7: ज्ञान कम देती हूँ,
6: मुझे लग रहा है। हाँ। हीट स्ट्रोक हो के साधन
7: नहीं,
6: लग
7: नहीं।
6: रहे
7: हैं,
6: तो थोड़ा सा गर्मी में धूप में थोड़ा बच के चले।
7: जी जी,
6: क्योंकि जो आपकी दिमाग में जो पूरा ज्ञान भरा हुआ है ना, तो वो एक फैन का ज्ञान है। तो कहने का सेंस है, आइए मजाक से हट के, कि घर में ही हम घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि मान लीजिए कि हमारी किसी से अनबन हो गई घर में। ठीक है, मम्मी से हो गई मानो।
7: ओके,
6: अंशिका की मम्मी से हो गई। अब नहीं, माँ को नहीं लेते हैं, क्योंकि माँ से तो हम लोग की लड़ाई होती है, तो अगले ही पल हम लोग जुड़ भी जाते हैं ना।
7: हाँ, नहीं।
6: कोई ऐसा रिश्ता चाची से हो गई। हाँ, चाची से।
7: हाँ,
6: ले
7: चाची
6: लेते
7: चल सकती है।
6: चाची चल सकती है, चाची से ले लेते हैं। तो पता है, अनबन होने का मतलब है तू मैं हो गई। ठीक, अब तू मैं हो गई, तो उन्होंने भी कुछ चार शब्द बोले, हमने हाँ? भी चार शब्द बोले, पर उसके बाद से बातचीत बंद हो गई।
7: ओके,
6: ठीक है, बातचीत बंद हो गई। अब पता है, अब वो मन ही मन में कन्वर्सेशन चलती रहती है, जब वो हमारे सामने पड़ जाती है या मैं उनके सामने पड़ जाती हूँगी, तो वो मन में बातें होती हैं। देखो, खड़ी है लेकिन बोल नहीं रही है।
7: हाँ, मन में वो चीजें,
6: दिमाग और मन आपस में लड़ाई करता है। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारी किसी से नहीं बनती है या फिर हमारी अनबन हो जाती है, तो हमारी पूर्ण रूप से बोलचाल बंद नहीं हो जाती है, हम दिल से बात करना उनसे शुरू कर देते हैं, दिल तक बात पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और एक चीज और है, अगर आप जो पहुंचाएंगे आपको वही मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव पहुंचाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव पहुंचाएंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आज का जो हमारा ये ज्ञान देने वाला एक सेक्शन है वो जो एक डिसऑर्डर है बीपीडी। बीपीडी का मतलब होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि एक मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है जब आप किसी से अनबन में रहते हैं। समझ में आया आपको?
7: जी मैम।
6: ये वो स्थिति होती है जो भावनाओं को कंट्रोल करने की जो एक कैपेसिटी होती है उस पर ये प्रभाव डाल देती है सीधे सीधे। तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसमें रिश्तों में, आत्म छवि और व्यवहार में इतनी ज्यादा अस्थिरता पैदा कर देती है कि हमें लास्ट में हमको एक मेडिकल चेकअप की नीड पड़ ही जाती है, मतलब जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है इस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, तो उन रिश्तों से आप या तो लड़ाई ना करो, या तो आप अनबनी ना करो, और या तो आप जाकर के जस्ट सॉरी बोल करके खत्म कर दो, ताकि वो बातें आपके दिमाग में भी ना चले और अगले वाले के दिमाग में भी ना चले। पीड़ित व्यक्ति को हमेशा ये डर सताता है कि उसके करीब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे और वो आपस में बातें होती रहती हैं। इसका सबसे इस कारण से अत्यधिक लोग जो होते हैं ना, वो चिपकू हो जाते हैं, निरी हो जाते हैं। कि हम मतलब जैसे होता है ना कि अकेलापन फील करना, तो मतलब जिनको मतलब जैसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जिनको वो अपने किसी वो भी नहीं समझते हैं कि हम क्या बात करें इससे, तो वो उसी से ही उसके आधारित हो जाते हैं, उसके आधारित हो जाते हैं। फिर है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव, कभी वे अपने पार्टनर या दोस्त को बहुत प्यार करते हैं तो कभी अचानक उसे नापसंद करने लगते हैं। ये मानसिक स्थिति का कारण है।
7: बिल्कुल, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपने अभी दो पॉइंट्स जाने की, जैसा मैम ने आपको बताया कि छोड़ के जाने का डर होता है, यानी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें छोड़ करना चला जाए। दूसरा पॉइंट होता है रिश्तों में उतार चढ़ाव। कुछ पॉइंट्स इसमें और भी हैं, जो कि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ये होता है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ जाता है और हम ऐसे कुछ स्टेप्स ले लेते हैं जो कि हमारे रिश्ते को बहुत ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं दरारें आने लगती हैं। देखिए, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगी,
6: एक लाइन में सुनना चाहेंगे,
7: हाँ, कि एक लाइन में ये क्या होता है, तो एक लाइन में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसी एक सिचुएशन होती है जिसमें हमारी हर भावना, चाहे वो किसी के लिए अच्छी, मतलब कहने का सेंस है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, वो दोनों ही बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आपकी कोई भी एक मतलब भावना, कोई भी आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं रहेगा। यही है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
6: और इसका जो कारण होता है, अब मैं आपको कारण बताऊंगी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी है तो उसके होने का खतरा भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो कि आपके जो दिमाग में उन हिस्सों में असंतुलन और भावनाओं को नियंत्रित करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आता है कि बचपन में किसी प्रकार का कोई भी एब्सेंस हो जाना, और या फिर निगलेक्ट कोई लोग कर देते हैं, या उनके पेरेंट्स से बिछड़ना मुख्य कारण इसका हो सकता है। ये कारण हो सकते हैं इसका, मतलब बीपीडी का जो कारण है वो यही हो सकता है कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे छिन गई हो।
7: बिल्कुल, अब बीपीडी के ये कारण होते हैं जैसे मैम ने अभी आपको बताया, लेकिन इसके लिए कुछ हम आपको ऐसी चीज़ें भी बताना चाहेंगे कि जिनसे आप बीपीडी को कंट्रोल
6: कर सकते हैं।
7: ऐसी भी कुछ थेरेपीज होती हैं जिनके बाद, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि थेरेपीज पर तब जाएं जब आपकी बिहेवियर में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों में ज़रा सा होता है और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, थेरेपी लेते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें चेंज कर आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम बिहेवियरली बात करें तो बीपीडी को ठीक करने का सबसे एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका होता है, जो कि हमने ये आपको और भी पहले कई बार बताया, जब भी हम किसी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये एक थेरेपी मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत कारगर होती है, जो कि होती है कि बढ़िया सा आप एक पेन उठाइए, पेपर उठाइए, और आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हों आप उन्हें लिखिए और उसके बाद उन्हें फाड़ करके फेंक दीजिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बाद वो बातें हमारे दिमाग में फिर दोबारा कभी नहीं आती हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पेपर पे लिख देते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो उसे मान लेता है कि हाँ ये सेफ़ है। तो जिन बातों को हमारा माइंड सेफ मान लेता है वो धीरे धीरे हमारे प्रोसेस ऑफ माइंड में चली जाती हैं, और फिर दोबारा आपको वो, चाहे नेगेटिव से नेगेटिव बात होगी, वो आपको दोबारा कभी याद नहीं आएगी। क्योंकि कई बार होता है ना मैम कि हमारे दिमाग में ऐसी उतल पुतल बातों की बीच मची होती है कि बिल्कुल लगता है कि सर अब फटेगा कि तब फटेगा, क्योंकि ये होता है अगर आप स्ट्रेस कोई भी पॉइंट है आप उसको लेकर सोचेंगे तो ये होगा ही होगा। तो इसलिए ये टेक्निक आप जरूर यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक बेहतर टेक्निक है और ऐसा साइकोलॉजी भी मानती है कि ये टेक्निक जरूर काम आती है, स्पेशली उनके लिए जो कि इस तरह के डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कहते मैंने कहा ना कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी उनको आप इसी टेक्निक से संभाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इनके लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए। कई सारी थेरेपीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो CBT इसका बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है, जो कि होता है कनेक्टिविटी बिहेवियर थेरेपी, जिसके जरिए आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो पेंटिंग के थ्रू निकलती है। मतलब अगर आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जाएंगे तो आपको एक पेपर देंगे और कुछ कलर्स देंगे और बोलेंगे कि इस पे कोई एक पेंटिंग ड्रॉ करिए। जब आप वो पेंटिंग ड्रॉ करेंगे तो आपके उस ड्रॉ करने के तरीके से पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का ही होता है, और फिर वो उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे करके आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
6: बिल्कुल, तो आइए चलते हैं सीधे अभी हम लोग चैट बॉक्स में। यस मैम, इस वक्त यही सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें। गीता जी हेलो, नव्या जी एंड नव्या जी एंड धर्मेंद्र मोहन आवास, तो हेलो कैसे हैं आप सभी। दीपांशी जी कैसी हैं आप, एंड कायनाथ एंड जिज्ञासा श्रीवास्तव जी, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जो कि विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है सुन सहेली में। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से एक नई चीज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ 89.6 FM पे जो कि शो चल रहा है सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है।

0: और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
0: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जो कि है सुन सहेली। और सुन सहेली में हाजिर हैं आपकी सहेलियां यानी कि आरजे समता और आरजे अंशिका। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे और बहुत कुछ आपको आज एक नए टॉपिक पे बताएंगे जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो गंभीर है। और हम कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में हम आपको इसको बता सकें, मतलब वही पॉइंट्स बताएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो सेकेंड बताने वाले हैं रिश्तों में, वो ये है कि किस तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं वो आपके रिश्ते पे किस तरीके से सीधा असर डालती हैं, और उसके साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं मेंटल कंडीशन पे भी,
5: साथ ही साथ फिजिकल भी होती है। मतलब बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। ये माना जाता है ना, मैंने एक बार कभी रील में देखा था कि एक मतलब कि कपड़ों से इंसान की पहचान, मतलब ये मैंने कहीं देखा था रील में। तो अभी जल्दी एक रील आई थी, मैंने देखा कि एक लड़की थी और उसने जो डैमेज जीन्स होती है घुटनों के पास से फटी फटी, वो पहन करके आई एक कार वाले शोरूम में और आइसक्रीम खाती हुई आई। और उसने वहाँ के मालिक ने और एक लड़का था और एक लड़की थी उसके साथ में, उसने बोला, वो सबसे पूछ रही थी कि ये गाड़ी कितने की है, ये गाड़ी कितने की है। उसने हंस से हल्का सा कोई टॉप पहना हुआ था बस ऊपर से, तो उसने पूछा कि ये गाड़ी कितने की है, ये गाड़ी कितने की है। तो वो उसने वो उसको वहाँ की जो मतलब थी जो
4: वहाँ होती है
5: सेल्स गर्ल्स थी, वो उसको बताती जा रही थी कि ये गाड़ी 1 करोड़ की है, ये गाड़ी 50 लाख की है, ये गाड़ी 25 लाख की है, मतलब ऐसे पूरे सबका रेट बताती जा रही थी। तो लेकिन उसके बाद उसने पूछा कि तुम क्यों पूछ रही हो, तो वो बोली मुझे लेनी है। तो वो दोनों आपस में हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हें लेनी है, तुमने अपने आप को देखा है कि तुम ये गाड़ी ले पाओगी? तो उसने कहा कि एक रेड कलर की गाड़ी थी। तो उसने पूछा कि ये वाली कितने की है, उसने बोला कि 75 लाख की। तो उसने कहा मुझे उसने बोला ये पैक कर दो। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने आप को देख रही हो और ये गाड़ी बोल रही हो पैक कर दो। तो उसने कहा कि कितने की है फिर से बताओ ज़रा, उसने बोला 75 लाख। तो उसने कहा, उसने पॉकेट से अपना पैसे निकालने शुरू किए और उसके हाथ में वो रखती चली गई और कहा कि पैक करो इसको, मतलब ऐसे एटीट्यूड से बोला कि पैक करो। तो उसके उसमें से मतलब लास्ट में एक मॉरल निकल करके ये आया कि कपड़ों से इंसान को जज करने के लिए भी लोग जज करते हैं कि जो अच्छे कपड़े पहन करके घूमते हैं, मतलब वही पैसे वाले इंसान है, उनके पास पैसा बहुत है। जो लोग थोड़े नॉर्मल पहन के घूमते हैं तो वो मतलब उनके पास पैसे की तंगी है, वो पैसे नहीं है उनके पास। तो कभी ना कभी व्यक्तित्व पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस का असर पड़ जाता है, दिखने लगता है।
4: बिल्कुल, आज ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को हम आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन जैसे कि हम ये भी बताएंगे कि रिश्तों पे क्या असर है। तो रिश्तों पर अगर बात करें असर की, तो सबसे सीधा असर जो पड़ता है वो होता है कि लगातार किसी भी इंसान के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो उसमें तनाव और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। चिड़चिड़ेपन का मतलब है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, और हम किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता और छोटी छोटी चीजों पे हम गुस्सा करने लगते हैं, कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाते हैं। एक कहा जाता है ना कि अरे उनको नहीं, उनको तो एंगर इश्यूज हैं। तो एंगर इश्यूज तभी होते हैं जब आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपने कभी किसी को देखा होगा कि वो बिल्कुल शांत इंसान, को 100 तकलीफें हैं लेकिन फिर भी वो इंसान बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम है। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपनी माइंड को कूल रख पाते हैं, क्योंकि कई बार हम हमारे माइंड को कूल नहीं रख पाते। देखिए, जब नेगेटिविटी कभी बहुत हावी होती है, मुझे लगता है ये हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली रिश्तों में, कि कई बार होता है कि किसी की तरफ से नेगेटिविटी आती है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे माइंड पे बहुत हावी हो जाती हैं। बहुत हावी होने का मतलब है एक्सट्रीम लेवल पे, आपको लगता है कि अब नहीं, अब ये एक लेवल अप हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो एक पॉइंट जब आता है तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। चेंजेस का मतलब आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, ना आपका किसी से बोलने का मन करेगा, ना हंसने का मन करेगा, और ना ही चीजों को आप कभी पॉजिटिव तरीके से देख पाएंगे।
5: हमेशा से माइंड में एक उलझन सी चलती रहती है।
4: हाँ,
5: एक हमेशा से उलझन चलती रहती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अब तो ये भी कहा जाता है कि ईश्वर के बाद अगर किसी का दूसरा नाम है तो वो है
4: पैसा। एक वो याद आ गई, पता नहीं किस मूवी में थी या क्या था, वो तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक डायलॉग था कि बाप ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। कौन सी मूवी का था याद नहीं आ रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं हाँ, आजकल की जैसी आप देख रहे हैं कि जैसी मतलब जैसा माहौल है उसमें बहुत जरूरी होता है,
5: क्योंकि महंगाई को देखते हुए भी वाकई में सब लोगों को यही हाँ, तो लगता है ना कि भाई थोड़ा बहुत तो इंसान को होना चाहिए
4: क्योंकि सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। उसलिए हम काम करते हैं, आप देखते हैं कि लोग जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं उसी लिए करते हैं, ताकि हमें इतनी अर्न हो जाए कि हम अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये आपके रिश्तों को मैं एक वर्ड कहती हूँ कि बहुत तीखे तरीके से ये आपके रिश्तों को तोड़ने का काम करता है। क्योंकि देखिए, जब क्राइसिस होती है तो हाँ, हम ये कहते हैं ना कि अरे नहीं, सिचुएशन को समझो, लेकिन एक इंसान सिचुएशन को कब तक समझ सकता है? मतलब मुझे तो लगता है कि चीज़ों को समझने की भी कहीं ना कहीं एक बॉर्डर लाइन होती है, उससे आगे हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है अब नहीं हो पाएगा। तो वो आपके रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये तब होता है जब हम उस चीज़ को नेगेटिविटी के तरीके से लेते हैं। आपने किसी को देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज आती है कि चाट वाले के लड़के ने आईएस स्टॉप किया,
5: या पान वाली अभी गोंडा का ही एक न्यूज थी लास्ट ईयर कि उनके फादर को पान की ढाबली थी, यहाँ पान की छोटी सी शॉप थी और उसकी बेटी आईएस
4: बन गई। तो और कभी इस तरह के कई सारी न्यूज़ आते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कि अभी न्यूज़ आई थी मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले, मुझे डेट नहीं याद है, कि बलरामपुर की दो लड़कियां थी, उन्होंने पर्वत शिखर की एक चोटी को उन्होंने अभी जल्दी में फतेह किया था उन दो लड़कियों ने, और वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक इस्टेब्लिश परिवार से नहीं थी, बहुत छोटे परिवार से ही थी, बट उनमें करने का एक जज्बा था कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी कंडीशन ऐसी है तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमारी मिसाल देंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बहुत बड़ा ही करें, लेकिन हमेशा कहते हैं ना, जैसे एक लाइन होती है कि आपदा में कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेते हैं,
5: नहीं तो, समस्या में हमेशा कोई ना कोई अवसर ढूंढ लिया जाता है।
4: ओके, तो कहने का सेंस यही था कि हमेशा जो आपके साथ नेगेटिव है, देखिए जो हमारे साथ नेगेटिव है क्या हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं? अगर किसी को भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, लेकिन कभी किसी का शरीर का कोई एक अंग अगर खराब हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो उस अंग को वापस नहीं ला सकता है, वो तो भगवान की ईश्वरी कृपा थी कि हो गया वो आपके साथ। लेकिन आपने देखा होगा लोग पैर से पेंटिंग बनाकर पैसे कमाते हैं।
5: बिल्कुल,
4: हाथ नहीं है, ईश्वर की दया है अगर, तो वो पैर से पेंटिंग बना करके उसको अपने आप को सर्वाइव करते हैं। आपने देखा होगा पेंटिंग ब्रश, बहुत लोगों को मैंने देखा है, एक बार न्यूज में ही देखा था कि वो मुंह से जो है पेंटिंग बना रहे थे ब्रश पकड़ के। तो इस तरीके के कई सारे लोग होते हैं कि जिनको लगता है नेगेटिविटी होगी, हम पॉजिटिविटी में चेंज करेंगे। तो इसलिए जब अगर ऐसी कोई क्राइसिस भगवान न करे किसी की भी फैमिली में हो, बट अगर है तो कोशिश करिए कि सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर उसका सामना कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसका कोई मोटिव ही नहीं है कहने का। प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो सोचिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पूरा प्रॉब्लम को ही सोचते हैं कि अरे यार तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्या करेंगे, ये नहीं सोचते हैं कि उसे सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉब्लम की जगह उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज्ञान दे देती हूँ ना मैं, कभी कभी ज़्यादा ही ज्ञान दे देती हूँ।
5: नहीं, ज्ञान सही था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ उसी के रिकॉर्ड में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम चीज़ें सोचते हैं वो नहीं होती हैं, जो हम चाह लेते हैं, मतलब जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये हमें मिलना चाहिए और वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उसके लिए अग्रेशन हो जाता है। और आज की जो जनरेशन है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिल्कुल पीछे है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर सकती है। अगर उसको एक छोटी सी एक अगर वॉच भी चाहिए ना, तो वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब मुझे चाहिए वॉच, अगर चाहे वो जितनी भी महंगी हो, और साथ ही साथ में ये इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं जिसके कारण से आपके डिसीजन लेने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब आप पैसों की तंगी से गुजर रहे होते हैं। और अगर ये इसका असर आपके रिश्ते पे पड़ रहा है तो लास्ट में यही हो जाता है कि डिसीजन लेने में भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो भाई अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ आप अपने रिश्ते को संभालें, और बाकी क्राइसिस तो आती जाती रहती हैं। आई एम राइट, है ना?
4: यस मैम।
5: चलिए तो अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से एक नए चीज़ को लेकर के। तब तक के लिए आई थिंक ब्रेक ले लेना चाहिए।
4: यस मैम। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, और बस यूं गए और यूं आए और इस उस पार आपके लिए क्या है ये हम आकर बताएंगे
5: और सीधे आएंगे चैट बॉक्स में। तब तक आप लोग मैसेज करिए क्योंकि हम बाय नेम आप सभी के मैसेज को भी रीड करने वाले हैं।
4: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही पसंदीदा शो सुन सहेली। तो वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां और सीधे चलिए चलते हैं चैट बॉक्स में और जानते हैं कि हमारे लिसनर्स ने हमारे लिए क्या भेजा है।
4: बिल्कुल, तो प्रबल जी, गीता जी, ज़्यादा नहीं खाओ, वो आइसक्रीम की बात कर रहे हैं और आइसक्रीम इस समय सोचो कि हम लोग स्टूडियो में हैं और हम लोगों के लिए कोई आइसक्रीम की बात कर रहा है तो सोचो क्या मन में फील होता होगा।
3: मन में फील हो रहा है कि आइसक्रीम अगर होती तो
4: मज़ा आ जाता ना। तो गर्मी बहुत है इसीलिए आइसक्रीम खा रहे हैं सभी लोग, ऐसा प्रबल जी आपस में बात कर रहे हैं। गीता जी, आशु जी, कमल नयन जी, हरिश्चंद, सविता जी, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो ऐसे ही आप लोग जब बने रहते हैं ना, आज मैं रेडियो से सुन रहा हूँ। ओके हरिश्चंद जी, कैसे हैं आप सभी? तो जब सभी लोग ऐसे आ जाते हैं ना टाइम से तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्यों अंशिका?
3: जी मैम, क्या क्या है ना लिसनर्स की, जब हमारा चैट बॉक्स जो है, जैसे कहते हैं ना कि घर भरा पूरा है, तो वैसे हमारा चैट बॉक्स जब थोड़ा सा भरा भरा होता है आपके मैसेजेस से तो हमें भी एनर्जी मिलती है कि चलो कुछ और अच्छे से
4: लगता है कि आज मेहमान आ गए हैं, टाइम से मेहमान आ गए हैं से लगता है।
3: हाँ मैम,
4: चलें शुरू करें
3: जी।
4: ज्ञान की बातें तुम्हारी तरफ से?
3: ज्ञान की बातें नहीं, ज्ञान की बातें नहीं बताएंगे क्योंकि ज्ञान का जितना डोज हम लेकर के आए थे वो तो पूरा हो गया। अब हम आपको बताएंगे कुछ ब्यूटीफुल बनने के टिप्स, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम हमारे पर्सनैलिटी को अच्छा रखते हैं। अब बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को, यू नो, कहते नहीं है कि एक जो फेशियल वाली एक ब्यूटी होती है वो कैसे रख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ब्यूटी की भी बात नहीं है, हमारे फेस को इस समय केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है।
4: गर्मी बहुत ज्यादा है,
3: गर्मी बहुत ज्यादा।
4: तो मैं आपको बताऊँ एक बात और अपनी पर्सनली कि इस समय गर्मियां हैं तो गर्मियों में जितना हो सके ना आप लोग केमिकल्स से युक्त चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितना हम लोग ना केमिकल से युक्त, भले वो कितनी भी महंगी क्रीम क्यों ना हो, पर अगर आप धूप में लगा के निकल रहे हैं ना तो वो रेड वाले रैशेस और छोटे जो दाने होते हैं, और जिन्होंने अगर एक्निक होता है तो ये तो उनके लिए समझ लो कि बहुत खतरे का साइन हो रहा है कि आप लोगों ने उसको यूज़ किया है और उसके बाद में ये उल्टा नुकसान ही करेगा।
3: बिल्कुल, तो सबसे पहले कुछ टिप्स बताना चाहेंगे और सबसे पहली एक टिप्स जो बताना चाहेंगे वो ये है कि गर्मियों में अपने फेस को आप क्लीन करते रहें। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और जैसे किसी किसी की आदत होती है कि वो फेस को ज़्यादा वॉश नहीं करते, मतलब सुबह वॉश कर लिया तो दिन भर वैसे ही है और फिर बाद में शाम को वॉश किया, ये कई बार
4: या कभी ऐसा होता है कि करते ही
3: नहीं है। करते ही नहीं है, तो क्या होता है ना कि हमारी जो स्वेटिंग होती है वो पसीने में एक ऐसी चीज़ होती है कि वो जम जाती है, आपने कभी देखा होगा। तो इसलिए जब वो जमता है हमारे फेस पे पसीना तो वो हमारी जो स्किन की जो सेल्स होती हैं, धीरे धीरे पोर्स होते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देता है। इसलिए ये जरूरी है कि
4: गर्मी और फिर उसके बाद से आपकी स्किन ब्लैक लगने लगती है।
3: गर्मियों में क्लीनिंग जरूर करिए, मतलब 2 से 3 बार, या जैसे हम मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस से घर जा रहे हैं तो आप एक बार फेस वॉश कर लीजिए, सुबह वॉश कर लीजिए, या कभी कभी हमें फील होता है ना कि बहुत जलन हो रही है, स्पेशली फेस पे ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कभी ऐसे फील होता है तो आप वैसे भी अपने फेस को धो सकते हैं। आप एक अच्छा सा कोई सॉफ्ट सा हैंकी अपने बैग में रखिए। और
4: मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगी कि जब आप जाते हैं, जो कि मेरा रूटीन है और मैं इसीलिए आपको भी बताती हूँ कि फ्रिज में आपने रोज वाटर की बोतल को लगा के रख देना, वहीं रखनी है, बाहर नहीं रखनी है। और बस जब आप यहाँ से जाते हैं 1-2 मिनट रुक करके पंखे की हवा खा करके फिर आपने बोतल निकालनी है ठंडी ठंडी रोज वाटर की और अपने पूरे फेस पे उसको स्प्रे कर लेना है। और स्वाइप पेपर से आपके पास फ्रिज में वो भी रख सकते हैं स्वाइप पेपर, उससे आप अपने पूरे फेस को क्लीन कर सकते हैं। कुछ लोगों को आलस होता है कि कौन जाए वॉशरूम में बेसिन पे, तो अब जब आपके रूम में ही सारी चीजें हैं तब तो कोई आलस की कोई
3: कहीं जाना ही नहीं है,
4: बस उससे क्या कहते हैं वाइप से क्या करना है आपने पूरे फेस को क्लीन करना है। तो रोज वाटर एक ऐसा वाटर है जो सारी प्रॉब्लम्स की एकमात्र जड़ से खत्म करने वाला एक साधन है, ये जान लीजिए। अगर रोज वाटर आपने अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर लिया ना तो आपको फेस पे कम स्वेटिंग होने लगेगी, एक्निक नहीं होंगे, प्लस आपकी जो स्किन है वो हमेशा से ग्लो करती दिखाई देगी।
3: तो लिसनर्स, चलिए अब आपको एक फेस के लिए मैं एक रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि फेस के लिए क्या होता है ना कि फ्रूट्स, जैसे हम कहते हैं ना कि फ्रूट्स खाओ तो पेट के लिए फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं और गर्मियों में फ्रूट्स खाने चाहिए, वैसे फ्रूट्स लगाने भी चाहिए। लगाने के लिए भी फेस पे बहुत अच्छे होते हैं। तो आज जो फ्रूट हम आपको बताने वाले हैं वो है पपीता। पपीता इसलिए क्योंकि पपीता जो होता है ना वो हमारी जो फेस की डेड स्किन सेल्स होती हैं उन्हें हटा देता है और आपके फेस को ग्लोइंग बनाता है। ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वो शिकायत करती हैं ना कि अरे गर्मियों में तो त्वचा काली हो जाती है, मतलब गर्मियों में काली हो जाती है, तो उसके लिए बताना चाहूँगी।
4: और पता है पपीते में पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपकी डेड स्किन को ख़त्म करता है।
3: ओके।
4: और जिसको झुर्रिया होती है ना 40 प्लस के बाद में, वो भी झुर्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है।
3: ओके।
4: तो इसका पैक क्या है?
3: तो चलिए लिसनर्स बताते हैं कि इसका पैक क्या है और वो कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले पके हुए पपीते ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जिसे कुछ कुछ होते हैं ना कि थोड़े से कच्चे होते हैं, थोड़े से पके होते हैं, तो वो वाले ना हो। प्रॉपर
4: पका पपीता,
3: पका पपीता,
4: पके पेड़ पर
3: पके पेड़ पर पका ऐसे कुछ था ना, क्या था, याद नहीं आ रहा। वो होता था कि बार बार बोलो, मतलब एक टंग ट्विस्टर की तरह होता था।
4: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता पके पेड़ पर, और पिंकू बोले पका पपीता।
3: ओह वाह, मैम को याद है। तो चलिए बताते हैं आपको। तो दो से तीन आपको पके हुए पपीते का टुकड़ा ले लेना है, दो से तीन टुकड़े ले लेने। लेकिन हाँ, एक प्रिकॉशन करिएगा कि आप धूप में से जब पपीते को लेकर के आएँ तो उसे अच्छी तरीके से धुल करके और फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने के बाद निकाल करके तब आप इसके लिए जो भी आपको इससे रेमेडी बनानी है वो आप बनाइएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि गर्म फ्रूट मतलब तुरंत आप लाए हो बाहर से तो खाएं नहीं, वैसे ही तुरंत ला करके लगाना भी नहीं चाहिए फेस पर। अब आपको क्या करना है कि दो से तीन टुकड़े आपको पपीते के ले लेने हैं और उसे अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद उसमें आपको मिला देनी है एक चम्मच शहद। शहद सभी के घरों में होता है, एक चम्मच शहद मिला दीजिए। और उसके बाद इसे चेहरे पे आप सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाइए और बाद में आराम से आप पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए कि आपका चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग ग्लोइंग हो जाएगा, मतलब ये लगेगा नहीं कि गर्मियों में हम जैसे गर्मियों की वजह से जो काली पड़ जाती है स्किन, वैसी फीलिंग नहीं होगी आपको और आपके फेस को काफ़ी रिलैक्स भी होगा क्योंकि ये फेस को ठंडा भी करता है।
4: जी हाँ, तो जैसा कि अभी पपाया को लेकर के बताएंगे, एंड मेरा फेवरेट फूड जो है फ्रूट है वो है एप्पल। तो मैं आज आपको बताऊंगी एप्पल से कुछ एंटी एजिंग के लिए, यानी कि जो 40 प्लस होती हैं, 35 प्लस होती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है भाई कि अपने आप को सुंदर और बहुत ही प्यारी सी देखभाल बनाए रखें। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेब लेना है। और एक बात, सेब जो होता है वो त्वचा की टोन को हल्का करता है। जिनकी डार्क स्किन होती है बहुत ज़्यादा, थोड़े से सांवले होते हैं, या किसी किसी की स्किन बहुत ब्लैक होती है, तो उसकी और सूरज की यूवी किरणों से नुकसान बहुत ज़्यादा जिनको हो रखा होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए एक पैक में आज आपको बताऊंगी सेब से। तो क्योंकि सेब तो सबका फेवरेट होता है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, तो सेब और शहद का पैक। तो क्या करना है आपको, ले लेना है आप अपने फेस के हिसाब से, किसी का छोटू सा होता है, किसी का बड़ा सा होता है, तो आपने दो से तीन फाके जो होती हैं सेब की उसको कद्दूकस कर लेना है और उसका पल्प यानी गूदा उसका अलग कर लेना है। अब आपने उसमें क्या करना है कि एक चम्मच शहद मिला लेना है और चुटकी भर आपको मिला देना है हल्दी, सिंदूर नहीं, हल्दी, ठीक है। इसका पैक बना लेना है और चेहरे और गर्दन पर आपको लगा देना है मात्र 15 से 20 मिनट के लिए, और हल्का सा जब सूखने लगे ना तो आप हल्के हाथ से उसे अपने फेस पर मसाज करिए और वो पूरा फेस को वॉश कर दीजिए। जब आप अपना ये वाला इस्तेमाल करके देखिए, सेब शहद और सेब को, शहद को और हल्दी को, तो आपको लगेगा कि वाओ, मतलब मैम ने क्या ही बता दिया आज, क्या ही बता दिया, कौन सा पैक बता दिया।
3: बिल्कुल, तो आप ज़रूर अपने फेस पे इन पैक्स को यूज़ करिए और इन गर्मियों में अपनी स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे कि हम सभी को पता है कि पानी, जैसे हम कहते हैं ना, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो जितना इस मुझे लगता है इतनी ज़्यादा गर्मी में एक तरीके से चलने के लिए, कहीं ना कहीं हम ये कहें कि फ़िट रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही पानी आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है।
4: बिल्कुल, तो अभी हम लेते हैं आपसे, अभी एक गाना सुनाते हुए जाएंगे, लेकिन मैं आऊँगी आपसे टिप ऑफ द डे बताने के लिए। तो एक गाना हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे, अरे ऐसे नहीं जाने वाले हैं, तो एक गाना हम आपको सुनाएंगे। तो हाँ, तो भले ही मिड में बंद करना पड़े लेकिन टिप ऑफ द डे बता के ज़रूर जाएंगे। तो आज का टिप ऑफ द डे भी हमारी समर स्पेशल है, गर्मियों के लिए है, ज़रूर से सुनिएगा और उसके बाद ही आप यहाँ से जाइएगा। चलिए हम मिलते हैं इस गाने के मिड में।

0: जी बिल्कुल, और जाने का समय हो गया है। और लेकिन बता दूं आज का टिप ऑफ द डे, जैसा कि गीता जी ने पूछा है, तो गीता जी आपने जो पूछा है ना, यही आज का हमारा टिप ऑफ द डे था कि मैम धूप पे जाने पर स्किन पर ऐसा क्या लगाएं जो कि यूवी रेसेस कम असर करें। तो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही आपको प्रेफर करूँगी बताने के लिए। घर की चीज़ है, बहुत ही आसान सी है। आपने कोई भी क्रीम लगाई है उससे कोई मैटर नहीं कर रहा, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने ले लेना है एलोवेरा जेल। मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल हाथ पे ले लीजिएगा और आप अपनी पूरी स्किन पे उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एलोवेरा जेल आप जब अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो एक परत सी बना देता है, जिसके कारण से अल्ट्रा यूवी जो रेजेज है वो हमारी स्किन पर जो बुरा असर है वो नहीं डालती है। तो आज का टिप ऑफ द डे हमारा यही था कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने हो सके तो अपने फेस को कवर करें। अगर जो महिलाएं कवर नहीं कर पाती हैं तो आपने क्या करना है, घर से निकलने के पहले एलोवेरा जेल को अच्छी मात्रा में लेकर के अपने फेस पे, अपनी बाजुओं पे, जहां आपके अगर हाथ खुले हैं तो आपने उसको लगाइए और फिर घर से निकलिए। तो चलिए हम मिलेंगे कल फिर से सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
12: अरे सुना?
13: क्या?
12: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
12: गीता इंटरनेशनल स्कूल,

for a better tomorrow. Admissions open from Playgroup 2 Class 12. Gita International School, जहां आपको मिलता है Science and Commerce Stream, Activity Based Learning, Taekwondo Classes और वाहन की सुविधा उपलब्ध है. पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346.

स्वागतम तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम जो कि है आपका कॉलिंग प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। और आज आपके फ्राइडे स्पेशल कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आज हम फटाफट से बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे लिसनर्स की जो भी डिमांड है वो हम सुनाएंगे और बहुत सारी मस्ती बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। तो चलिए लिसनर्स देखते हैं कि आज हमारी पहली जो फरमाइश है वो किसकी आई हुई है और क्या है और हम क्या सबसे पहले आपको सुनाने वाले हैं। तो आज जो कि हमारी सबसे पहली फरमाइश है वो है अब्दुल मुजीम जी की, जिन्होंने लिखा है बशी है शान वाली मदीने की वाली। तो आइए ये सुनते हैं और इस सॉन्ग के उस बाद हम सुनेंगे समरीन जी के सॉन्ग को तू ही है अमर तू ही है सच। तो दोनों ही सॉन्ग्स बड़े ही प्यारे हैं, तो आइए इंजॉय करते हैं हमारे लिसनर्स की बहुत ही प्यारी प्यारी इन फरमाइशों को। और आपको बने रहना है आपके अपने वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। तो आइए सुनते हैं कि प्यारी प्यारी फरमाइशें।

मेरी अरमा तू ही सच है कह रही दीवानियत है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि हमने अभी अभी सुना, और ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग डिमांड जो थी वो थी समरीन जी की। तो समरीन जी के सॉन्ग के बाद अब बारी है मोहम्मद वारिस जी के सॉन्ग की, और मोहम्मद वारिस जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे रमेश कुमार जी के सॉन्ग। तो चलिए एंजॉय करते हैं इन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को हमारे ब्यूटीफुल से प्रोग्राम यानी कि कॉल अ ट्यून गोंडा में। तो बने रहिए मेरे साथ अपने फेवरेट वाले कॉलिंग प्रोग्राम में, और बैक टू बैक हम आपको प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को सुनाते रहेंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग नेक्स्ट डिमांड जो कि है मोहम्मद वारिस जी की।

फरमाइश थी रमेश कुमार जी की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम सुनेंगे निब्बर जी के सॉन्ग को जो कि है बरखा रानी जरा जमकर बरसो। बिल्कुल वही बरखा के बरसने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और इसके बाद हम सुनेंगे सुरेन जी के सॉन्ग। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और आप सभी इंजॉय करते रहिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। तो लिसनर्स फटाफट से आपकी फरमाइशें आएंगी और हम उन्हें आपको सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को स्टेडियम।

की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि हम है राही मूवी से, हम है राही प्यार से, इस मूवी से, और बहुत ही ये प्यारा सा सॉन्ग जो कि था सुरेंद्र यादव जी का। तो चलिए अब सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग के बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो हमारी जो फरमाइश दूसरी है वो है प्रबल मिश्रा जी। तो आइए सुरेंद्र जी के सॉन्ग के बाद अब आपको सुनाते हैं प्रबल जी का सॉन्ग, और प्रबल जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे अमित कुमार जी के सॉन्ग। तो सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट कॉलिंग प्रोग्राम कॉल।

0: in love, I'm in love, I'm in love.
1: जो भी देख यही पूछ है किसकी जगाती है कयामत कोई।

0: ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि सैयारा तू तो बदला नहीं है, पर मौसम रुठा हुआ है तो क्या रुठा हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा सा और थोड़ा सा इमोशनल सॉन्ग है ये। तो चलिए, ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इस सॉन्ग के उस पार आप हम चलते हैं दूसरे सॉन्ग की तरफ जो कि सॉन्ग है धर्मेंद्र जी का, और धर्मेंद्र जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे अरमान जी के सॉन्ग। तो आइए चलिए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए बस।
1: दिल की

हमारी हो, बिल्कुल ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी अरमान जी। और अरमान जी के सॉन्ग के बाद में अब बारी आती है अब्दुल जी के सॉन्ग की, और अब्दुल जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे अजीज जी के सॉन्ग को जो कि हमें मुंबई से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये सॉन्ग्स और इन्जॉय करते हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा। तो आइए इन सॉन्ग्स को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून।

लिसनर्स, अभी हमने सुना मोहम्मद, अभी हमने सुना अजीज जी के सॉन्ग को। अजीज जी का सॉन्ग था इस शानी करम का क्या कहना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं राम नरेश जी के सॉन्ग के साथ। और राम नरेश जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे साक्षी जी के सॉन्ग को, और साक्षी जी के सॉन्ग के बाद मोनू जी के सॉन्ग को। तो आइए इन्जॉय करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे इन ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग्स को। और अब आप सुनने जा रहे हैं जो वो है हमारे राम नरेश जी की फरमाइश।

अब बारी आती है एक बहुत ही प्यारी सी डिमांड की, जो कि है अनु की। अनु जो कि हमारी लिसनर हैं और उन्होंने डिमांड किया है गाना ख्वाबों ख्यालों में। तो आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग और एंजॉय करते हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी अनु की। और अब अनु जी के सॉन्ग के बाद में बारी आती है जो कि है मोनू जी के सॉन्ग की, और मोनू जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे आंचल जी के सॉन्ग को। तो आइए सुनते हैं मोनू जी का सॉन्ग।

ये बहुत ही प्यारा सा एक एवरग्रीन वाला सॉन्ग है जो कि फरमाइश की है ईशान जी ने। और ईशान जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे विनय मिश्रा जी के सॉन्ग को, और विनय मिश्रा जी के सॉन्ग के बाद अयूब जी के सॉन्ग को। तो सुनिए, इंजॉय कीजिए और बने रहिए अपने प्रोग्राम कॉल ट्यून पूना।

अयूब जी के सॉन्ग के बाद अब हम इंजॉय कर रहे हैं रीत लाल जी के सॉन्ग को, जो कि है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। और इसके बाद हम सुनेंगे हरिश्चंद सविता जी के सॉन्ग को, जो कि है तेरी मेहरबानियां। और उसके बाद में हम इंजॉय करेंगे अन्या के सॉन्ग को। तो बने रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी ऑन कॉलर।

सॉन्ग आज फिर जीने की तमन्ना है, जो कि फरमाइश है रीना जी की। और इस सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे आन्या जी की फरमाइश को। तो बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग मुझे ले चल मंदिर, और इसी के साथ हमारा टाइम भी हो गया है आपसे बाय करने का। तो लिसनर्स जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का कॉलर ट्यून गोंडा फ्राइडे स्पेशल मेरे यानी कि अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ कैसा लगा, और भाई हमारे आज के सॉन्ग्स जो थे वो तो बहुत ही सुपर्ब थे। तो आइए चलिए सुनते हैं सॉन्ग को, और मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगी आपसे आपके अपने वाले प्रोग्राम सुन सहेली में। बाय।

0: Delicious.
1: Hannah, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट.
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव।
2: मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में 2026 खरीफ में रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। अयोध्या में मंडल स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी आयोजित। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, यह सूचना कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने दी। बता दें कि जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को मंडल स्तरीय अयोध्या में देवीपाटन मंडल खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा समय से बीज एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सिंचाई प्रबंधन तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं विस्तार से चर्चा की गई है। गोष्ठी में किसानों की आय बढ़ाने तथा खरीफ 2026 में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सचिव कृषि ने अपने संबोधन में कहा कि भूमि की उर्वरता एवं पर्वत एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम कर रही है। खाद एवं जैविक खाद को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैविक एवं प्राकृतिक संसाधनों आधारित खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। उन्होंने किसानों को गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य जैविक विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
2: गोंडा के नवाबगंज थाना इलाके में जीतपुर माजा गांव में एक महिला ने अपने पति की बेवफाई से दुखी होकर हाईटेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस और पुलिस महिला कर्मचारियों ने करीब एक घंटे तक समझाकर उसे नीचे उतारा। महिला का नाम अंजलि है और उसने बताया कि उसका पति पूजन पिछले एक महीने से अपनी प्रेमिका के साथ दिल्ली में रह रहा है। अंजलि ने कई बार फोन करके उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं आया। इसी वजह से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया।
1: चिलचिलाती गर्मियों के बीच मरीज व तीमारदार परेशान। कछुए की चाल से चल रहे पंखे। जिला मेडिकल कॉलेज में मरीज परेशान। हाथ वाले पंखे बने मरीजों के सहारे। बता दें, जिला डिग्री के रिकॉर्ड तापमान के बीच मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आ रहे मरीज और तीमारदार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में दवा तो मिल रही है, लेकिन गर्मी से राहत देने के इंतजाम नाकामी साबित हो रहे हैं। कहीं पंखों की रफ्तार बेहद धीमी है तो कहीं वे पूरी तरह से बंद पड़े हैं। उमस और भारी भीड़ के कारण बेहाल मरीज हाथ वाले पंखे के सहारे हैं। इस संबंध में सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल के सभी पंखों को ठीक कराया गया है और कई मुख्य जगहों पर कूलर भी लगाए गए हैं। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए कहीं कहीं तकनीकी खराबी आ सकती है, फिर भी हमारी टीम मरीजों को हर संभव राहत देने का प्रयास कर रही है।
2: गोंडा में प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर देखने को मिला। बुधवार को जिला जज दुर्गा नारायण सिंह समेत सभी जज सरकारी गाड़ियों की जगह पैदल चलकर कोर्ट पहुंचे। जिला जज अपने ऑफिस से छाता लेकर निकले। उनके साथ उनके कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी थे। वे करीब 300 मीटर पैदल चलकर अपने कोर्ट रूम पहुंचे। रास्ते में लोग उन्हें हैरानी और उत्सुकता से देख रहे थे। बाकी जज भी अपने घरों से पैदल चलकर कोर्ट पहुंचे।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल, धरोहर का होगा रिकॉर्ड, डिजिटल होंगे सभी ग्रंथ। बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम पहल के तहत जनपद की प्राचीन पांडुलिपियों व ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इन्हें ज्ञान भारतम ऐप और पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जनपद के सभी संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई है, जिसमें निर्देश हुआ है कि विद्यालयों में सुरक्षित सभी प्राचीन पांडुलिपियों का ब्यूरो शासन के निर्देशानुसार तत्काल पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। इसमें जनपद के विभिन्न गुरुकुल, मंदिर, मठ, आश्रम और दरगाह में सुरक्षित 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने धार्मिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का भी सर्वे कराया जाएगा। DIOS डॉक्टर रामचंद्र ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जनपद की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन धरोहर से परिचित हो सके।
2: गोंडा के नवाबगंज इलाके में एक छोटे भाई ने टेबल फैन को लेकर हुए एक झगड़े में अपने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। बड़े भाई को गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी है। ये घटना लोलपुर गाँव में हुई। सुभाष कनौजिया नाम के एक व्यक्ति जो की मुंबई में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, वे घर आए हुए थे। वे घर के बाहर एक युवक का पंखा ठीक कर रहे थे और गर्मी से बचने के लिए अपना टेबल फैन भी चला रहे थे। तभी उनके छोटे भाई विनेश वहां पहुंचे और फैन चलाने पर विरोध करने लगे। गुस्से में विनेश ने टेबल फैन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। जब सुभाष ने इसका विरोध किया तो विनेश ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया। हमले में सुभाष के सीने और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोग ने बीच बचाव किया, लेकिन आरोपी मौके से भाग गया। बाद में परिवार वाले घायल सुभाष को इलाज के लिए अस्पताल ले गए।
1: जनपद में विरोध में बंद रही दवा की दुकानें। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में उतरे व्यापारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जनपद के दवा व्यापारी सड़क पर उतर पड़े। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट के आह्वान पर विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को संबोधित 4 सूत्री ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा को सौंपा गया है। नगर के कुछ बाजारों में मेडिकल स्टोर बंद रहे, जबकि कई स्थानों पर सामान्य रूप से दवा बिक्री होती रही। दवा विक्रेता कल्याण समिति के अध्यक्ष जय सिंह पांडे और महामंत्री संजय कुमार गोयल ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से अवैध तरीके से दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिससे जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
2: गोंडा में उमरी बेगमगंज इलाके में सरयू नदी में एक युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव आया था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। मरने वाला युवक का नाम दीपक था, जो कि ग्रेटर नोएडा में रहता था। वह अपनी सास के अंतिम संस्कार के लिए गांव आया हुआ था। मंगलवार को वह सरयू नदी में नहाने गया था। जैसे ही दीपक नदी में उतरा, अचानक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर लिया और गहरे पानी में खींच ले गया। वहाँ मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक यह हादसा हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों और अन्य टीमों की मदद से युवक के शव की तलाश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार राहत और खोज का अभियान में लगे हुए हैं।
1: जनपद गोंडा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। दोपहर 2 बजे से तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि लोगों को 43 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस हुई। इस भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम रही।
2: गोंडा जिले के प्रशासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए 12 विकास खंडों के वीडियो के कार्य क्षेत्र बदल दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने इसका आदेश जारी किया है। सभी अधिकारियों को तुरंत नई जगह पर जाके कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। ये फैसला जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। जिले में कुल 16 विकास खंड हैं, लेकिन अभी केवल 9 नियमित बीडीओ और 1 संयुक्त बीडीओ की तैनाती है। अधिकारियों की कमी के कारण कई ब्लॉक का अतिरिक्त काम दूसरे अधिकारियों को दिया गया था। अब नए बदलाव में कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। उदाहरण के लिए कटरा बाजार ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ADM विनीत कुमार को इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।
1: देवीपाटन मंडल के विकास का नया खाका तैयार। कृषि, पर्यटन और रोजगार पर फोकस। देवीपाटन मंडल में जनपदवार विकास योजना होगी तैयार। बता दें कि देवीपाटन मंडल के समग्र एवं योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नवागत आयुक्त देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों से उनके जनपदों की प्रमुख चुनौतियों एवं संभावनाओं तथा उनके प्रभावी निराकरण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट एवं सुझाव मांगे हैं। यह पहल मुख्यमंत्री जी के मनसा के अनुरूप जनपद आधारित विकास मॉडल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक जनपद की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ अलग हैं, इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं सकारात्मक परिवर्तन आम जनमानस को मिलेगी। बता दें कि जनपद गोंडा में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण एवं धार्मिक पर्यटन को भविष्य की प्रमुख संभावनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, कौशल विकास कार्यक्रम तथा सड़क एवं परिवहन, स्वास्थ्य, सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। घाघरा नदी एवं सरयू नदी से होने वाली बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि देवीपाटन मंडल के सभी जनपदों में स्थानीय संसाधनों एवं संभावनाओं के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से रोजगार, निवेश एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे मंडल को प्रदेश के अग्रणी विकास क्षेत्रों में स्थापित किया जा सके।
2: गोंडा जिले के तरबगंज ब्लॉक मुख्यालय में बुधवार को एक बड़ी प्रशासनिक हलचल देखने को मिली। नए खंड विकास अधिकारी मुन्नू लाल यादव ने औपचारिक रूप से अपना पद संभाल लिया है। अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए वह तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने ब्लॉक के सभी कर्मचारियों को एक साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक में ब्लॉक के कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें सहायक विकास अधिकारी अमरीश प्रताप सिंह, एडीओ पंचायत दुर्गा प्रसाद मिश्रा और जेई शामिल थे। इसके अलावा ब्लॉक का पूरा स्टाफ और सचिव भी वहां पे उपस्थित था। बैठक के प्रमुख मकसद सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के काम की रफ्तार को परखना और उसमें गहराई से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान नए खंड विकास अधिकारी ने जनता से जुड़ी कई जरूरी योजनाओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, NRLM जैसी महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति देखी। इसके साथ ही विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मनरेगा का काम, फार्मा रजिस्ट्री, पंचायती राज विभाग के कार्य, बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रोत्साहन योजना, फैमिली आईडी और गौशालाओं के रख रखाव जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात की। बैठक के आखिरी चरण में अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी सचिव को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि शासन की तरफ चलाया जा रहा सभी काम को तय समय के भीतर पूरी ईमानदारी व अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इन निर्देशों का पालन किसी ने किसी भी तरह की लापरवाही के साथ किया तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
1: रेलवे विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। बता दें कि जनपद गोंडा रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर से सीतापुर जा रही सेना के जवानों की विशेष ट्रेन में सोमवार को पानी खत्म हो जाने पर गोंडा रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा। पानी की समस्या से नाराज जवानों ने रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सेना के जवानों को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन सोमवार को गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यात्रा के दौरान ट्रेनों के कोचों में पानी खत्म हो गया, जिससे जवानों को काफी परेशानी उठाना पड़ा।
2: गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पे 15 साल की नाबालिग लड़की और 17 साल के लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोनों का शव एक ही रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतक लड़का बहराइच जिले का रहने वाला था, जबकि लड़की गोंडा की ही निवासी थी। रिश्ते में दोनों जीजा सारी लगते थे और पिछले 2 साल से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे लेकर घर में काफी विवाद और तनाव चल रहा था। घटना की जानकारी तब हुई जब लड़की के पिता ने दोनों के शवों को देखा और तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और खुदकुशी का असली कारण पता करने में जुटी हुई है।
1: गोंडा प्रशासन अलर्ट। बता दें कि ईद उल जुहा बकरीद त्योहार को लेकर जिलाधिकारी व एसपी ने की सेंट्रल पीस कमेटी की एक बैठक। बता दें कि आगामी आयोजित होने वाले ईद उल जुहा बकरीद त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां लोग त्योहार को लेकर उत्साहित हैं, वहीं गोंडा पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत त्योहार पर शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी एवं पूर्वी तथा समस्त जिलाधिकारीगण एवं समस्त उप जिलाधिकारीगण एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी व सभी थाना अध्यक्ष, सभी धर्म गुरु एवं संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें आगामी ईद उल जुहा, आगामी त्योहार को शांत पूर्वक मनाने और किसी भी व्यक्ति की

0: प्रकार की पोस्ट न करें जिससे कि आपसी माहौल बिगड़े।
1: गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम को अयोध्या गोंडा मार्ग में एक भयानक सड़क हादसा हो गया। यहां राजा सगरा के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे तुरंत ही इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे की खबर मिलते ही वजीरगंज थाना प्रभारी विपुल पांडे तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल व्यक्ति को तड़पता देखकर तुरंत अपने थाने की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले डंपर को भी कब्जे में ले लिया है, लेकिन उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप जनपद गोंडा में 24,754 स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की कवायद शुरू। बता दें कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत जनपद में 4,00,000 परिवारों की समस्याओं एवं महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2026 एवं 27 के लिए लक्ष्य जारी किए जाने के बाद स्वतः रोजगार उपायुक्त कार्यालय ने समूह गठन की कवायद तेज कर दी है। इस बार जनपद में 24,754 स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। जनपद के सभी 16 ब्लॉक में वर्तमान में करीब 64 संकुल संघ और 970 ग्राम संगठन और 16,380 से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इनके माध्यम से 1,00,000 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से जोड़ा गया है। महिलाएं समूह के जरिए न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पाद स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, जैसे अर्गा ब्रांड के उत्पादों को अच्छी पहचान जनपद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मिल चुकी है।
1: गोंडा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। बता दें कि आने वाली 22 मई को युवाओं के लिए लग रहा है रोजगार मेला। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य में आगामी 22 मई को राजकीय आईटीआई मनकापुर में रोजगार मेला लगेगा। मेले का आयोजन देवी पाटन मंडल के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। जिला सेवा योजन अधिकारी गुलाब चंद्र मौर्य ने बताया कि रोजगार मेले में 10 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक तथा तकनीकी डिग्री और एवं डिप्लोमा धारक युवक युवतियां हिस्सा ले सकेंगे।
0: जनपद गोंडा में आत्मरक्षा के तरीके सिखाने के लिए गोंडा ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू कर दी गई है। यह विशेष कैंप जनपद के 6 प्रमुख केंद्रों पर रोज शाम करीब 5:30 पर संचालित की जा रही है। इच्छुक खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था है। ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर प्रत्युष राज ने बताया कि शिविर का उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाना है। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में प्रतिभागियों को पंच, किक, एडवांस सेल्फ डिफेंस तकनीक और फिजिकल फिटनेस का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी जनपद स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। शिविर शहर के श्री रकुल विद्यापीठ, गांधी पार्क, सर्वोदय पार्क, आवास विकास, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रेलवे गांधी स्कूल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि शिविर की आखिरी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा, जिसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंप में शामिल होने वाली बालिकाओं को एसोसिएशन की तरफ से निःशुल्क आत्मरक्षा किट भी बांटी जाएगी।
1: माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षिक स्तर 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने बताया कि सत्र 2026-27 में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि समेत विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों तथा एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एलएलएम और एमएससी कृषि जैसे परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को डाटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, यौगिक साइंस, क्वांटम साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। कुलपति ने बताया कि 15 मई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है।
0: सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा ऑडियो वायरल। बता दें कि कर्नेलगंज में विद्युत विभाग में अधिकारी और कर्मचारी बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। विभागों ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी

0: 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। करनेलगंज में तैनात बाबू दिग्विजय सिंह ने अधिशासी अभियंता रणवीर सिंह के खिलाफ मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ से शिकायत की है। शिकायत के साथ ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराई है। इसमें बीते शुक्रवार को आयोजित कैंप में टेंट लगाने को लेकर फोन पर बदजुबानी की बात सामने आई है। या मुख्य अभियंता ने बताया कि जांच के लिए अधीक्षण अभियंता गोंडा सुशील कुमार यादव और उप मुख्य लेखाधिकारी वासु वर्मा महेंद्र की 2 सदस्यीय समिति बनाई गई है। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। इंद्रेश को दी इजाजत, नमस्कार।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। व चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: डिलीशियस
8: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-8840-3395 84। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: जब
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

दीपांशी ऑफ कोर्स आरजेबीना बिल्कुल ठीक हैं और आप भी उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगी। मनी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बंटी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? और आप सभी का स्वागत है आज की बॉलीवुड या शाम में। सो आज टॉक तो होगी लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में। यस, तो फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी से उड़ जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ आपके वाले बॉलीवुड या शो की। वैसे बॉलीवुड

टॉक करने से पहले तो मैं ये आप लोग को बता दूं कि यार आजकल ये कितना मतलब अजीब सा चल रहा है कि कोई पार्टीज बना रहा है, कोई किसी को डिफेंड कर रहा है, कोई किसी को डिफेंड कर रहा है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ ना तो आप खुद डिप्रेशन में आ जाओगे। जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि चलो थोड़ी देर मोबाइल चला ले, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। बहुत पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं चलो थोड़ा सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं, दिमाग थोड़ा सही हो जाएगा। और असली में क्या होता है, असली में दिमाग खुद ही और स्ट्रेस हो जाता है सोशल मीडिया पे जाने के बाद। सच्ची बता रही हूँ, मतलब जो अच्छी फीलिंग आनी चाहिए ना वो तो कतई नहीं आती। इनफैक्ट दिमाग और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो चलिए आज की शाम, वैसे पार्टी मेरे नाम नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग के नाम है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कुछ खास जिसके बारे में कई दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन पता चल ही नहीं रहा होगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है कि नहीं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक बार बता दूँ आप लोग को कि क्या है एक्चुअली में, एक ये कहानी क्या है, ये अंदाज़ क्या है, इसके पीछे का मतलब लॉजिक क्या है। तो फिलहाल आप लोगों ने मतलब है तो वैसे ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी जनरल नॉलेज आप लोग की बढ़ा दी जाए। जनरल नॉलेज किस संदर्भ में कि आखिर कैसे क्या पार्टीज़ बनाए। बहुत लोग के मन में आ रहा है कि क्या कैसे कोई भी यूथ अपनी पार्टी बना सकता है, या किसी पार्टी को बनाने में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नीडफुल थिंग्स हैं। तो सबसे पहले आज मैं बात कर लेती हूँ कॉकरोच जनता पार्टी। वैसे कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो होता है, मैं उसके कॉकरोच की साइज बता देती हूँ, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है भाई, मतलब अच्छा खासा एक ऑर्गेनिज्म है, और इन ये उस ग्रुप से आता है जिसमें बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन सच में इनकी स्पीशीज़ बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो चलिए कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच घिनौना भी लगता है हमें क्योंकि खाता है ये बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं। एनीवे, अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी का स्टूल जो है ना वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो थैंक्स इसको भी करना पड़ेगा। सो आपने भी देखा कि इंस्टाग्राम पे एक मतलब एक अकाउंट बना जिसपे बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए। लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी राजनीति दल का पंजीकरण कैसे होता है, कैसे आप अपने आप को एनरोल करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान की बात से शुरू करते हैं। तो ज्ञान की बात शुरू करने के बाद फिर बॉलीवुडिया टॉक होगी, तो मैं आप लोगों को कहूँगी थोड़ा सा अलर्ट होकर सुने, ध्यान से सुने, जो दिमाग में चल रही है ना फालतू फालतू वाली चीज़ें वो सारी दूर हो जाएँ। क्या हो गया बंटे जी, बड़े परेशान हैरान, और मतलब क्या बताऊँ क्या, हाँ गर्मी की वजह से परेशान होंगे क्योंकि आप राजस्थान में रहते हो और राजस्थान जैसी गर्मी यहाँ भी है। बताइएगा कितना डिग्री टेम्परेचर है आपके यहाँ। तो मैं आपको बता दूँ कि समय सीमा जो होती है किसी भी दल की होती है, जो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अपने किसी संगठन को बनाने की, तो 30 दिनों के अंदर आपको चुनाव आयोग यानी कि ECI इलेक्शन कंट्रोल कमीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कानूनी आधार क्या है, ये आवेदन आयोग द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत प्रदत्त शक्तियों अनुसार निर्धारित दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित होती है। ठीक है, तो ये मतलब मैंने शॉर्ट नोट बनाया हुआ था समझते हुए कि कैसे कोई पार्टी बनाई जा सके। मैंने मेरे दिमाग में भी आके भाई मैं भी एक पार्टी शुरू कर दूँ, RGB ना जनता पार्टी टाइप, तो मैंने कहा यार इतना आसान तो नहीं होगा, चलो इसके पीछे का लॉजिक समझे। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किसी भी मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, मुझे ये लगता है कि जो लीगली और जो सच में मतलब वो हो, क्या कहते हैं, रेलिवेंट हो, उस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे तो भरोसा कतई नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपको 30 दिनों के अंदर ना खुद को एनरोल करना पड़ेगा ECI के अंदर, मतलब चुनाव आयोग के अंदर। ठीक है, और इसके बाद ये संविधान के जो कहते हैं ना अनुच्छेद 324 के तहत आता है। और आगे मैं बता दूं कि सार्वजनिक सूचना जो होती है पार्टी के नाम को 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होता है। मतलब आपका लोगों को पता तो चले कि भाई आपने कोई पार्टी शार्टी बनाई है तो किस बिहाफ पे बनाई है, क्यों बनाई है, उससे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों को पता तो चले। आपने पार्टी बना ली, आपने किसी को बताया ही नहीं, और बताया भी तो आपके जानने वाले लोग आपको जाने, बाकी लोग को तो कोई जान ही नहीं रहा। तो इस बात पर आपको फोकस करना है कि आपको जल्दी से जल्दी 2
मतलब दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय समाचार पत्रों में आपको बताना है कि हमारी ये पार्टी है, हम इसके वो हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, ये है वो है, जो भी है सब आपको बता देना है। मतलब आप ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे आप अपना काम कर रहे हो तो आपको दुनिया जान गई तो बस हो गया काम, नहीं नहीं टाटा बाय बाय इतने में नहीं होगा, आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। चलिए आगे बताना चाहती हूँ कि इसका लाभ क्या होगा ऐसा करने से। पंजीकृत दलों को स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में चुनाव चिन्ह आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी। भाई आपको आगे जो चुनाव चिन्ह मिलना होगा ना उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी कि भाई इसने पहले अप्लाई किया तो उनको जो चुनाव चिन्ह चाहिए वो उनको दे दिया जाए, ठीक है। अब भाई आपको कॉकरोच चाहिए, बिल्ली चाहिए, चूहा चाहिए, जो भी चाहिए, आप अगर पहले अपना जो पंजीकरण करा रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक बात हुई। और अब दूसरी बात की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय दल बनते कैसे हैं, क्या इसके पीछे का मतलब वो है, दिमाग में कई बार आया होगा ना कि ये सब दल बने कैसे। तो कहते ना जो जानो वही जानकारी, तो जानकारी मिल रही है तो ले लीजिए। तो आरजी बिना जानकारी देने में पीछे नहीं रहती बिल्कुल भी। तो राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है जब निम्न में से कोई भी शर्त पूरी होती है। अब निम्न शर्तें कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली शर्त है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हाँ 4 राज्य में आपका होना चाहिए, मतलब पौआ 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त करें। भाई आपको मत भी मिलने चाहिए कि हाँ 6% लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम 4 लोकसभा सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी, तब आ जाके आपकी जो दल है राष्ट्रीय दल बनेगा, ठीक है। कम से कम 3 राज्यों के लोकसभा की कुल सीटों का 2% आपको जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय दल की बात होगी। राज्य दल कैसे बनाए, भाई आपको स्टेट लेवल पे काम करना है कैसे करें। किसी दल का राज्य दल का दर्जा उसको तब मिलता है जब वो विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करता है और 2 विधानसभा की सीटें भी प्राप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आपसे एक सवाल करती हूँ, छोटकू सा बहुत प्यारा सा सवाल है कि आज करंट टाइम में इंडिया में टोटली कितने राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो कहते हैं ना कि पार्टीज चल रही हैं राजनीति की, पॉलिटिक्स की। आंसर्स का आपके इंतज़ार रहेगा, फिलहाल मुझे तो आंसर पता है, आप लोगों से जानना चाहती हूँ टोटल कितनी पार्टीज चल रही हैं, सोच के बताइए। और इतनी ही जानकारी मिलने के बाद आपको मज़ा तो आ ही गया होगा। अभी तक बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है घर से, ओ यानी कि 42 आपके, हमारे यहाँ भी ऐसे 42-43 चल रहा है। तो चलिए बढ़िया सा एक गाना सुनते हैं जो आपको थोड़ी ठंडक वाली फीलिंग दिला देगा। लेट्स एंजॉय।

वाला दिन और कुछ गाने ऐसे, कुछ मूवीज ऐसी जो देख के दिल खुश हो जाता है, और उन्हीं में से रेड भी थी। रेड का दोनों, मतलब जो पार्ट आए थे दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे। और मतलब सीरियसली अजय देवगन की जो 90s की मूवीज़ थी उससे अगर अजय देवगन को कंपेयर किया जाए इधर की, यानी कि इधर 20s की मूवीज़ में, तो इनका काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग बताइए, अजय देवगन को आप लोग 90s की मूवी में ज़्यादा पसंद करते थे, वो दिलजले और दिलवाले वाला अजय देवगन, या आपको ये इधर वाला चलाओ ना नैनो से बाण ले, जान ले लो ना जान रे। आप लोग बताइए कौन सा वाला अजय देवगन आपको ज़्यादा पसंद है। सीरियसली बताऊँ, पहले के ज़माने में यार अजय देवगन को जो रोल दिए जाते थे ना, वो मेरे को कतई कभी पसंद ही नहीं आए यार। इतना मार खिला देते थे हीरोज़ को पहले। बट ये तो साउथ से मूवीज़ देख देख के इन लोगों ने थोड़ा सीखा और मूवी मतलब जो है बहुत अलग लेवल की बनाई जाने लगी। और आपको बता दूं, 22 मई है आज, और आज रिलीज़ हो चुकी है मूवी सोनाक्षी हाँ की सिस्टम, जिसमें इनके साथ ज्योतिका हैं, आशुतोष गोवरिकर है, ठीक है। सोनाक्षी ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं करती हैं, लेकिन करती हैं तो ठीक है, दमदार करती हैं। अगली मूवी है जो थोड़ी सी रोमांस और प्यार से भरी हुई है, वो है चांद मेरा दिल। ओहो हो यार, मुझे ये वाला गाना बड़ा पसंद है, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। और इसमें आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अनन्या पांडे एंड लक्ष्य हैं। फिलहाल मूवी रोमांटिक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख सकते हैं, बुक योर टिकट्स नाउ। इसके बाद मैं बाकी बात करूंगी आखिरी सवाल की। अरे आज एक मज़ेदार वेबसाइट के बारे में लेके आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि भाई फ्री में आप बहुत सारी वेब सीरीज उस वेबसाइट पे देख सकते हैं। मतलब जो आपने बहुत दिनों तक सोचा, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कोई डिज्नी का अपना मतलब पासवर्ड मांग रहा है, कोई इसका हॉटस्टार का मांग रहा है, इधर उधर पासवर्ड मांगने का झंझट ही खत्म। और आपको अगर वो वेबसाइट पता चल गई ना भाई, आप कहोगे थैंक यू आर्जेविना एंड योर लाइफ विल बी द झिंगा लाला। तो आखिरी सवाल, मूवी आ चुकी है संजय दत्त की और नामशी चक्रवर्ती, ये रिलीज़ हो गई है 15 मई को। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। तो यार बहुत दिन हो गए रोमांटिक मूवीज़ की बात नहीं हुई, तो मैं आज रोमांटिक मूवीज़ से बात करूँगी। और IIZ शुरू हो चुके हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज, ये भी हॉरर वाली मूवी है जिसमें मोहन कपूर, अनुप्रिया गोयनका, सचिन कुवेथम, हॉरर थ्रिलर से भरी हुई मूवी भाई लोगों ने बड़ी पसंद की है। इसके बारे में बताऊँगी लेकिन थोड़ी देर बाद। सबसे पहले शुरुआत होगी चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, लौट के आना है जरा मुश्किल। फिलहाल मुझे गाने की लिरिक्स पूरी नहीं याद है जितनी मैंने कोशिश की, मुझे नहीं पता ये गाना इस मूवी में है भी नहीं, लेकिन हाँ मैं अब ये देख रही हूँ कि शब्दों की और नामों की कमी पड़ रही है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब लोगों ने लोगों ने जो पुराने गाने थे उन्हीं से फिल्में स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले चांद मेरा दिल का टाइटल ट्रैक सुन के बताती हूँ मैं कि ये गाना कैसा है, और आप लोग भी बताइए कि ये गाना कैसा है। लेट्स एंजॉय द फर्स्ट सॉन्ग।

पुराने वाले चांद मेरा दिल को और नए वाले चांद मेरा दिल को आप लोग को 5 में से स्टार्स देने, कितने स्टार देंगे? दोनों टाइप करके बताएंगे, पुराना वाले को इतने, नए वाले को इतने। फिलहाल नया वाला आप लोग सुन रहे हैं, पुराना वाला ऑलरेडी सुन चुके होंगे, नहीं मैं बाद में सुना दूंगी।

चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल। और इसको सुन के आपका दिल भी चांद को याद ही कर रहा होगा कि यार चांद की ठंडक थोड़ी यहाँ भी आ जाए। फिलहाल आप लोगों से एक सवाल किया था, उसका जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। और पहला भाई मैं बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी BJP, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, आम आदमी पार्टी आप जिसे आप कहते हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आ जाते हैं छठे नंबर पे नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं आपके देश में। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कोई पूछ ले तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आंसर लिख के आइएगा।

फिलहाल मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं पुराने वाले चांद मेरा दिल को 5 में 5 पॉइंट्स दूंगी और इस वाले को 5 में 4 पॉइंट्स दूंगी। आप लोगों ने भी पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो चलिए इंतज़ार कर लेते हैं आगे भी। और आगे बात करते करते भाई मैं चलती हूँ थोड़ी और बातें करने और आप लोगों से डिस्कस करने कुछ और मूवीज़ के बारे में। तो कुछ और मूवीज़ बताने के पहले तो मैं चांद मेरा दिल को थोड़ा रिव्यू कर देती हूँ कि अगर आप देखने का सोच रहे हैं कुछ रोमांटिक होगा तो बिल्कुल रोमांस के बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना कि मतलब देसी वाला है, पुराने स्टाइल का है या थोड़ी फाइटिंग वाइटिंग भी है, लड़ाई झगड़ा भी है। तो मूवी का नाम है चांद मेरा दिल, ठीक है। मूवी को रिव्यू करती हूँ मैं और आप लोग को बताती हूँ कि इस मूवी का क्या सीन है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो मूवी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नन्या है, लक्ष्य है, नया कपल और मूवी भी रिलीज़ हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि कैसी होगी मूवी? तो अगर आप बहुत दिनों से कुछ अलग देखने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को। और मूवी जो है वो पहली बार एक कॉम्बिनेशन लेके आई है लक्ष्य का और एक्ट्रेस अनन्या पांडे का। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमें लगता है कि पुरानी वाली मूवी की तरह होगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें अगर देखें तो पहले दिन की कमाई इसकी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हाँ 2.5 करोड़ के आसपास है। और इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा जा सकता है कि मूवी बहुत ज़्यादा हिट नहीं होने वाली। और आंकड़े बढ़ सकते हैं जिनको रोमांटिक मूवीज़ पसंद होगी उनके लिए। और मैं जहाँ तक बता सकती हूँ कि आजकल लोग रोमांस के पीछे कम भाग रहे हैं, लोगों को कंटेंट चाहिए, वो भी रियल कंटेंट। बायोपिक्स ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और आप लोग बताइए आपको कैसी मूवीज़ पसंद है, हॉरर, थ्रिलर, ड्रामा या फिर रोमांटिक या ह्यूमरस, सोच के बताइए। तो खास बात बताऊँ कि लक्ष्य इस फिल्म में पहले केवल एक फिल्म, मतलब इस फिल्म के पहले वो एक फिल्म जिसका नाम था किल, उसमें देखे थे बड़े पर्दे पर। इसके पहले छोटे मोटे इन्होंने टीवी सीरियल्स वगैरह किए थे और इस फिल्म में इन्होंने अच्छा काम दिखाया, अपना एक्टिंग इनकी अच्छी है और थिएटर्स में लोगों को इनका काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी क्यों पिट रही है, लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रही, क्योंकि इसी के साथ एक और मूवी रिलीज़ हो गई है मोहनलाल जी की दृश्यम 3, जिस वजह से लोग इसको मिस कर रहे हैं। तो आप जब भी अपनी मूवी जब आपकी, मैं एज अ, अगर आप डायरेक्टर या कभी कुछ ऐसा बनने वाले या मुझे सुन रहे हैं एज अ डायरेक्टर आप हैं और आपको थोड़े टिप्स चाहिए, तो जब भी आपको पता चले कि आपकी मूवी के साथ पैरेलल में कोई धमाकेदार मूवी रिलीज़ होने वाली तो आपकी मूवी पिट जाएगी, ये दिमाग में डाल लो। 1-2 महीने बाद रिलीज़ करो, लेकिन आप किसी बड़ी मूवी के साथ अपनी मूवी मत रिलीज़ करो जिस, अगर आपको लगता है कि आपकी मूवी का जो मैटर है वो बहुत एवरेज सा है, ठीक है। मुझे मार धाड़ वाली मूवी बहुत पसंद है, जैसे हॉलीवुड, यस मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे टॉलीवुड भी पसंद है, हॉलीवुड भी पसंद है। बॉलीवुड अब अच्छा लगने लगा, पहले के जैसे पहले के ज़माने में देख लीजिए उनको, क्या नाम है, अजय देवगन को कितना पिटवा देते, दिलवाले देखिए कितनी, मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। दिल जले ऐसे ही उसमें पिटता है, घायल देख लीजिए पूरी फिल्म में घायल ही होता रहता है। तो मतलब हीरो है तो उसको थोड़ा हीरो की तरह रखना चाहिए, उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चाय वाला बना के रखते फिर लास्ट में हीरो बनाते हैं, मतलब ये वाली चीज़ नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा हीरो को भी हीरो जैसा लगती। लेकिन अब हमारा बॉलीवुड काफ़ी अलग हो चुका है। अजय की अब मूवीज़ देखी कितनी अच्छी अच्छी हैं, रेड मुझे बहुत अच्छी लगी, दृश्यम मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं बता दूं कि हाँ मलयालम में आ चुकी है दृश्यम 3, और अगर आपका बहुत उतावलापन है तो इसका हिंदी डब्ड वर्जन आ चुका है, आप वो देख सकते हैं। दृश्यम 3, मतलब दृश्यम 1, दृश्यम 2, इन दोनों ने हमें खूब खूब खूब एंटरटेन किया है। और अब बारी है कि इस थर्ड पार्ट की, ये हमें एंटरटेन करती है कि नहीं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच सविता जी, बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए, और योर विशेज मीन्स अ लॉट फॉर मी, और मैं चाहूँगी कि आपका हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। और थैंक यू सो मच। सो विशेज मुझे भी मिल जाती हैं टाइम टू टाइम, थोड़ा बहुत तो दिल में आप लोग की जगह मैंने भी बना ही ली है। तो सबसे पहले बता दूँ कि मूवीज़ देखते देखते हम लोग को ये तो रियलाइज़ हो गया है
कि किसकी मूवी ज़्यादा हमें पसंद आने वाली है और किसकी मूवी थोड़ी कम पसंद आने वाली है। हाँ, थोड़ा सा मतलब अनन्या पांडे को थोड़ा अंडररेटेड हम लोगों ने रखा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा इनकी मूवीज़ नहीं देखना चाहते क्योंकि इनको लगता है कि ये थोड़ा ओवर एक्टिंग टाइप करती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर मेहनत कर रहा है तो चलिए उसको देख लेते हैं, एक बार देखने में हमारा क्या ही जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे जो मूवीज़ होती हैं उनमें सब मूवीज़ की हैप्पीज एंडिंग होती है ना, यूजुअली हम लोग मानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चांद मेरा दिल की जो कहानी है वो सुखांत यानी कि एक अच्छे एंड के बाद शुरू होती है, जब प्यारी शादी की मंजिल तक, मतलब जो प्यार जो है आपकी प्यारी गर्लफ्रेंड से, जिससे आप बहुत सारे कहते हैं ना कि वो इजहार मोहब्बत करते हैं, और फाइनली आप वो इजहार शादी तक पहुंच जाता है। यानी कि मतलब प्यार वाला जो स्कूल कॉलेज वाला प्यार है वो सब ख़त्म करा के सीधे शादी से शुरू हो रही है कहानी है, ठीक है। ये खास चीज़ है इस मूवी की। और उसके बाद असली जीवन शुरू होता है वो दिखाते हैं, बच्चा, जिम्मेदारियाँ, आर्थिक दबाव, समझौते, रोज़मर्रा की चुनौतियाँ, इस सफ़र में इंसान कैसे आटे दाल के भाव के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाता है, ये उस मूवी में दिखाया गया है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि ये रिलेटेबल है, काफ़ी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। मतलब उन्हें शुरू शुरू में तो लगता है प्यार से पेट भर जाएगा, प्यार सब कुछ है, प्यार ये है वो है। मैंने एक छोटी सी शॉर्ट मूवी देखी थी, उसमें क्या था कि एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, शायद ऐसे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और दोनों को प्यार हो जाता है, घर वालों से मतलब दोनों क्या करते हैं, बगावत करके दोनों शादी कर लेते हैं। और घर वाले दोनों के मतलब बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, दोनों के घर वालों ने उन्हें बोला कि भाई तुम अपना कट लो, तो दोनों आके रूम लेके रहने लगते। अब बताइए भाई, माँ बाप का हाथ हट जाए और स्पेशली आप ना तो पढ़े ही लिखे हो ना ही आपके पास कोई स्किल है, तो क्या होगा, मजदूरी ईंटे ढूंढने पड़ेंगे। तो फाइनली दोनों ने रूम लिया और फाइनली दोनों धीरे धीरे रहने लगे, थोड़ा थोड़ा काम करने लगे। पर जब फैमिली बनी, बच्चे हुए, तो जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बस रोज एक ही शब्द कहना पड़ता था, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। तो उस समय वो जो कहते ना कि एकदम कचोटने वाला सिस्टम आ गया, ये रिश्ता है या फिर बोझ, ठीक है। तो यही सवाल दिखाती है ये मूवी, बहुत अच्छी है। हमको लगता है फुल रोमांटिक ही होगी लेकिन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये ट्विस्ट है, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दूं, आरव जो कि लक्ष्य हैं, ये मास्टर्स की पढ़ाई अमेरिका कर रहे होते हैं, उनकी जो कहते हैं ना कि चांदनी यानी कि अनन्या जो है वो वीडियो कॉल पे उनसे बातचीत करती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों अब साथ नहीं रहने। इसी बीच हैदराबाद में होने वाले कॉलेज रीयूनियन का जिक्र होता है, आरव चाहते हैं कि चांदनी वहाँ आए लेकिन वह इनकार कर देती हैं। रीयूनियन के दौरान आरव पुरानी यादों में खो जाते हैं। कहानी शुरू होती है 2017 से, जहाँ हैदराबाद में ये लोग दिखाते हैं सीन, जहाँ चांदनी इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके साथ पढ़ती थीं, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन चांदनी की प्रेगनेंसी उनकी लव लाइफ को अचानक मोड़ देती है। परिवार के विरोध के बावजूद आरव और चांदनी शादी कर, जैसे मैंने की स्टोरी बताई वैसे ही है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते को असली मतलब में एक कहते हैं ना कि एग्ज़ाम देना था, यानी कि एक दूसरे को साथ देने का, बच्चा, पढ़ाई, एग्ज़ाम, प्लेसमेंट, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दबाव। चांदनी और आरव जो हैं वो रिश्ते को संभाल ही नहीं पाते। इसी तनाव के बीच एक पल ऐसा आता है जब आरव गुस्से में चांदनी पर हाथ उठा देता है। ये घटना चांदनी को भीतर से तोड़ देती है और फिर वो इसको घरेलू हिंसा या ट्रॉमा समझ लेती हैं। वो अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती हैं, अकेले पड़ जाते हैं आरव। अपनी गलती का एहसास उन्हें होता है लेकिन बहुत देर हो जाती है, ठीक है। बेटी का प्यार, पत्नी का प्यार उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। मूवी काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी, बहुत सारे आजकल आसपास आपको ऐसे केसेस दिखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आरव जैसे सबको रिग्रेट कम होता है, ज़्यादातर लड़के मूव ऑन कर लेते हैं कि भाई चलो रहन दो, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो मुझे मूवी मतलब अगर मुझे स्टार्स 5 स्टार्स में जो मुझे स्टार्स देने हो तो मैं इस मूवी को 4 स्टार्स दूंगी, 1 स्टार काटूंगी कि थोड़ा सा मूवी थोड़ा आउटडेटेड है, और मतलब प्यार वगैरह के अलावा कुछ और भी दिखा सकते थे, आजकल की जो जेंजीज वाली लाइफ है वो थोड़ा सा दिखा सकते थे, बट सही है। चलिए, बहुत बढ़िया काम किया, थैंक यू सो मच मनी, हाँ थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज। एंड चलिए अगला गाना सुनते हैं हम लोग, वही बॉलीवुड या शो है तो आप लोग को अपनी फरमाइश के गाने भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन मेरे सवालों के जवाब देने के तो मैं पुराना वाला चांद मेरा दिल सुना के आप लोग का दिल खुश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नया वाला चांद मेरा दिल मुझे पसंद ही नहीं आया। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम,
लौट कर आना। आप लोग को बताना है जो सबसे पहले मुझे आंसर देगा कि ये वाला गाना किस फिल्म का है। चांद मेरा दिल, चांद नहीं हो तुम, लौट कर आना है ज़रा मुश्किल, किस फिल्म का गाना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये जो है ये जो मूवी है इसमें ऋषि कपूर जो है वो मेन लीड एक्टर है। ठीक है, तो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा ना इसमें ऋषि कपूर होंगे, तो ये पुराना वाले गाने में ऋषि कपूर एक्टर हैं। आपको बताना है कि इस मूवी का नाम क्या है।

तो भाई सबसे पहला जवाब आया है सही सही जो है वो है अनिल जी का, वेरी गुड इवनिंग अनिल जी, और बिल्कुल सही आंसर है हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना है, ऋषि कपूर के साथ काजल है इसमें, और गुड इवनिंग दीपांशी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विश। खिलती हुई कलियों में महका करो तुम, है मेरी जान गुजारिश तुमसे, हमेशा सलामत रहकर मुस्कुराकर हमें भी याद किया करो तुम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। तो अनिल जी आप अपने पसंद का गाना सुन सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि दृश्यम 3 आ चुकी है भाई, जितनी भी दृश्यम 1 और 2 आपने देखी, आप लोग को आप भ्रम दूर कर दूं, वो मलयालम मूवी जो दृश्यम 1 और 2 है उसका रीमेक वर्जन है, मतलब पहले मलयालम वर्जन बनी है फिर बॉलीवुड वर्जन बनी है। तो आप लोग थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी गौर फरमाया करिए कि आप जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बहुत ज़रूरी होता है ना कि हमें ये चीज़ पता हो कि जो हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो ओरिजिनली सही हैं या नहीं, कहीं से भी आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को और थोड़ा सा बता देती हूँ। एक यानी कि दृश्यम मूवी के बारे में अगर आपसे रह नहीं जा रहा है तो आप भी सोच रहे होंगे दृश्यम 3 का जो कहते हैं ना कि अजय वाली आएगी तभी देखेंगे, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कहीं से भी कोई भी मिल जाए आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दृश्यम देखने का मौका जब भी मिलेगा मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मुझे बहुत पसंद है मूवी यार, कितने स्टाइल में यार। लाश अभी तक नहीं मिली, दूसरी वाली मूवी भी खत्म होगी, दूसरा सेट भी खत्म हो गया लेकिन लाश नहीं मिली भाई ने, इतनी बढ़िया जगह छुपा के रखी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं मोहनलाल जी की जो है ना उनके ही बर्थडे पे रिलीज़ हुई है 21 मई को, ठीक है, और उनका बर्थडे और फैंस के लिए गिफ्ट काफ़ी अच्छा था, हाउसफुल रही मूवी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 21 मई को पूरा मतलब जो जितने भी सिनेमाज थे मलयालम सिनेमाज सब भरे हुए थे, और आपको बता दूँ ये मूवी बनाई है जीतू जोसेफ ने दृश्यम 3, और मोहनलाल सर एक बार फिर से जॉर्ज कुटी में रोल करते दिख जाएंगे और अपनी फैमिली को बचाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करेंगे। फिल्म की कहानी पिछले पार्ट के 4.5 साल बाद सेट हुई है, यानी कि जो पार्ट ख़त्म हुआ उसके भी 4.5 साल बाद ख़त्म हुई है, जहाँ पुराने राज फिर से सामने आते हैं। टैगलाइन साल गुजर गए अतीत नहीं गुजरा, फैंस को पहले से भी ज़्यादा और जोश इस मूवी में दिखेगा। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2025 से शुरू होकर 2025 में शुरू होगी फिर से। फिल्म 159 मिनट की लगभग 2 घंटे की मूवी है, मलयालम के साथ साथ ये तेलुगु तमिल कन्नड़ इन सभी वर्जन में आ गई, डब आपको हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, दृश्यम सीरीज़ में हमेशा से जो कहते हैं ना कि ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस दिया जाता है, और आखिरी के 30 मिनट अगर आपने देख लिए इस मूवी के तो आप भाई कुछ दिन तक कहेंगे भाई फिल्म तो दृश्यम 3। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि इसने बॉक्स ऑफिस पे तो रिकॉर्ड तोड़ी है, और दूसरी फिल्म जो है डायरेक्टर ने OTT पर भी रिलीज़ करा दी है। फिल्म में मोहनलाल के अलावा मीना, आशा शरत, अनूप खूब और साथ में कलाकार बहुत सारे इसमें देखेंगे। और सबसे पहली बात कि इसका जो स्क्रिप्टिंग हुई है बड़ी खतरनाक तरीके से हुई है यार, आप कहेंगे कि यार क्या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और हर आदमी लिख रहा है कि मतलब कल किन्हीं ने लिखा है कि फर्स्ट हाफ बहुत मज़ेदार था, सेकेंड हाफ सॉलिड था, और थर्ड हाफ धमाकेदार, मतलब कि मूवी के तीनों पार्ट ने सबकी होश उड़ा दी है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपका मन है इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर देखें। तो अनिल जी अपनी फरमाइश का अगर गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। गुड इवनिंग अगेन और थैंक यू इन हार्ट्स के लिए, मैं तो संभाल के रख लूँगी। और अनिल जी ने हम किसी से कम नहीं, यस यस यस, बंटी जी का आंसर पहले आया, सॉरी माय मिस्टेक, वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना स्क्रॉल हो गया था ऊपर तो आपका आंसर दिखा नहीं मुझे, सॉरी सो सॉरी। तो आंसर बंटी जी का आया है और टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे है, तो मैं 2 लिसनर के गाने सुनाती हूँ। तो बंटी जी आप भी अपने पसंद का गाना सुन सकते हैं, एंड अनिल जी आप भी, तो फटाफट से अपनी अपनी फरमाइश, मुझे पता है आप दोनों की फरमाइश धमाकेदार होंगी क्योंकि 2 अलग अलग जोन से हैं, एक है हमारे लिसनर जो कि गोरखपुर से हमें सुन रहे हैं, दूसरे हैं जो राजस्थान से सुन रहे हैं, तो दोनों की फरमाइशें भी एकदम बढ़िया होंगी। तो अगला सवाल आप लोगों से ये है, आर यू रेडी? संभाजी मूवी जो आई थी
उसमें संभाजी की पत्नी का रोल किसने किया था? मूवी आई थी संभाजी, उसमें संभाजी की पत्नी का रोल किसने किया था? ठीक है, सोच के बताइए। और लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। नई मूवी के नए गाने तो सुनने ही चाहिए। और पति पत्नी और वो दो भी मूवी अच्छा काम कर रही है, लोगों को पसंद आई, मजेदार लगी। तो अगला गाना आप लोग के लिए बड़ी प्यारी सी मूवी से है, आप लोग गेस करके बताना किस मूवी का है। सवाल तो अभी भी यही है कि संभाजी मूवी में संभाजी की पत्नी का रोल किसने किया है, सोच के बताइए।

पुराना वाला तो आपको याद है राहत की आवाज़ में, लेकिन ये वाला जो है ये रेटू से जुबीन की आवाज़ में। जी हाँ, वैसे मुझे ये गाना पसंद था। और चलिए सुन लेते हैं हम लोगों तो मतलब अजय को कुछ ज़्यादा पसंद कर लिया हमारे बंटी जी ने। और बंटी जी सुनना चाहते हैं दिलवाले से गाना, जीता था जिसके लिए हो, क्या बात है। और इसी के बाद हम लोग अनिल जी की फरमाइश का गाना सुनेंगे। आंसर सही आ चुका है आशु जी का, तो आशु जी अपनी पसंद का गाना सुनेंगी। और मैम गाना नहीं बजाया, गाना तो आपका बज रहा है। थोड़ा सा पॉज दिया करिए क्योंकि एक के बाद दूसरा गाना आएगा ना। तो इसके बाद मैं आप लोग को एक गाने की कहानी बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। आज मूवीज़ को तो रिव्यू किया ही, लेकिन एक गाना भी है जो आपकी पहुंच से थोड़ा दूर है।

सो एक फरमाइशी गाना सुनने के बाद दूसरे फरमाइशी गाने की बारी आ चुकी है, और दूसरा फरमाइशी गाना है अनिल जी का रफ़ी साहब की आवाज़ में, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा। बहुत प्यारा गाना है यार, मतलब इस गाने को जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे

तो चलिए ये गाना तो आप लोगों ने सुन लिया फरमाइश का, लेकिन अगले सवाल के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचा कि इस गाने का मतलब अगला सवाल कब आएगा। तो सवाल तो आता ही रहेगा ऐसे ही, लेकिन पहले तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कुछ खास खास खास जो कि आपकी नहीं मेरी नहीं हम सभी की इवनिंग और बेहतरीन कर देगा। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी जवाब से शुरू होते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि आज का सवाल किसी जवाब से शुरू हो। यानी कि सबसे पहले तो मैंने आप लोग को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने का वादा किया था कि जिस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो फ्री में आप यार किसी भी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, आप फ्री टू फ्री सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने पसंद के ड्रामास, मूवीज़ एंड कितनी सारी वेब सीरीज़। तो सबसे पहले आपको जाके क्या टाइप करना है गूगल पे, HICIN.app यानी कि HICIN.app, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे किसी तरह का आपको पेमेंट नहीं करना और आप फ्री में देख सकेंगे बहुत सारे OTT ड्रामे, बहुत सारे OTT मूवीज़ मतलब वेब सीरीज़। इसी के साथ आपको मतलब जितने भी इवन आप यहाँ से टिकट्स भी बुक कर सकेंगे और अपकमिंग मूवीज़ के बारे में भी जान पाएंगे और इसके साथ साथ डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो है ना मज़ेदार मज़ेदार वेबसाइट, तो जल्दी से फिर से याद कर लीजिए HICIN .app, जाके गूगल पे टाइप करिए और आपको मिल जाएंगे आपके पसंद के वो सारी के ड्रामास जिनको देखने के लिए कई दिनों से आप थे परेशान लेकिन आपको नहीं मिल रहा था समाधान, क्योंकि आरजबीना इज देयर तो काहे को फिक्र होगी डेयर। तो आपकी फिक्र दूर करने वाली जब आरजबीना आपके साथ है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो भाई सोते हुए को जगाने करने आप लोगों से बात आगे करना चाहती हूँ कई सारी चीज़ों का मतलब डिस्कशन। तो डिस्कशन से मुझे आप लोग को ये याद आया कि एक गाने की बात करूँ, आजकल बड़ा वायरल हुआ है ये वाला गाना कि गाने के बोल हैं कि

सलमा। इस गाने के पीछे एक कहानी है जो कि एक तवायफ थी जो कि बनारस की रहने वाली थी और उनके लवर को ले गए थे रंगून और इसी विषय पे बना ये गाना। तो मजेदार है ना, हम लोग के यहाँ यार गानों के पीछे ना बड़ी कहानियां छुपी होती हैं, हम लोग बस थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो चलिए अगला सवाल मेरा आप लोगों से जो होने वाला है वो ये है कि अभी तक अजय देवगन की टोटल कितनी मूवीज आई हैं। जो आंसर सबसे सटीक सबसे पहले देगा वो अपनी पसंद का गाना सुनेगा। फिलहाल आप सुनेंगे मेरी पसंद का गाना।

बिल्कुल तन्हा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल इंसान को। और फिलहाल अगर बात करें तो मैं भी बिल्कुल तन्हा फील करती हूँ आप लोग के बिना। और आंसर जो है वो प्रीति जी ने एग्जैक्ट करेक्ट दिया है, पर हाँ कुछ मूवीज़ अंडर प्रोसेस हैं तो ये आंकड़े बढ़ेंगे। तो 108, 106 ये कम है, 125 से ऊपर वाले आंसर सही हो सकते हैं क्योंकि कुछ मूवीज़ उन्होंने साइन कर रखी हैं। ठीक है, तो 25 के ऊपर

लेकिन एग्जैक्ट कितनी है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 106 कम है, ये काफ़ी कम हो गया, और 250 ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 125 से ज़्यादा हैं, कुछ साइन की हुई हैं, तो मुझे लगता है 180 के आसपास पहुंच जाएंगी। तो 125 से ऊपर वाले आंसर सही हैं, लेकिन 200 से कम वालों को ही मिलूंगी। तो सबसे पहले प्रीति जी की फरमाइश का ही गाना प्ले होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस प्रीति जी, इस प्यारी सी विश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अपनी पसंद का आप गाना सुन सकती हैं, एंड जैसे कि आप लोगों के आंसर्स बड़े ही अच्छे अच्छे हैं। और मूवीज़ की बात, जैसे मैंने आप लोगों को कई सारी मूवीज़ के बारे में बता भी दिया, और मूवीज़ बताते बताते मुझे याद भी आ गया कि बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं बता दूं कि वेब सीरीज़ भी आई हैं जो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है, बिना सोचे समझे। तो 10 सस्पेंस की, मतलब जो सस्पेंस या कह सकते हैं थ्रिलर से भरी हुई, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे जो रिलीज हुई हैं आपकी वेब सीरीज़, मैं उनके नाम बता देती हूँ आप लोग को। और आपको पसंद है कुछ थ्रिलर वाला, कुछ मतलब ख़तरनाक वाला देखने वाला, तो आंसर बिल्कुल सही दिया था रश्मिका मंदाना, आंसर सही था। और इसी के साथ आप लोग अपनी पसंद के गाने भी सुन सकते हैं। तो बलम स्वामी, ओके स्वामी सुना दिया जाएगा आपको। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन सी सस्पेंस वाली वेब सीरीज़ हैं जो आपके लिए बनी है और आपको मतलब कुछ देर के लिए ना ऐसे चौंका देंगी, कुछ दिन मतलब आप ऐसे सोचते रह जाएंगे। तो 2-3 नाम पहले मैं गिरा देती हूँ, फिर आप लोग के गाने बजाती रहती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आज तो हम लोगों ने अपने पसंद के गाने ही नहीं सुने, ठीक है। तो बिना सोचे समझे, बिना डरे आप लोग पहुँच जाइए सबसे पहली वेब सीरीज़ के पास, जिसको देख के आपका दिल कहेगा वाह क्या वेब सीरीज़ है। तो दिल बिल्कुल कहीं, दिल कहीं रुक जा कहीं यहीं पे कहीं पर। मैं आपको बता दूं कि कांथा एक वेब सीरीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, और रोजलिन एक वेब सीरीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वाली है। और इसी के साथ इको एक है, काफ़ी मज़ेदार है, अपने इंडिया, मतलब इंडिया की है पर हाँ ये तमिल मलयालम लैंग्वेज वाली हैं। ये कैनेडी जी भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। और सांप्रदायिनी, सुपिनी, सबला ये भी देख सकते हैं, लॉकडाउन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन वेब सीरीज़ हैं जिनको देखना आप लोग पे बनाई हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को हमेशा से कोशिश ये की है कि कुछ नई चीज़ें बताऊं, तो उन नई चीज़ों में आपके साथ एक और वेब सीरीज़, जैसे मैंने हॉलीवुड वाली आपको बता दी, हॉलीवुड में आप देख सकते हैं समथिंग वेरी बैड गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो आप लोग बताइए आप इनमें से कौन कौन सी देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग सुन लेते हैं गाना प्रीति जी का, बलम स्वामी ओहो फ्रॉम पुष्पा राज। हाँ भाई पुष्पा राज है तो चलेगा ज़रूर, और आरजे बिना है तो गाना बजेगा ज़रूर। सुनो डाउट, चलिए सुनते हैं स्वामी।

चलिए अगला सवाल आप लोगों से ये है कि रणवीर सिंह की पहली फिल्म कौन सी है। धुरंधर तो देख देख के आप लोग के एकदम दिल आहा खुश हो गए, लेकिन आप लोग बताइए रणवीर सिंह की पहली मूवी कौन सी है।

0: बड़ा चा सी के पहला प्यार हुंदा फिर व्याह।
1: हुण तू किदे नाल प्यार करना?
0: थोड़े नाल।
2: तो चलिए अगले जवाब का देखते हैं क्या है। बैंड बाजा बरात। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहला आंसर गीता जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट स्वीट विशेस। एंड भाई किसी ने आंसर अभी तक दिया नहीं तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ कि कुछ जो आंसर्स होते हैं उनका इंतज़ार किया नहीं जाता, फटाक से आना चाहिए। अच्छा किसी ने सांवरिया बताया और किसी ने बताया बैंड बाजा बराती, और मुझे ऐसा लग रहा है सांवरिया ही है। यू आर राइट, बैंड बाजा बराती तो इनके आई थी, तो ये मूवी मुझे लगता है कि वैसे आंसर्स मुझे जहाँ तक लग रहे हैं, मुझे भी सोचना पड़ जाता है कभी कभी ना, कि मुझे जहाँ तक पता था कि बैंड बाजा बारात इनकी पहली आई थी, लेकिन सांवरिया इज़ करेक्ट आंसर। यू आर राइट, यस यस यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस धर्मेंद्र जी, आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं और अब इसमें कोई देरी नहीं है। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। और आप लोग साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि खुशी हमेशा डबल डबल डबल हो जाएगी। एंड कोई भी आरजे तभी ज़्यादा खुश होता है जब उसके साथ उसके मतलब लिसनर फैमिली होती है। एंड यू ऑल आर माय फैमिली ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और हमेशा आप लोग का साथ आगे ऐसे ही रहेगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो रणवीर, हाँ यस, मैं थोड़ा सा बता दूं कि रणवीर कपूर की सांवरिया है और रणवीर सिंह की बिल्कुल बैंड बाजा बराती, मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना भूल गई थी। तो दोनों की फेवरेट मतलब पहली पहली मूवी यही है, तो चलिए जिनको कंफ्यूजन हुई उनके लिए भी मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कर देती हूँ। तो प्रीति जी ने जो आंसर दिया है वो है रणवीर सिंह के लिए और सांवरिया जो आंसर है वो है आपके रणबीर कपूर के लिए। तो दोनों के आंसर बिल्कुल सही है, तो दोनों को गाना सुनने को ज़रूर मिलेगा, इनफैक्ट गीता जी को भी सुनने को मिलेगा। तो फटाफट से अपनी अपनी फरमाइश भेजिए धर्मेंद्र जी, गीता जी एंड एंड एंड प्रीति जी। तो सबसे पहले गाना सुनते हैं आज इसी वक्त ये मेरा दिल ये मुझे ओहो दे मुझे, क्या बात है, बड़ा अच्छा सा गाना है। तो चलिए सुन लेते हैं सबसे पहले धर्मेंद्र जी की फरमाइश का गाना और उसके बाद गीता जी और फिर प्रीति जी, क्योंकि प्रीति जी अपनी पसंद का एक गाना सुन चुकी हैं। तो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम धर्मेंद्र जी।

चुका है आप लोगों से विदाई लेने का। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लवली विशेज। एंड लास्ट गाना प्ले करके मैं जा रही हूँ प्रीति जी का, और गाना है ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। बिल्कुल मुस्कुराना आप लोग का तो गजब हो ही जाता है, क्योंकि किसी किसी की मतलब मैं कहूँगी कि आपने कितना भी मेकअप किया पर आपकी खूबसूरती आपकी मुस्कुराहट से होती है। अगर आपने लाखों का मेकअप करा के मुंह एकदम टेढ़ा करके रखा है ना, तो मुझे लगता है कि कोई मज़ा नहीं आएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों ने दी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्यारी प्यारी शुभकामनाओं के लिए। और प्रीति जी का गाना तो ऑलरेडी आ चुका था, और अब देखिए नेक्स्ट फरमाइश जो है आपकी फरमाइशी में जाएगी। तो मेरी तरफ से सबसे पहले फूलों की रानी, आप इन्जॉय करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फॉर माय शी वीडियो आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून्ड। सो आज के जज्बात कुछ ऐसे हैं मेरे, आप लोगों के जज्बात कैसे हैं आप लोग चैट बॉक्स में अपने फरमाइशी गीतों के थ्रू जरूर बता सकते हैं, साझा तो जरूर ही कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इंजॉय कर ही लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और इसी को इंजॉय करते करते अपने दिल के जज्बातों को फरमाइशी गीतों में पिरो के चैट बॉक्स में शेयर भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है और जो भी कहा है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कहा है। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना, अगर वो नकले नजर पुकारे तो लौट आना। पुरानी राहों पे साथ चलने का ख्वाब आंखों में पल रहा है, पुरानी राहों पे साथ चलने का ख्वाब आंखों पे पल रहा है। तुम्हारा रास्ता बदल गया है मगर मेरा दिल वहीं रुका है। सो ये लाइंस बहुत ही खूबसूरत सी थी, बहुत ही प्यारी थी। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों को भी आप अपने चैट बॉक्स में हम सब तक साझा कर सकते हैं। फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा के लिए तो आपकी है ही ना दोस्तों। सो इस्तकबाल है आपका जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, अनुष्का श्रावस्ती से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सबिता दुबे जी गोंडा से, मालवी नगर से, राजेश सिंह जी, अनिल वर्मा सैदापुर से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, सुरेश कुमार जी चौक से, ने बजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राकेश वर्मा जी गोंडा से, द ग्रेट सिंह साहब आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश बिना किसी देरी के। और पहली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, और जग्गू दादा को सुनना है गाना कान में झुमका चाल में ठुमका। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

ओहो कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है सावन भादो मूवी का, जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उदालक शर्मा मनकापुर से आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, एक लड़की चाहिए खास खास हो LLB वो पास पास। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, गोविंदा का सुष्मिता सेन का गाना हमारी तड़कती भड़कती सी अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड है एवरीवन। लग रहा है ना कि फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे स्पेशल इवनिंग है। ओ माय गॉड स्टे ट्यून्ड।

हाई फाई लुगाई चाहिए, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी अनुष्का की श्रावस्ती से, बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अरमान पटेल नगर से आपका स्वागत है और निबर जीरानी बाजार सोनार गली से आपका भी स्वागत है। सो एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। उनको सुनना है बर्थडे सॉन्ग तारे तारे कितने नील गगन में सारे। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एंड दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मतलब बताना तो नहीं चाहती हूँ, ये बहुत गंदी बात है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आज हमारी आरजे बीना का हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसका सजेशन प्लीज मुझे चैट बॉक्स में देना। फिलहाल आप सभी के सामने तो मैं उनको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और अभी शो के बाद में भी दे दूंगी, लेकिन जन्मदिवस का आधा से ज्यादा समय तो बीत चुका है, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। ओ माय गॉड। सो एंजॉय कर लेते हैं प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर हमारी आरजे बीना के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। एंड वी लव यू आरजे बीना, वी लव यू। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे स्टे स्टे।

तारे कितने नील गगन पे तारे, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी प्रीति शुक्ला जी की तरफ से जो कि है बहराइच से, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था हमारी आरजे बीना को, क्योंकि है आज उनका हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत क्या करते आए हाय। सो जो दर्द मिला वो अपनों से नहीं मिला, अपने से मिला, अपने आप से मिला। दूसरे तो नहीं कहने जाते हैं कि मैंने ये कहा है, बस इस बात का बुरा मान लेना, दुखी हो जाना, रोने लग जाना, है ना। दूसरे भी पहले अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देंगे, फिर दूसरे की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देंगे ना। तो हमें भी पहले अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर दूसरों की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आशु मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यही उचित होगा हमारे लिए, अपने लिए। पहले अपने से प्यार करें, फिर दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखें। क्यों सही कहा ना, क्योंकि ये उम्मीद ना बहुत ही गंदी चीज होती है। जहां भी लगा लो वहां सिर्फ और सिर्फ धोखा और या फिर दुखी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हम एंजॉय कर लेंगे ये बहुत ही सैड वाला नगमा, और इसके बाद में हम एंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमारी आरजे बीना के लिए, आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से। स्टे ट्यून्ड।

हम एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही दर्द भरा सा नगमा हमारी आशु जी की फरमाइश पर, आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़े क्या, अगली फरमाइश की तरफ। आप लोगों का क्या ख्याल है, हाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने का ख्याल है या फिर अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से अपनी आरजे बिना के लिए कौन सा वाला गाना सुनना है, या फिर आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल कौन सा वाला गाना आपकी आरजे बिना को डेडिकेट कर रही है वो सुनना है, आप मुझे चैट बॉक्स में बताना। तब तक हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, आशु मिश्रा जी ने, सविता दुबे जी ने, उदालक शर्मा ने, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा ने, धर्मेंद्र मोहन ने, आवास विकास गोंडा से, सब ने हमारी आरजे बीना को बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट। और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी ने कुछ लिखा भी है। इनका कहना है कि आवाज की दुनिया की चमक, सबके दिलों की धड़कन, प्यारी आरजे बीना जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी मुस्कान हमेशा यूं ही खिलती रहे, आपकी आवाज हर दिल को खुशियां देती रहे। ईश्वर आपको सफलता, खुशियां और लंबी उम्र से नवाजे। हैप्पी बर्थडे आरजे बीना जी, आपका हर दिन खुशियों और नई कामयाबियों से भरा रहे। आहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे लिए तो कभी नहीं लिखी आपने। मजाक कर रही हूँ। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी बर्थडे गर्ल के लिए, आरजे बीना के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और ये गाना मैं उनके डेडिकेशन को सल्यूट करने के लिए उनको डेडिकेट करती हूँ। लव यू आरजे बीना, हैट्स ऑफ।

0: एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा हमारी आरजेबीना के लिए, और एक बार फिर से बहुत सारा प्यार हमारी आरजेबीना के लिए हम सब की तरफ से, और बहुत सारी शुभकामनाएं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और राजेश सिंह जी को मालवीय नगर से सुनना है गाना मजाल का। किशोर कुमार की आवाज में एंजॉय करते हैं तुम इंटू मैं और मैं इंटू तुम। ओह माय गॉड, सतरंगी सा गाना है हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो प्रमोद श्रीवास्तव फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड।
1: मैं इंटू

और मैं टू तुम, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर।

मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की। अजय मिश्रा को मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से सुनना है गाना मेरा यार दिलदार बड़ा सोना। सो एंजॉय करते हैं जानवर मूवी का ये गाना मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है ये गाना मिश्रा ऑप्टिकल को नर्स्य अजय मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना, तुझसे बिछड़ कर जिंदा है और जान बहुत शर्मिंदा है। आए हाय आप लोग को चाहे जैसा भी लगे, आप लोग चाहे जो सोचो मेरे बारे में लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि दोस्तों ये गाना मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एंजॉय करते हैं सुरेंद्र जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो तुम मुझे अपना ही बना के रखो। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो तुम मुझे अपना ही बना के रखो। लोग कहते हैं कि इस शहर में कातिल हैं बहुत, लोग कहते हैं कि इस शहर में कातिल हैं बहुत, तुम मुझे अपनी ही बाहों में छुपा के रखो। आए हाय, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुराधा जी की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की। उदालक शर्मा को मन का पुर से सुनना है गाना आजकल याद कुछ और रहता नहीं। इंजॉय करेंगे ये गाना मोहम्मद अजीज जी की आवाज में। उदालक शर्मा ने इस गाने को डेडिकेट किया है दीपक शर्मा को। सो दीपक शर्मा के लिए इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इस नगमे की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे अपने जज्बातों के नगर में और एंजॉय करेंगे एक दूसरे की फरमाइशी गीतों को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमोद श्रीवास्तव फ्रॉम गोंडा, मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा एंड नागेश्वर धाकड़ शायद राजस्थान से, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं सीधे 9 बजे, कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी अपनी, सच में आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ।

0: निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो शशि सिंह जी, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। ओह माय गॉड, स्टे ट्यून्ड। तुम आए तो आया मुझे याद की गली में, आज चांद निकला। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, सच में बहुत खुश हूँ आपको देख के। इन्जॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगी दोस्तों कि अभी आपने जो दर्द भरा नगमा इन्जॉय किया है वो फरमाइश थी मुमताज़ अंसारी जी की गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, आप भी सोच रहे होंगे ना, धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना ये दूरी ये कैसी मजबूरी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो की है आवाज विकास गोंडा से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नीना, स्टे ट्यून्ड, आपका स्वागत है। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल की खट्टी मीठी बातों को सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया ये गाना और धर्मेंद्र मोहन है आवास विकास गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अरमान की पटेल नगर से। अरमान को पटेल नगर से सुनना है गाना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सो एंजॉय करते हैं ये गाना। और उन्होंने कहा था बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कि ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया है। सो ठीक है, एंजॉय कर लेते हैं मेरे लिए ये वाला गाना। मैंने भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उनसे ये पूछा था कि क्या आपने मुझे कभी देखा भी है।

हमने एंजॉय किया है ये गाना अरमान की फरमाइश पर जो कि है पटेल नगर से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले बताना चाहूंगी कि ये गाना आपके आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के लिए था दोस्तों। सो बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, मुकेश यादव की गोंडा से। उनको सुनना है गाना मम्मी के लिए, तो मदर्स के लिए ये स्पेशल वाला गाना एंजॉय करते हैं आज नेहा कक्कर की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो दोस्तों, नेहा कक्कर की आवाज में हमने एंजॉय किया है हम सभी की मम्मा के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा मदर्स स्पेशल वाला गाना। दोस्तों, ये फरमाइश थी मुकेश यादव की गोंडा से और मेरे सारे लिसनर्स भावुक हो गए होंगे। और मैंने भी जब ये गाना पहली बार सुना था तभी मैं बहुत भावुक हुई थी और शायद मैं जितनी बार ये गाना सुनूंगी, अगर दोबारा भी अभी रिपीट पे मैं सुन लूँ तब भी शायद वही फील करूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फील किया है ना, वो सब कुछ नेहा कक्कर ने ऐसे अपने गाने में ऐसे कह दिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे ओवर कर रही हूँ, भले ही समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं छोटी से ही ना, मतलब मेरी अक्सर ज़्यादा तबीयत ख़राब रहा करती थी, मतलब मेरे भाई बहनों में सबसे ज़्यादा मम्मी पापा मुझे ही लेके परेशान रहा करते थे। आए दिन डॉक्टर के पास लेके जाना, ये वो, आए दिन मुझे लेके एडमिट होना, और ऐसा होता था ना कि और किसी की तबीयत ख़राब हो तो ऐसा होता था कि मम्मा रहते थे या हॉस्पिटल में, या तो पापा रहते थे हॉस्पिटल में, ऐसा हो जाता था ना, शिफ्ट लगती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, अगर मैं एडमिट हूँ, तो मेरी मम्मी पापा दोनों साथ ही में रहेंगे मेरे पास। किसी का मन ही नहीं होता था कि वो मुझे छोड़ के जाए। इनफैक्ट मेरा 9th क्लास में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी पता नहीं कितने दिनों, पता नहीं कितने महीनों, या फिर जब भी मैं उस दर्द से परेशान हुई होंगी अपनी ज़िंदगी में, तब मेरी मम्मा पता नहीं कितनी रात मेरे लिए जागी हैं। मेरे रोने पे आज भी मेरी मम्मी रो देती हैं। मैं दुनिया संसार से झूठ बोल सकती हूँ, अपने इमोशंस छुपा सकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी से बिल्कुल भी नहीं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, सच उनको पता चल ही जाता है। दोस्तों, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इससे मैं 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैंने माइग्रेन

शशि सिंह जी की, शशि सिंह जी की थी ये फरमाइश। आपका कितना मुश्किल नाम है, अगर आप ही को आपका नाम 4-5 बार लेना होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है लगातार आपको आपका नाम लेना हो पूरा का पूरा नाम सरनेम के साथ में, तो आपको भी बहुत मुश्किल होने वाली होगी ना। मुझे तो सच में दोस्तों बहुत मुश्किल होती है जब ये सा और शा दोनों एक साथ 2-3-4 बार आ जाते हैं, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ सा बोलना है कहाँ शा बोलना है, और जहाँ शा बोलना होता है वहाँ सा बोल देती हूँ, जहाँ सा बोलना होता है वहाँ शा बोल देती हूँ, कुछ ऐसी ही हूँ मैं, नॉट सो सिंपल सी। सो एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। जिंदगी खफा है तो क्या हुआ, जिंदगी ने दिल लगाने से मना तो नहीं किया है, और अगर दिल लगी से थोड़ा सुकून मिले तो दिल लगी जोर जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, बस वही दिल लगी करना चाहिए जहां से दिल लगी मिले।

जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। हाँ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है हमारे पास में दोस्तों आज की आखिरी फरमाइश। अगली आखिरी फरमाइश हमारे पास में लिबर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है सबक का गाना, बरखा रानी जरा जम के बरसो। सो हाँ दोस्तों, इतनी गर्मी आए हाय, मैं आप लोग के बीच आती हूँ तो गर्मी भूल जाती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो मुझे दिन भर गर्मी लगा करती है। मैं हर दो मिनट पर बोलती हूँ अगर भाई के पास बैठी हूँ, यार कितनी गर्मी है ना, मम्मी के पास बैठूंगी, यार कितनी गर्मी है मम्मी, पापा के पास बैठूंगी, हाँ पापा कितनी गर्मी है, मतलब कहने का तरीका अलग होगा, शब्द वही होंगे। सो एंजॉय कर लेते हैं ये बरखा रानी जरा जम के बरसो, ये बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश निबर जी की, इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और बरखा रानी से सच में दुआ करना कि थोड़ी सी बरसात दे दो यार। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। हाँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू बालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से तो जितना भी प्यार मिले उतना ही कम है मेरे लिए, बेइंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। पता है जब जाने का वक्त होता है तो मेरा जाने का मन नहीं करता है। अच्छा, मेरा तो कुछ भी मन करता है दोस्तों, लोगों के मूड स्विंग्स 10 मिनट में, 15 मिनट में होते होंगे, 1 मिनट में होते होंगे, मेरा तो 10 सेकंड में मूड स्विंग हो जाता है। फिलहाल अपने मूड स्विंग को लेके चलती हूँ घर, और वहाँ पे करती हूँ बक बक, यहाँ करती हूँ फुल स्टॉप, बस स्टे ट्यून्ड।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल ना समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने की निसाबों में मिले। रात के इस पहर में जब चरागों की लौ थपकियां देने लगती हैं, एक सवाल अक्सर जहन के बंद दरवाजों पर दस्तक देने लगता है, ये हम है क्या है। वैसे तो ये एक छोटा सा लफ्ज है हम, लेकिन इसके दरमियान एक पूरी कायनात है। आज हम इस हम को अहमद फराज साहब की गजलों और शेरों से समझने की कोशिश करेंगे। अहमद फराज साहब की शायरी में मैं की जगह हम निकल कर आना दरअसल एक शायर का अपनी जात से बाहर निकलकर पूरी इंसानियत के साथ खड़े होने का सफर है। आदाब आप सभी को, रात के इस मुख्तसर से सफर में मैं हूं आपका अपना साथी अदनान, और आप सुन रहे हैं बहारे गजल। आखिर ये हम का दायरा कहां से कहां तक फैला हुआ है, आइए फराज साहब की इस गजल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या जब कल वो जमाने के निसाबों में मिले, अब ना वो मैं न वो तू है न माजी है फराज, अब न वो मैं न वो तू न वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले।

फराज साहब की जब अपनी गजलों में हमको इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी तन्हाई को इज्तिमाई इंसानी सूरत हाल बना देते हैं। उनका हम उन तमाम आशिकों और बागियों की आवाज़ है जो बंदिशों में खुद को अजनबी महसूस करते हैं। जब वो कहते हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, तो ये हम सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जिसने बिछड़ने का दर्द सहा है। इस जगह तन्हाई अब सिर्फ एक जाती एहसास नहीं है बल्कि एक साझा गम बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फराज साहब की इस गजल में हमको महसूस होता है कि अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम, ये भी बहुत है तुझको अगर भूल जाए हम। सहराए जिंदगी में कोई दूसरा न था, सुनते रहे हैं आप ही अपनी सदाएं हम। इस जिंदगी में इतनी फरागत किसे नसीब, इतना ना यादा कि तुझे भूल जाएं हम। तू इतनी दिलजदा तो नहीं थी ए शबे फराक, आ तेरे रास्ते में सितारे लुटाएं हम। और फराज साहब कहते हैं कि वो लोग अब कहाँ हैं जो कहते थे कल फराज, वो लोग अब कहाँ हैं जो कहते थे कल फराज। हे खुदा न करदा तुझे भी रुलाए हम, हे खुदा न करदा

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
9: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अहमद फराज साहब की गजलें सिर्फ महबूब की जुल्फों तक महदूद नहीं थी, उनमें एक सियासी शोर भी था। जब हुकूमतें जुल्म करती हैं और आवाजें दबाई जाती हैं, तब फराज साहब हम कहकर आम इंसान की तकदीर को बयां करते हैं। ये जो हम हैं, ये उन लोगों की आवाज है जो तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। यहां हम के मायने हैं एकजुट। फराज साहब सिखाते हैं कि जब मैं टूटता है तब हम बनता है। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहां कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहां कोई साथ देता है। ये जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। नशे में चूर हूं मैं भी, तुम्हें भी होश नहीं। नशे में चूर हूं मैं भी, तुम्हें भी होश नहीं। बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो। ये एक शब की मुलाकात भी गनीमत है, ये एक शब की मुलाकात भी गनीमत है। किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों में, अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के। अभी है दूर सहर, थोड़ी दूर साथ चलो। तवाफ मंजिले जाना हमें भी करना है, तवाफ मंजिले जाना हमें भी करना है। फराज तुम भी अगर थोड़ी दूर साथ चलो।

रात ढल रही है और सवाल गहरे होते जा रहे हैं। फराज साहब की शायरी में हम खुद शनासी का भी एक जरिया है। अब आप सोच रहे हैं कि ये खुद शनासी क्या है। खुद शनासी के मायने हैं खुद की खोज, यानी सेल्फ डिस्कवरी। वो पूछते हैं कि इंसान की असल पहचान क्या है, क्या सिर्फ अपनी जात तक ही मौजूद है? बिल्कुल नहीं। फराज साहब के नजदीक इंसान की पहचान महज मैं से मुकम्मल नहीं होती, समाज यानी कि हमारा मुआशरा। समाज में हमारी जगह, हमारा वजूद दूसरे के साथ जुड़कर ही तय होता है। ये हम हमारी साझा शिनाख्त की तलाश है जो हमें भीड़ में खोने नहीं देती। तभी तो फराज साहब लिखते हैं कि आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। इतना मानूस ना हो खलवते गम से अपनी, इतना मानूस ना हो खलवते गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई साहिल पर उतर जाएगा। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पर धर जाएगा। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा।

अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। तो आज हमने जाना कि अहमद फराज साहब का हम कितना वसी, यानी कितनी वैरायटी है इसमें। ये जुल्मत के खिलाफ होने वाली आवाज भी है, आशिकों की तड़प भी है, और एक बेहतर मुआशरे यानी कि समाज का सपना भी। आज बस इतना ही याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई गम में होता है तो उसके गम में हम भी शामिल है। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले फराज साहब की एक गजल आपके नाम पेश करते हैं। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। जुदाइयां तो मुकद्दर है फिर भी जाने सफर, कुछ और दूर जरा साथ चल के देखते हैं। तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, ये बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। ये कौन लोग हैं जो मौजूद तेरी महफिल में, ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में, जो लालचों से तुझे मुझको जल के देखते हैं। न तुझको मात हुई न मुझको मात हुई, सो अब के दोनों ही चाले बदल के देखते हैं। ये कौन है सरे साहिल के डूबने वाले, समुंदरों की तहों से उछल के देखते हैं। अभी तलक तो न कुंदन हुए न राख हुए, हम अपनी आग में हर रोज जल के देखते हैं। बहुत दिनों से नहीं कुछ उसकी खैर खबर, बहुत दिनों से नहीं कुछ उसकी खैर खबर, चलो फराज को ऐ यार जल के देखते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: गुड इवनिंग एवरीवन। रात हो चुकी है, क्या आपने महसूस किया आपके कमरे में हवा थोड़ी ठंडी हो गई है? आपकी खिड़की का पर्दा अभी जो हिला, क्या वो वाकई हवा थी या किसी ने बाहर से झांका है? घबराइए मत, अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर सन्नाटे की गूंज। आज की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो इंसानों की दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी। एक तांत्रिक और दो बच्चे जिनकी मौजूदगी से पूरा गांव मौत की गंध महसूस करने लगा था। उस तांत्रिक का नाम था जमील। उस रात अमावस थी, आसमान बिल्कुल काला, हुगली का पानी इतना स्याह जैसे किसी ने उसमें पूरी दुनिया की स्याही घोल दी हो। जमील नदी के किनारे चल रहे थे, उनकी उंगलियों में तांत्रिक माला घूम रही थी और होंठों पर धीमा मंत्र। तभी एक दर्दनाक आवाज आई जैसे कोई घायल हो। जमील ने मशाल उठाई और देखा एक सफेद हिरनी, लेकिन उसकी आंखें हिरनी जैसी नहीं थी, वो आंखें इंसानी थी, लाल, और उनमें खून नहीं नीला पानी बह रहा था। जमील ने पूछा, कौन हो तुम? ये जख्म शिकारी का तो नहीं लगता, ये तो किसी रूहानी आग की निशान है। जैसे ही जमील ने मंत्र पढ़कर उसका सिर छुआ, हड्डियां टूटने लगी, कड़क कड़क आवाजें आने लगी, हिरनी का शरीर मुड़ने लगा, उसकी टांगे बेहद लंबी हो गई और कुछ ही पल में वो हिरनी एक औरत बन गई। उसके बाल इतने लंबे थे कि नदी में नागिन की तरह तैर रहे थे। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और फुसफुसा कर कहा, जमील तुमने मुझे बचा कर अपनी मौत का दरवाजा खोल दिया है। उसका नाम था नीलम, लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो तो एक जिन जादी थी। और उस रात से जमील की तो किस्मत ही बदल गई। कहानी अभी शुरू हुई है, लेकिन सन्नाटे की असली आवाज अभी बाकी है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस कहानी के उस पार कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें सुनकर शायद आप आज रात को सो न सके। मैं आपकी लेट नाइट आरजे लौटती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: जमील नीलम को अपने घर ले आए, लेकिन उसके बाद घर ही बदल गया। रात को दीवारों से रोने की आवाजें आती थी, कभी छत पर किसी के नंगे पैरों की आहट, और कई बार लोगों ने देखा जमील की कुटिया के ऊपर काले बादल मंडराते थे। नीलम ने एक दिन जमील से कहा, जमील मैं तुम्हारे नाम का निकाह पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा महर सोना या चांदी नहीं है, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। जमील ने तो झटपट हाँ कर दी। निकाह हुआ और उसी रात पूरा गांव कुत्तों की डरावनी रोने की आवाज से गूंज उठा। कुछ साल बीते, दो बच्चे हुए, अयास और सोबिया, लेकिन गांव वालों का असली डर यहां से शुरू हुआ। अयास जब छोटा था, एक दिन उसने खेल खेल में एक पत्थर उठाया। वो पत्थर सोना बन गया, लेकिन जो भी वो सोना घर ले गया, कुछ ही दिनों में उस घर में मौत हो गई। और सोबिया, श्रोतागण, उसकी आंखों में तो अजीब सी ताकत थी। एक बार उसने गांव के एक आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया। उस आदमी ने उसी रात अपनी ही दीवारों से टकराकर खुद को घायल कर दिया। वो बार बार चिल्ला रहा था, वो लड़की मुझे बुला रही है, वो आत्मा मुझे खींच रही है। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा, ये बच्चे इंसान नहीं है, ये किसी रूहानी श्राप के बीच है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जमील के उन बच्चों ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो रोज दुआ करते थे। एक रात अयास ने रोते हुए बोला, अब्बा क्या हम बुरे हैं? सब हमें देखकर डरते क्यों हैं? जमील की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, बस उस दुनिया में गलत जगह भेज दिए गए हो। लेकिन डर और अफवाह इंसान को क्रूर बना देती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां मोहब्बत और नफरत की टक्कर होगी, और उस टक्कर से कौन बचेगा ये कोई नहीं जानता। कहीं मत जाइए, सन्नाटे की अगली परत बस ब्रेक के बाद खुलने वाली है।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: उस रात कलकत्ता के उस छोटे से गांव में हवा ही कुछ अलग थी। हवा में मिट्टी की नहीं, डर और गुस्से की गंध थी। दूर से मशालों की लपटें दिखाई दे रही थी। लोग धीरे धीरे एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, जमील की हवेली की तरफ। पहले 10 लोग, फिर 20, फिर पूरा का पूरा गांव। किसी के हाथ में मशाल थी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में पत्थर, और उनके चेहरों पर डर से ज्यादा नफरत थी। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, आवाजें कर रही थी, आज खत्म कर देंगे इस अभिशाप को, उस जिन और उन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब से वे बच्चे पैदा हुए हैं, गांव में मौत ही मौत हो रही है। जमील ने शैतान से सौदा किया है, इन्हें मार डालो, इन्हें खत्म कर दो। और वो लोग जोर जोर से दरवाजे को लाठियों से मारने लगे, चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो जमील, दरवाजा खोलो, छुपो मत, हमें तुम्हारी बीबी चाहिए, हमें नीलम चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। हवेली के अंदर एक कोने में दो छोटे बच्चे डर से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सोबिया धीरे से बोली, हम्मी बाहर इतने लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। नीलम ने बच्चों को सीने से लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें नीली आग भी चमक रही थी। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, डरो मत मेरे बच्चों, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नहीं छू सकता। लेकिन बाहर भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भीड़ चिल्लाती है, डायन को बाहर निकालो, उसके बच्चे मौत लाते हैं, अयास की सोने से 3 घर उजड़ गए, सोबिया की आंखों ने पागल कर दिया लोगों को, ये इंसान नहीं है, इन्हें जला डालो, इन्हें मार डालो। पत्थर से खिड़कियां टूटने लगी, हवेली की खिड़की का शीशा टूट गया, हवा अंदर घुस आई और उसी के साथ लोगों की नफरत भी। उधर बिस्तर पर जमील लेटे हुए थे, उनका शरीर अब बेहद कमजोर हो चुका था, सांसें बेहद भारी थी लेकिन आंखों में अभी भी एक पिता का दर्द था। जमील ने कांपती हुई आवाज में कहा, नीलम। नीलम तुरंत उसके पास आई, उसने कहा, लगता है आज मेरी आखिरी रात है। नीलम की आंखों में आंसू आ गए, नहीं जमील, नहीं ऐसे मत बोलो, मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी, एक पल में ये सब राख बन जाएंगे। जमील ने बेहद धीरे से सर हिलाया, नहीं, खून से नफरत कभी खत्म नहीं होती। बाहर भीड़ और उग्र हो गई, किसी ने छत पर जलती मशाल फेंक दी। लकड़ी की पुरानी हवेली धीरे धीरे जलने लगी, भीड़ चिल्लाने लगी, आग लगा दो, आज शैतान का अंत होगा, जला दो। आग की रोशनी में नीलम आंगन में आके खड़ी हो गई, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली आग बन चुकी थी। भीड़ अचानक रुक गई, कुछ लोग डर से पीछे हटे। नीलम ने गुस्से और दर्द में कहा, बस तुम इंसानों को शर्म नहीं आती, ये बच्चे तुम्हारे जैसे ही मासूम हैं, इनका कसूर क्या है। फिर से एक आदमी चिल्लाया, इनकी वजह से हमारे घर उजड़े हैं, ये अपशकुन हैं, ये इंसान नहीं, ये जिन के बच्चे हैं। नीलम की आंखों से आंसू गिरने लगे लेकिन वो आंसू जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ गए। नीलम ने टूटती हुई आवाज में कहा, जमील देख रहे हो ना, ये इंसान हमारी मोहब्बत से डरते हैं। जमील धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज बहुत कमजोर है। नीलम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, नीलम ने कहा। और तुम? जमील बोला, मैं यहीं रहूंगा, इंसानों की दुनिया में, इंसान की तरह मरने के लिए। सोबिया रोने लगी। उसने कहा, अब्बा आप भी हमारे साथ चलोगे? जमील ने उसका सिर सहलाया। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जमील ने कहा, नहीं बेटी, हर मोहब्बत को एक कीमत चुकानी पड़ती है। उधर बाहर अब आग पूरी हवेली को घेर चुकी थी, लपटे आसमान तक उठ रही थी। और तभी नीलम ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरी रात कांप उठी। भीड़ फिर चिल्लाई, बच्चे मौत लाते हैं, हम उन सबको मार डालेंगे, ये इंसान नहीं है। हवा अचानक तेज हो गई, नीलम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और एक बेहद भारी आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, तुम लोग मेरे बच्चों को दोष देते हो लेकिन कभी अपने दिल में झांक कर देखा है? तुम कहते हो अयास के सोने ने तीन घर को उजाड़ दिए, लेकिन क्या तुम सच जानते हो? भीड़ में से खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाया, हमें सच नहीं चाहिए, हमें इन बच्चों से छुटकारा चाहिए। नीलम की आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। उसने कहा दर्द भरी आवाज में, सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों में, पर आज सुनो, पहला घर जहां आयास का सोना गया था, वहां के मालिक ने अपने ही भाई को जमीन के लालच में मरवा दिया था। भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। दूसरा घर? नीलम ने बात आगे बढ़ाई, जिसके बारे में तुम रोते हो, उस घर की औरत ने एक मासूम बच्ची को कुएं में धक्का दे दिया था। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगा। नीलम ने कहा, और तीसरा घर? उस घर के आदमी ने मंदिर के दान के पैसे चुराए थे। अब भीड़ धीरे धीरे चुप होने लगी। नीलम ने फिर कहा, मेरे बच्चे श्राप नहीं है, वो तो बस सच का आईना है। जिस घर में पाप छुपता है उनकी ताकत उसे सामने ले आती है। सुबिया बेहद डर गई थी। नीलम ने उसको उठकर अपने गले लगा लिया और बोली, मेरे बच्चों, गलती इस दुनिया की है जो इस सच से डरती है। पर भीड़ में कुछ लोग अब भी गुस्से में थे। एक आदमी फिर चिल्लाया, झूठ, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। नीलम धीरे से मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट में अब भी दर्द था। नीलम ने कहा, अगर झूठ होता तो आज तुम सबके दिल इतने डर से क्यों कांप रहे हैं? हवा और तेज हो जाती है, मशालों की लपटें कांपने लगती है। उस पल गांव वालों को पहली बार लगा, शायद वे जिस चीज से लड़ रहे हैं वो शैतान नहीं बल्कि अपने पापों की परछाई है। भीड़ अब पहले जितनी जोर से नहीं चिल्ला रही थी। कुछ लोग चुप थे, कुछ के चेहरे पर डर था। नीलम ने सब की तरफ धीरे धीरे देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पुराना दर्द भी था। प्यारे श्रोतागण, कहानी थोड़ी भारी हो रही है, चलिए मिलते हैं जल्द ही एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नीलम आगे बढ़ी और उसने भीड़ से कहा, तुम लोग पूछते हो ये सब क्या हो रहा है, तो आज सुनो, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो तुम सबने सालों पहले मिट्टी के नीचे दबा दी थी। भीड़ में खड़ा बूढ़ा आदमी बेहद घबरा गया। नीलम ने कहा, याद है तुम्हें करीब 20 साल पहले यहाँ इस गांव में एक गरीब लड़की रहती थी, उसका नाम था नसीमा। भीड़ में धीरे धीरे खुसुर फुसुर शुरू हो गई, कुछ लोग के चेहरे उतर गए। नीलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो लड़की बेहद खूबसूरत थी लेकिन उससे भी ज्यादा मासूम थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके बाप की जमीन छीन ली और जब उसने विरोध किया तो उसे हुगली के घाट पर पत्थरों से मार मार कर पानी में फेंक दिया गया। भीड़ में खड़ा वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, पर भीड़ चिल्लाई, झूठ है ये। नीलम ने सबकी तरफ देखा, उसके आंखों की नीली चमक और भी तेज हो गई। उसने कहा, झूठ? तो फिर ये बताओ, उस रात जब वो लड़की चिल्ला रही थी तब तुम लोग उसकी मदद के लिए क्यों नहीं गए? अब भीड़ बिल्कुल शांत थी। नीलम की आवाज धीमी हो गई। उसने धीरे से कहा, वो लड़की मैं थी, मैंने वो दर्द सहा, मैंने मौत सहा। जब मेरी सांसें टूट रही थी, जब हुगली का पानी मेरे फेफड़ों में भर रहा था, तब एक जिन ने मुझे बचाया, लेकिन उसकी दुनिया में जाने के लिए मुझे इंसान नहीं रहना था। उसने बच्चों की तरफ देखा, फिर आगे बोली, फिर सालों बाद मैं फिर इस दुनिया में लौटी, नफरत लेकर नहीं, बस अपनी सच्चाई लेकर। मेरे बच्चों ने किसी को नहीं मारा, उन्होंने तो सिर्फ तुम्हारे पापों का चेहरा दिखाया है। भीड़ में खड़े कई लोग घुटनों के बल गिर गए। बूढ़ा आदमी बोला, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया था। मगर कई लोग चिल्लाने लगे, मत सुनो इसकी बात, ये हमें बस डरा कर बचना चाहती है, आग लगा दो, डायन को खत्म कर दो। नीलम के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जमील की तरफ देखा और बोली, देखो ना जमील, इंसान सच्चाई से भी ज्यादा अपने डर से प्यार करते हैं। और उसी पल आसमान में बिजली चमकी, हवा तूफान बन गई। उसी रात किसी को समझ में नहीं आया कि असली श्राप क्या था, जिनकी ताकत या इंसानों का पुराना पाप। नीलम ने आसमान की तरफ देखा और फिर उसने चीखा, एक ऐसी चीख मारी कि जैसे पूरी रात फट गई हो। हवा अचानक तूफान बन गई, मशाले बुझने लगी, आसमान में बिजली चमकी और उसी पल कुछ अजीब होने लगा। भीड़ में खड़े लोगों को अचानक अपने आसपास की दुनिया धुंधली दिखाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य पर्दा उनकी आंखों पर गिर गया हो। भीड़ में से एक आदमी चिल्ला रहा था, नहीं नहीं मुझको मत पकड़ो। लोगों ने देखा वो हवा में हाथ झटक रहा था। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया था, वही रात जब उसने अपने छोटे भाई को जमीन की लालच में जहर से मार दिया था। आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने मजबूरी में किया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके सामने उसका भाई खड़ा था, उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली। दूसरा आदमी, भीड़ में एक और आदमी घुटनों पे गिर पड़ा। वो बच्ची वो कुएं में कैसे गिर गई थी, लेकिन अब उसे भी साफ दिखाई दे रहा था, वो छोटी लड़की जिसे उसने गुस्से में धक्का दिया था। तीसरा आदमी, एक बूढ़ा आदमी अपने कान पकड़कर रोने लगा,
2: मैंने मंदिर के पैसे नहीं चुराए, मैंने नहीं चुराए।
1: लेकिन उसके सामने मंदिर का वही
2: संदूक खुला था और उसमें से सिक्के गिर रहे थे। अब पूरा मैदान डर से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग जमीन पर गिरकर रोने लगे। भीड़, ये क्या हो रहा है? हमारे सामने ये क्या दिख रहा है? ये औरत क्या कर रही थी? नीलम ने धीमे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। जिसे तुम लोग श्राप कहते हो, वो तुम्हारे अपने पाप हैं, जो अब छुप नहीं सकते। पर तभी भीड़ बेकाबू हो गई। वो चिल्लाने लगी, डरना मत, ये सब छलावा है। और फिर उन लोगों ने जलती मशाल उठाकर हवेली की छत पर फेंक दिया। पुरानी लकड़ी की हवेली धीरे धीरे जलने लगी। नीलम ने आखिरी बार जमील की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर के बोली, जमील, इंसान बदलते नहीं। जमील ने कहा, नहीं नीलम, लेकिन कभी कभी उनके पाप उन्हें खुद सजा देते हैं। और उसी पल नीलम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। धरती कांपने लगी। हवेली धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। कहते हैं उस रात गांव वालों को पहली बार समझ में आया कि श्राप किसी जिन का नहीं था, श्राप था उनके अपने पापों का। कलकत्ता की रातें बहुत कुछ जानती हैं। आज की कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, सन्नाटा कभी खत्म नहीं होता। वो बस अगली रात का इंतजार करता है। अपनी खिड़कियां और दिल के दरवाजे बंद कर दीजिए। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे 89.6 एफएम सन्नाटे की गूंज से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक अपने सायों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।

पर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी।
0: आवाज से तो आपने भाप लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक यादगार आवाज की कहानी पर, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर, लिरिसिस्ट और म्यूजिशियन हैं जिनकी वॉइस और स्टाइल ने 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक के स्टार्टिंग में श्रोताओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। भले ही उनका नाम आज के समय में थोड़ा भूला बिसरा लगता है, बट उनके गाए हुए सॉन्ग आज भी कई दिलों को पीस और सैडनेस के पलों में राहत देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में, जिसमें हम बात करते हैं धुंध में छिप गए सिंगर्स के सॉन्ग्स और उनके जीवन के किस्सों पर, साथ ही साथ संगीत की यादों भरी दुनिया की। श्रोताओं, शो भूले बिसरे गीत के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं अपनी गायकी में उर्दू शायरी का इस्तेमाल करने वाले भारतीय कव्वाल गायक अल्ताफ रजा की। 90 का दशक आप किसी भी टेम्पो में बैठे हों या बस में, एक ऐसा सिंगर जो उस दौर में आपका साथी हुआ करता था, वो थे अल्ताफ रजा, जिनके सॉन्ग्स उस समय से आज तक टेम्पो सॉन्ग्स के नाम से फेमस हैं। तुम तो ठहरे परदेसी हो या यारो मैंने पंगा ले लिया गाना हर ऑटो टैक्सी में बजा करते। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले क्यों ना उस दौर के पंगों का जिक्र अल्ताफ रजा के सॉन्ग के माध्यम से सुन लेते हैं। हाँ, ये सॉन्ग कोई और नहीं है, उसी दौर का वो सॉन्ग यारो मैंने पंगा ले लिया।

लिसनर्स, इस सॉन्ग ने जो धूम मचाई थी कि लोगों की अल्ताफ रजा को लेकर दीवानगी हर जगह सुनने को मिल जाती थी, पर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वे अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गए?

फ्रेंड्स, अब जब उनके बॉलीवुड में होने का जिक्र हुआ ही है, तो क्यों ना इनका एक बॉलीवुड वाला सॉन्ग हो जाए, जो कि 1997 की शपथ मूवी से है, जिसका नाम है इश्क और प्यार का मजा लीजिए। तो चलते हैं, हम भी इस सॉन्ग का मजा लेते हैं।

हमने अभी सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इस सॉन्ग के बाद क्यों ना अब फिर से हम एक बार और अल्ताफ रजा की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ रजा का जन्म 1967 में महाराष्ट्र के नागपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। संगीत उनके परिवार की धरोहर थी और अल्ताफ ने छोटी उम्र से ही शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की झलक साफ महसूस होती है। 1997 में रिलीज हुई इनकी पहली एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी भारतीय संगीत उद्योग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस एल्बम ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस एल्बम का ट्रैक सॉन्ग तुम तो ठहरे परदेसी, क्या आपको पता है उस दौर में कितनी इसकी ख्याति थी? हाँ हाँ, मुझे मालूम है आपको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देती। उस दौर में हर गली मोहल्ले और रेडियो स्टेशन पर गूंजता हुआ मिलता था ये सॉन्ग। उनके दर्द भरे रोमांटिक गाने श्रोताओं को भावुक कर देते थे। अल्ताफ रजा के गाने मुख्य रूप से उदासी और प्रेम, साथ ही साथ दर्द पर भी आधारित होते थे। उनकी आवाज में एक दर्द और गहराई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, इसलिए उनके गाने शादी ब्याह और दिलों के टूटने वाले मौके पर भी खूब सुने जाते थे। अच्छा, सच में? तो चलिए हम भी एक बार क्यों ना वही वाला सॉन्ग सुन लेते हैं जो इतना फेमस हुआ कि हर शादी ब्याह में बजा। सुनते हैं।

अल्ताफ रजा उस दौर के एक खासा लोकप्रिय सिंगर। हालांकि उनका करियर लंबे समय तक चमकता नहीं रहा, 2000 के दशक में पॉप और बॉलीवुड सॉन्ग की नई लहर में अल्ताफ रजा कहीं खो से गए। फिर भी उनके जैसे कलाकारों का योगदान संगीत जगत में अमूल्य है। उनके भूले बिसरे गीत जैसे इश्क और मोहब्बत, प्यार तेरा दर्द मेरा और उनकी गजलें आज भी पुराने श्रोताओं की यादों में बसे हुए हैं। दोस्तों, अल्ताफ रजा एक उदाहरण है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे गहरा माध्यम हो सकता है। उनके भूले बिसरे गीत में उस दौर की सादगी और दर्द भरी कहानियों से जुड़े रहते हैं हम। उनके गाने सुनते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वो आज भी हमारे आसपास हैं और बस किसी पुराने रेडियो पर बज रहे हैं। तो क्यों ना इनके बारे में कुछ और जानने से पहले एक सॉन्ग आपके लिए हम बजा ही दें।

कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

0: नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना।
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता।

यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ। जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ।

0: अल्ताफ रजा एक प्रसिद्ध गायक हैं जो अपनी गजल और सूफियाना गायकी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्यों ना इनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था और उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही ली और संगीत में करियर की शुरुआत उन्होंने 18 साल की उम्र में संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण से शुरू की। वे 1990 के दशक में गजल और भावनात्मक गानों के कारण प्रसिद्ध हुए। पहला बड़ा ब्रेक इन्हें इनके पहले एल्बम से मिला जो था तुम तो ठहरे परदेसी। 1994 में रिलीज हुआ यह एल्बम बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और पूरे देश में इसने धूम मचा दी। यह एल्बम भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में से एक था। गायकी की स्टाइल, जी हाँ, अल्ताफ रजा की गायकी की स्टाइल उनकी गायकी शैली में गजल, लोकगीत और रोमांटिक गानों का मिश्रण हुआ करता था। उन्होंने अपने गीतों में दर्द और सच्चाई को प्रमुखता दी जो श्रोताओं को छू जाती थी। लोकप्रिय गाने, हाँ, इनके लोकप्रिय गाने जैसा कि मैंने आपसे कई बार अभी तक में जिक्र भी किया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, इस दुनिया में अपना दिल लगाना, आभा तेरी यादों में खो गया हूँ, जैसे संगीत इनके लोकप्रिय गीतों में से थे। पुरस्कार और सम्मान की बात कर लें तो अल्ताफ रजा को कई पुरस्कार मिले और वे 90 के दशक के आइकॉनिक सिंगर में से एक माने जाते हैं। और रही बात वर्तमान के कार्य की, तो वे अब भी संगीत से जुड़े हुए हैं और समय समय पर नए गाने रिलीज करते रहते हैं।
1: एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह

दोस्तों, संगीत उद्योग में इनका योगदान काफी रहा। इन्होंने इंडियन पॉप और गजल को नए दर्शकों तक पहुंचाया। उनके गानों में भारतीय संस्कृति और सादगी की झलक मिलती है। और इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, एक बार इस पे भी थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। जी हाँ, अल्ताफ रजा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट है, लेकिन वह अपने संगीत के जरिए हमेशा अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रहते हैं। तो क्यों ना एक बार फिर से हम इनके गानों के जरिए जुड़ जाते हैं और सुन लेते हैं इन्हीं के द्वारा गाया हुआ ये एक प्यारा सा सॉन्ग।

दोस्तों जाते जाते मैं आपको एज अ गिफ्ट इन्हीं का जो सबसे पहला एल्बम था वो सॉन्ग आपको जरूर से जरूर सुना के जाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बाय बाय तो बोल दूं। आज का हमारा जो अंक था वो था अल्ताफ रजा जी की लाइफ स्टोरी के बारे में, और आप सुन रहे थे अपना फेवरेट शो भूले बिसरे गीत, जहाँ पे हम बात करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड की, मतलब उन सिंगर्स के जीवन के किस्सों की जो कहीं धुंध में खो से गए हैं। इसी के साथ मैं आपकी आरजी लेती हूँ आपसे विदा। सुनते रहिए अपने फेवरेट शो भूले बिसरे गीत को, जहाँ हम लाते हैं आपके उन फेवरेट स्टार्स की कहानी जो अपने गीतों के जरिए हमारे दिलों में बसते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें। टेक अ वंडरफुल केयर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।